जानकी, मैथिली और वैदेही, इन सभी नामों से जानी जाती हैं माता सीता। उन्हें पृथ्वी की संतान माना जाता है, जिन्हें राजा जनक ने एक हल्की नली में पाया था। ये एक आदर्श पत्नी और सद्गुणों की प्रतीक है, जिन्हें देवी रूप में पूजा जाता है, जो अपार कठिनाइयों को धैर्य पूर्वक सहन करती हैं। और चूंकि कहीं ना कहीं ये पृथ्वी की पुत्री यानी धरा धरती माता की गोद से उत्पन्न हुई, तो जिस तरह से जो सहन शक्ति हम माता धरती में देखते हैं, उसी तरह से इनके भीतर भी इनके पूरे जीवन काल में सहन शक्ति देखी जाती है, जो कि महाकाव्य यानी कि रामचरित के कई सारे दृश्यों में पढ़े जा सकते हैं। अब बात करेंगे रामायण की, जिसमें माता सीता के उस गुण की व्याख्या की गई है जिसे बोला गया है पवित्रता। यानी कि रामचरितमानस में माता सीता के सहन के गुण को ऊपर रखा गया, केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं बनाया गया है। और वहीं जो कि ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित मानी जाती है, उसमें केंद्र बिंदु माता की पवित्रता को बनाया गया है। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है। कुछ कथाओं में माता सीता को माया सीता कहते हैं, यानी छाया या फिर भ्रमित सीता, ऐसे भी उल्लेख पाए जाते हैं, जिनका अपहरण कर लिया गया था, जबकि वास्तविकता में सीता सुरक्षित रही। ये सारी चीजें किंवदंतियों में पाई जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। और सीता नवमी और विवाह पंचमी जैसे त्योहारों के साथ इन्हें विशेष रूप से रामानंदी संप्रदाय के भीतर सुंदरता और भक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है और ये दिवस मनाया जाता है। और अगर माता सीता की बात करें तो विपरीत परिस्थितियों में भी स्वाभिमान नहीं छोड़ा इन्होंने। और इनसे लेने वाली शिक्षा की अगर बात करूं तो EQ यानी कि इमोशनल क्वांटिटी जो इनमें है, इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, तो हमें अपनी भावनाएं समझने और संभालने की कला सिखाती हैं माता सीता। जैसे कि टॉक्सिक रिश्तों परिस्थितियों में सीमाएं तय कर पाना, हम इनके जीवन की अगर चीजों को देखेंगे, पढ़ेंगे, इनकी चीजों को समझेंगे, तो वहां से हमें ये सीख प्राप्त होगी। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना है और निर्णय स्पष्ट किस प्रकार से रखना है, ये हम रामचरितमानस के माता सीता के पात्र से या फिर रामायण के माता सीता के पात्र से बखूबी सीख सकते हैं। चलिए चलते हैं माता सीता की ध्यान की ओर, एक प्यारी सी देवी गीत की ओर।

श्रोताओं, आपने वो कथा तो सुनी ही होगी जो कि पूरे के पूरे 14 वर्षों के वनवास की है। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं जानकी, भूमिपुत्री, जनकात्मजा, रामवल्लभा, भूसुता, मैथिली, सिया आदि नाम वाली माँ सीता की, जिन्हें माना जाता है लक्ष्मी का अवतार। रामायण और रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों में इनका उल्लेख पाया जाता है। इसलिए आज के आध्यात्मिक शो यानी कि पहली किरण में आज मैं लेके आई हूँ माता सीता की जीवन शैली और उनसे जुड़ी हुई कुछ कलाओं को, उनके कुछ गुणों को, जिसको हम अपने जीवन में उतार कर आत्मसात करके अपने जीवन को और सरल और सुगम बना सकते हैं।

अगर इनके जीवन साथी की बात की जाए तो वो थे प्रभु श्री राम। इनके दो संतान थी लव और कुश। माता पिता की बात करें तो जनक जी इनके पिताजी थे और सुनैना इनकी माता थी। जैसा आप सभी जानते हैं कि सीता रामायण के अनुसार मिथिला के नरेश जनक की ज्येष्ठ पुत्री व अयोध्या के नरेश दशरथ की ज्येष्ठ पुत्र यानी राम की भार्या थी, जिन्हें त्रेता में लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। रामायण के अनुसार राजा जनक के खेतों में हल जोतते समय एक कलश से अटक गया था उनका हल। इन्हें उस कलश में पाया गया था। राजा जनक और रानी सुनैना ने गर्भ में इनके कलाओं एवं आत्मा के दिव्यता को महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा स्थापित किया। उसके बाद सुनैना ने अपनी मातृत्व को स्वीकार किया और पालन किया। उर्मिला इनकी छोटी बहन थी और त्रेता युग में जब बहुत ही विकट समस्या सामने आई तो माना जाता है कि राक्षस लोग इस तरह उत्पात मचा रहे थे कि सभी देवताओं का वो मर्दन करते जा रहे थे और उससे उनके जो रक्त होते थे उसको भर भर के उन्होंने जनक की भूमि पर गिराया था, जिसकी वजह से सूखा पड़ गया था। उस वक्त जरूरत थी कुछ ऐसे चमत्कार की जिससे भूमि फिर से हरी भरी हो सके। तो फिर राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना ने हल चलाया और वहां से उत्पत्ति हुई माता सीता की, जो कि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। और उसके बाद हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली। राजा जनक की पुत्री होने के कारण इन्हें जानकी, जनकात्मजा और जनक सुता भी कहते हैं। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण ये मैथिली नाम से भी प्रसिद्ध है। भूमि में पाए जाने के कारण इन्हें भूमि पुत्री या भूसुता भी कहा जाता है। सीता जी का जन्म वैशाख शुक्ल नवमी को मिथिला में हुआ।

श्रोताओं, शो चल रहा है आपका भोरी भोरी का पहली किरण। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और आज हम बात कर रहे हैं माता सीता की। अभी हमने कुछ बातें की और अब बात करेंगे माता सीता के विवाह की। महाराज जनक ने सीता स्वयंवर की घोषणा की, जिसमें राम और लक्ष्मण भी उपस्थित थे। महाराज जनक ने स्वयंवर के लिए शिव धनुष उठाने के नियम की घोषणा की। सभा में उपस्थित राजकुमार, राजा व महाराजा धनुष उठाने में विफल रहे। श्री राम जी ने धनुष को उठाकर भंग किया। इस तरह माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह होना निश्चित हुआ। इसी के साथ उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, और मांडवी जो कि माता सीता की बहन थी का विवाह भरत से। साथ ही साथ श्रुतकृति का विवाह शत्रुघ्न से होना निश्चय हुआ। विवाह उपरांत सीता अयोध्या आई व उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतने लगा। सीता की रीति से अगर कुछ सीखने की बात करें तो कर्तव्य निष्ठा इन्होंने बखूबी निभाया है अपनी लाइफ में। परिवार और कर्तव्य के प्रति निष्ठा, प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी यानी भरोसेमंद व्यक्तित्व, टीम में सम्मान और दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता, ऐसे गुण अगर आपको सीखना है तो माता सीता के जीवन से बखूबी आप सीख सकते हैं।

श्रोताओं, अभी आपने जाना माता सीता के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके विवाह के बारे में। अब बारी आती है उस पल की जब 14 वर्ष का वनवास आया। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ द्वारा पत्नी कैकेयी को दिए गए वचन के कारण श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस प्रकार राम व लक्ष्मण के साथ माता सीता चित्रकूट पर्वत स्थित मंदाकिनी तट पर वनवास के लिए गईं। इसके बाद गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में इन्होंने वास किया। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई। रावण ने मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीची सोने के हिरण का रूप धर राम और लक्ष्मण को वन में ले गया और उनकी अनुपस्थिति में रावण ने सीता का अपहरण किया। आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उनके पंख काट दिए। जब कोई सहायता नहीं मिली तो माता सीता ने अपने पल्लू से एक भाग निकालकर उसमें अपने आभूषणों को बांधकर नीचे डाल दिया। नीचे वन में कुछ वानर इसे अपने साथ ले गए। रावण ने सीता को लंका के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों की उपस्थिति में इनकी देखरेख की गई।

यहाँ पर अगर मैं आपसे माता सीता के जीवन से कुछ गुण सीखने की बात करूंगी तो वो है धैर्य। आजकल के लाइफ में स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो यहाँ से हम सीख सकते हैं। अशोक वाटिका में अटूट धैर्य की आवश्यकता थी जो माता सीता ने दिखाई। माइंडफुलनेस स्ट्रेस मैनेजमेंट तकनीक माता सीता के जीवन से हम सीख सकते हैं। दबाव में भी शांति और केंद्रित कैसे रहते हैं ये हम माता सीता के जीवन से सीखते हैं। पढ़ाई काम में निरंतरता और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए माता सीता का अनुसरण करें। चलिए फिर चलते हैं एक प्यारे से देवी गीत की ओर।

जी हाँ श्रोताओं, अभी हम चलेंगे उस ओर जब एंट्री होती है हमारे महाबली की यानी कि हनुमान जी की। जी हाँ, हमने जाना कि माता सीता का जन्म कैसे हुआ, उनका पालन पोषण कैसे रहा, फिर उनका विवाह, फिर 14 वर्षों का वनवास, उसके बाद में रावण द्वारा इनका अपहरण, और अब बारी आती है हनुमान जी से इनके भेंट की। जैसा कि रामचरितमानस में और रामायण में पढ़ने पे प्राप्त होता है कि सीता जी की वन वन खोज करते राम जटायु तक पहुंचे। जटायु ने उन्हें सीता जी को रावण द्वारा दक्षिण दिशा की ओर लिए जाने की सूचना दी। राम लक्ष्मण सहित दक्षिण दिशा में चले। आगे चलकर वे हनुमान जी से मिले जो उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित अपने राजा सुग्रीव के पास ले गए। राम जी संग मैत्री के बाद में सुग्रीव ने सीता जी के खोज में चारों ओर वानर सेना की टुकड़ियां भेजी। वानर राजकुमार अंगद के नेतृत्व में दक्षिण की ओर गई टुकड़ी में हनुमान, नील, जामवंत प्रमुख थे और वे दक्षिण स्थित सागर तट पहुंचे। तट पर उन्हें जटायु का भाई संपाति मिला जिसने उन्हें सूचना दी कि सीता माता लंका स्थित एक वाटिका में है।

श्रोताओं, इस प्रकार हनुमान जी को जामुन जी द्वारा उनकी शक्ति का भान कराया गया। हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका पहुंचे, लंकिनी को परास्त कर नगर में प्रवेश किया। वहां सभी भवन और अंतःपुर में सीता माता को ना पाकर वे अत्यंत दुखी हुए। अपने प्रभु श्री राम जी को स्मरण व नमन कर अशोक वाटिका पहुंचे। वहां धुएं के बीच चिंगारियों की तरह राक्षसियों के बीच एक तेजस्विनी स्वरूपा को देख सीता जी को पहचाना और हर्षित हुए। उसी समय रावण वहां पहुंचा और सीता से विवाह का प्रस्ताव किया। सीता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न हैं। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय दिया है, राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रण दिया है, रघुवंशियों की वीरता से अपरिचित होकर तुमने ऐसा दुस्साहस किया है। तुम्हारे श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। इस घटना से निराश रावण ने राम को लंका आकर माता सीता को मुक्त कराने के लिए 2 माह की अवधि दी और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर श्री राम 2 माह की अवधि तक नहीं आए तो उसके उपरांत रावण व सीता का विवाह होना निश्चय है। रावण के लौटने पर सीता जी बहुत दुखी हुई। त्रिजटा राक्षसी ने अपने सपने के बारे में बताते हुए धीरज धराया माता सीता को और कहा, श्री राम जी रावण पर विजय पाकर उन्हें अवश्य मुक्त कराएंगे। चलिए फिलहाल हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा भजन जो कि श्री राम जी को अर्पित है।

त्रिजटा राक्षसी के धीरज धराने के उपरांत हनुमान जी ने सीता जी का दर्शन किया और अपने लंका आने के कारण को बताया। सीता जी राम व लक्ष्मण की कुशलता पर विचार करने लगी। श्री राम जी की मुद्रिका देकर हनुमान जी कहते हैं कि वे माता सीता को अपने साथ श्री राम जी के पास लिए चलते हैं। सीता जी हनुमान को समझाती हैं कि नहीं, ये अनुचित है, क्योंकि जब तक मेरे प्रभु नहीं आएंगे तब तक मेरा जाना उचित नहीं होगा। मैं तुम्हें भले ही पुत्र मानती हूँ पुत्र, पर समाज की नजरों के लिए ये उचित नहीं है। रावण ने मेरा हरण कर रघुकुल का अपमान किया है, अतः लंका से अगर कोई मुझे मुक्त कराएगा तो वो मेरे प्रभु श्री राम ही होंगे, और ये उनका कर्तव्य भी है। विशेषतः रावण के 2 माह की अवधि का श्री राम जी को स्मरण कराने की विनती करते हुए माता सीता ने हनुमान को आदेश दिया। हनुमान ने रावण को उसके दुस्साहस के परिणाम की चेतावनी दी और लंका को जलाया। माता सीता से चूड़ामणि व अपनी यात्रा की अनुमति ले महाबली अपने यात्रा की ओर अग्रसर हुए। इस प्रकार हनुमान जी सागर तट स्थित अंगद व वानर सेना को अपने साथ लेकर हनुमान जी श्री राम जी के पास पहुंचे, माता सीता की चूड़ामणि दी और अपनी लंका यात्रा की सारी कहानी सुनाई। इसके बाद राम व लक्ष्मण सहित सारी वानर सेना युद्ध के लिए तैयार हुई। तो श्रोताओं, ये थी रामचरितमानस और रामायण में उल्लेखित वो कथा जो कि माता सीता के जीवन पर आधारित थी। इसके अलावा अगर आज की लाइफस्टाइल और उस समय की यानी कि त्रेता युग की बात करें, तो अगर हम माता सीता से सीखने की बात करें तो हर परिस्थिति में करुणा और संवेदनशीलता कैसे सीखनी है, ये हम इनके जीवन से जान सकते हैं। रिश्तों में मजबूती और कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए नेतृत्व क्षमता यानी कि लीडरशिप में वृद्धि के लिए भी हम माता सीता के जीवन से कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें स्वाभिमान, अन्याय के सामने झुकने से इनकार करना, समानता, अधिकार और न्याय की समझ, इन सभी को भी हम माता सीता के जीवन से प्राप्त कर सकते हैं। सम्मानजनक समाज का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है, लड़कियों में आत्मविश्वास और लड़कों में संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, तो माता सीता से ये हम सीख सकते हैं। इसके अलावा प्रकृति से जुड़ाव, प्रकृति से गहरा संबंध, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली किस प्रकार हम निर्वहित कर सकते हैं, ये भी हम माता सीता के जीवन से सीख सकते हैं। संस्कार और वैल्यू एजुकेशन, ये सीखना हो तो हमें लवकुश के श्रेष्ठ संस्कारों की ओर चलना चाहिए। कहा जाता है लवकुश बहुत ही छोटे थे उम्र में, तभी से इन्होंने अपने जीवन को ऐसे जिया था, सारी कठोरताओं को सीखते हुए ये बड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं अगर आप इसे माने तो कम वर्ष में राजा बनना था उन्हें, इसलिए कहीं ना कहीं प्रकृति उन्हें सिखा रही थी, प्रकृति यानी माता सीता स्वयं। और जब हम बच्चों को संस्कार देने की बात करते हैं तो हम उनके साथ कठोरता नहीं करते हैं, हम उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अगली पीढ़ी में नैतिकता और अनुशासन डालना बेहद जरूरी है, परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं इससे, इसलिए न्यू अगर डालनी है तो हमें संस्कार डालने होंगे बच्चों में। और ये भी अगर हम सीखने की बात करें तो हम माता सीता के जीवन से बखूबी सीख सकते हैं।

छोटागण, जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधु है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है? अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है? स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कुटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है? अब उसके करुण छाती देखिए।

तो श्रोताओं, आज हमने बात की माता सीता की और उनके जीवन से कुछ शिक्षा प्राप्त की हमने। सीता की रीति हमें सिखाती है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, जीवन के मूल्यों में बसता है। और जब ये मूल्य आधुनिक शिक्षा से जोड़ दी जाए तो इंसान सिर्फ सफल नहीं बल्कि संतुलित और श्रेष्ठ बनता है। सीता की रीति और आधुनिक शिक्षा का संगम हमें ये सिखाता है कि सच्ची सफलता वही है जहां ज्ञान के साथ चरित्र और प्रगति के साथ संस्कार भी जुड़े हों। तो सुबह के पहली किरण के साथ मैं थी आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजी आकांक्षा। आपने ट्यून करके रखा हुआ था 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और उम्मीद है कि आज के दिन आपने माता सीता से बहुत कुछ सीखा होगा जो आप अपने जीवन में उतारने वाले हैं और अपने जीवन को बखूबी बहुत सरल और सहज बनाने वाले हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ, इन्हीं सारी दुआओं के साथ और इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ अब मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। राधे राधे, जय जिने।

हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
2: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
3: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: अच्छा ये बताओ बच्चों, चांद पर पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने। शाबाश। और दूसरा कदम किसने रखा? और दूसरा कदम भी उसी ने रखा होगा ना, आखिर वो लंगड़ा थोड़ी ना था।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।

0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में. आपने ट्यून किया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम. ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और आज है ट्यूसडे मॉर्निंग वाला शो. गुड मॉर्निंग गोंडा, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ मिलकर के. सो आज मिल करके धमाका करने वाले हैं भाई, क्योंकि आज काफ़ी कुछ होने वाला है जो आप तक आने वाला है और साथ ही साथ आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर आके आएगा. सो बहुत कुछ है जो आपसे बताना है, जो कहना है और जो संजोना था वो भी साथ में है. तो काफ़ी कुछ है जिसमें हम शायद आज आपको बहुत सारी अपडेट्स देने वाले हैं, साथ ही कुछ आपके काम की बात बताने वाले हैं, कुछ ज़रूरी बातें और कुछ सावधानियां, क्योंकि सारी ही बातें अपनी जगह बहुत सही रहती है. सो आज ट्यूसडे है यानी 12 मई का दिन है और साथ ही साथ आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे. सो ऑफकोर्स ऐसी नर्सेज जो कहीं ना कहीं लोगों की सेवा करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लोग परिवार में अपनी करते हैं और रोज़मर्रा का काम उनका यही होता है, इतनी ही प्रेम से लोगों की सेवा करना, उनका ख्याल रखना. उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे की बहुत बहुत मुबारकबाद. और कहीं ना कहीं ये डे सच में नर्सेज डे बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस पर बात किया जाना चाहिए. हमारे ही बीच में, हमारे ही लोगों के बीच में, हॉस्पिटल्स में ऐसी नर्सेज होती हैं जो बहुत हद तक ये नहीं देखती कि भाई कि कौन सी बीमारी है, क्या गंदगी है. सारी चीज़ों को साफ करना, बेहतर करना, उन्हें अच्छा फील कराना, उनका हाल चाल लेना. इवन हम लोग में से कई लोगों का एक्सपीरियंस है, या तो हम खुद कभी एडमिट हुए हों या हमारे फैमिली मेम्बर्स में, और कुछ ऐसी नर्सेज होती हैं जो अपने बिहेवियर से पेशेंट को लाइट फील कराते हैं कि उनका कोई है जो उनको सुन रहा है, समझ रहा है, देख रहा है. तो आज ऐसी नर्सेस को इस तरह से वर्क करने वाली डेडिकेशन के साथ में उन सभी को इंटरनेशनल नर्सेस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद. तो चलिए अब वक्त है आपको आज के थॉट की तरफ ले जाने का और बताते हैं कि भाई आज का थॉट ऑफ द डे क्या होने वाला है आपके मॉर्निंग में.
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो आ गए हैं फिलहाल अपने आपके आज के थॉट की तरफ और बताने वाले कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या होने वाला है। जी सो चलिए बताते हैं आज का थॉट क्या है जो कि ट्यूसडे को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने वाला है। सो आज का थॉट ऑफ द डे कह रहा है कि सबसे लंबा सफर प्रेम के बाद खुद तक लौट आने का होता है। सबसे लंबा सफर प्रेम के बाद खुद तक लौटने का होता है। यानी जिंदगी में यूं तो बहुत सफर हम करते हैं, लेकिन जब प्रेम से लौटते हैं, जब प्रेम हो चुका होता है और उसके बाद जब आपको अपना खुद का ख्याल आता है, तो खुद तक लौटना जो है वो सबसे लंबा सफर होता है। क्योंकि कई बार पूरी पूरी जिंदगियां बीत जाती है खुद तक लौटते लौटते। यह एक अरसा गुजर जाता है खुद तक लौटते लौटते। इसीलिए आज का थॉट कहता है कि सबसे लंबा सफर प्रेम के बाद खुद तक लौटने का होता है। कहीं ना कहीं खुद को हम शायद भूल चुके होते हैं और हम प्रेम में डूब चुके होते हैं। फिर जब बात आती है खुद की और लौटने की, तो फिर लौटने में इतना ज्यादा वक्त लगता है। और यही कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। सो आज का थॉट ऑफ द डे सच मायनों में कहा जाए तो बहुत डीप है, और ऐसी बातें तो हम शायद किसी से साझा भी नहीं करते हैं, हमारे मन में ही रहता है। क्योंकि हर किसी की कहानी में जब कोई अपनी कहानी के बारे में, खुद के कैरेक्टर के बारे में सोचता है, तो कहता है कितना वक्त लगा था ना उस मोहब्बत से खुद तक लौटने में मुझे। एक जमाना निकल गया था, कितने फेजेस निकल गए थे, उसके बाद जाकर कहीं हम खुद तक आ पाए थे। बहुत स्ट्रगल की, बार बार वापस गए, बार बार आने की कोशिश की, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके अब आन मिले हैं खुद से वापस। अब ये कितने दिलों की दास्ता है, ये कितनों ने महसूस की है, ये तो सुनने के बाद ही अंदाजा हो रहा होगा। बहरहाल आपको आज का ये थॉट ऑफ द डे कैसा लगा ये जरूर हमको कमेंट करके आप बता सकते हैं। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और आपके मॉर्निंग शो का आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके मॉर्निंग वाले शो में। फिलहाल आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं, वापस से आते आने के बाद आपका वेलकम करते हैं, क्योंकि आज काफी ज्यादा बहुत सारी चीजें आपके लिए है।

0: रियो। क्या बात है, क्या बात है, शानदार सॉन्ग, जबरदस्त एंट्री और अमेजिंग सड़े। जब ये तीनों मिल जाए तो जिंदगी के यादगार दिनों में से एक हो जाता है। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं ट्यूसडे मॉर्निंग स्पेशल शो में। आपके मॉर्निंग जो आकार जो अदनान, आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, और बताने वाले हैं कि भाई साहब, एक बार आपका वेलकम करने के साथ ही साथ उन सभी का वेलकम जो है फ्रिक्वेंसी पे अपनी कार से सुन रहे हैं, ट्रांजिस्टर से सुन रहे हैं, फोन से सुन रहे हैं, एंड उनका वेलकम करते हैं जो हमको रेडियो गार्डन से देश के अलग अलग कोनों से और दुनिया से सुन रहे हैं। इसके अलावा रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से डायरेक्ट सुनने और अपनी बात कह सकने वालों का भी हम वेलकम करते हैं, क्योंकि अगर आप होते हैं 89.6 एफएम के एप्लीकेशन पर तो वहीं पे आपको चैट का ऑप्शन मिलता है जिससे आप डायरेक्ट बातचीत करते हैं, यानी आप जो कुछ लिखते हैं गोंडा एफएम के आरजेस तक वो डायरेक्ट पहुंच जाता है। सो फिलहाल आपका वेलकम करते हैं, और इसी चैट बॉक्स पर कुछ मैसेजेस आ गए हैं मॉर्निंग शो के रिगार्डिंग। क्या कुछ लिखा है ये बताते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कमल नयन जी, हीरा ही कोयला के खदान के नेता न प्रधान के, क्या बात है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। सविता दुबे जी हैं, सुप्रभात, सुप्रभात आपको भी। अनुष्का जी श्रावस्ती से लिखती हैं, गुड मॉर्निंग सर, हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है अनुष्का जी। एंड आशु मिश्र जी फ्रॉम लखनऊ लिखती हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत करते हैं आशु जी गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। साथ ही आशु जी ने रिएक्शन भी दिया है आज के थॉट को सुना, वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच। सविता जी कहती हैं लौटना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता, काश, लौटना मुश्किल है। इस शो आज का सुविचार बहुत अच्छा और सच्चा लगा, थैंक यू सो मच। अनुष्का जी कहती हैं वेरी नाइस थॉट ऑफ द डे सर, थैंक यू सो मच। सो देखिए, थॉट जो है वो बहुत डीप है, एंड कहीं ना कहीं प्रेम से लौटने के बाद जब सफ़र खुद तक का आने का होता है, जब आप वापस से अपने को ही महसूस करना चाहते हैं, तो बहुत लंबा वक्त होता है सच में। एंड इस थॉट ने इतना डीपनेस के साथ इस बात को निकाल के बाहर रख दिया कि ये ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं बट समझ नहीं पाते कि ये इसको ऐसे कहा जाएगा, इसको ऐसा समझा जाएगा, एंड इसके बाद अगर जो लोग समझ भी जाते हैं तो वो कह नहीं पाते क्योंकि ये बहुत डीप बात हो जाती है। बट आज के इस थॉट ऑफ द डे ने बहुत प्यारी, बहुत सच्ची बात कह दी है कि इंसान को जब अपने को खुद को पाना होता है प्रेम के बाद, तो बहुत लंबा वक्त होता है और वही सबसे लंबा सफ़र होता है उसकी लाइफ का। सो आज का थॉट ऑफ द डे आप लोगों को पसंद आया, ये बहुत अच्छी बात है, और कई ऐसे भी हम

0: हमारे लिसनर्स हैं जो अपने काम में मुब्तला है, लेकिन उनको ये थॉट बहुत पसंद आया। चलिए मन में ही रखिए, अच्छा लगता है ये थॉट। फिलहाल चल रहे हैं अगली आवाज की तरफ, जो कि उदित नारायण साहब की है और उनकी आवाज हमको ले चल रही है हवाओं में। अब आप अंदाजे लगा रहे हैं कि ऐसा कौन सा सॉन्ग है उदित साहब का जो हवाओं की तरफ ले जा रहा है। तो चलिए अंदाजे से बेहतर उस सॉन्ग को सुन ही लिया जाए। कहाँ हरे भाई मॉर्निंग शो में और कहाँ।
1: नहीं मरना गवारा प्यार में।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या शेर भैया, क्या शेर है, दहाड़ता हुआ शेर है। चलिए गाना सुनते हैं जबरदस्त तरीके से।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

भाई इतनी सारी बातों के बीच अब जाहिर सी बात है, एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपको अपने शहर के बारे में जानना होता है, जिसे हम कहते हैं क्या सिटी अपडेट। तो क्या आप रेडी हैं सिटी अपडेट की तरफ चलने के लिए, यानी आज आपके गोंडा में क्या कुछ चल रहा है, इस बात से क्या आप बाखबर हैं? अगर बाखबर है तो बेहतर है, और अगर बेखबर है तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि हम बताने वाले ना कि क्या कुछ चल रहा है अपने गोंडा शहर में। सो यस ऑफ कोर्स, आइए एक सॉन्ग पहले एंजॉय करते हैं, वापस से आते हैं, आने के बाद बताते हैं कि गोंडा में क्या कुछ चल रहा है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये सिटी अपडेट आपसे सीधे तौर पर जुड़ जाती है। तो आज क्या कुछ होने वाला है सिटी की अपडेट में और क्या हो रहा है गोंडा में, ये सब कुछ पता चलने वाला आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन, और इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार सिटी अपडेट कर रही है आपका इंतजार।

सो अगर आपको भी भैया किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया हो कि आप अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली टी शर्ट से शर्ट पहनने की तरफ या शर्ट से टी शर्ट पहनने की तरफ या जो कुछ भी ऐसा हो, तो जरा मुस्कुरा लीजिए। ये गाना आपके ही नाम का है।

0: हाँ जी सुबह ही चलिए, इतने भी ज्यादा अच्छे मत लगिए, नहीं तो ज्यादा ही अच्छे लगने लग जाएंगे। खैर ये अगर आप खुद को मिरर में देखेंगे तो देखने के बाद आप खुद भी यही कॉम्प्लीमेंट देने वाले कि आप मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छे लगने लगे। हाँ जी, सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपकी मॉर्निंग जॉक का अर्जुन नान, आपने ट्यून किया गोंडा एफएम 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.

सुबह आ गए हैं सिटी अपडेट की तरफ और हम बताते चले अब आपको आज गोंडा शहर से क्या क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोंडा से ट्यून करते हैं और उनको सिटी की अपडेट मिलती है तो कहते हैं भाई उनके काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ें भी पता चल जाती है। इसी कड़ी में हम बता दें रोज़गार मेले से संबंधित बात। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में 13 मई को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है और आपको पता है आज है 12 मई यानी कि हम बात कर रहे हैं कल यानी बुधवार में। 13 मई को रोजगार मेले का आयोजन होगा। जिला सेवा योजन अधिकारी गुलाब चंद्र मौर्य ने बताया कि रोजगार मेले में हाई स्कूल इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही जो टेक्निकल एजुकेशन की डिग्री और डिप्लोमा जिनके पास है वो स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए रोजगार संगम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सुबह 10:30 बजे से इंटरव्यू लिया जाएगा और यंगस्टर्स को उनकी एबिलिटी के बेस पर नौकरी दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि रोजगार मेला जो है वो निःशुल्क है। इसके अलावा आपको बता दें रोको गए जो रिजल्ट्स थे वो उन पर आज सुनवाई होने वाली है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें जो स्टूडेंट्स का रिजल्ट किसी भी वजह से रोक दिया गया था उसके लिए अब राहत भरी कुछ खबर आ रही है। ऐसे प्रकरणों की सुनवाई आज को पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में की जाएगी। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायक सचिव डॉक्टर अवनीश पति त्रिपाठी बहराइच बलरामपुर और गोंडा के लंबित मामलों की सुनवाई करेंगे। इस दौरान छात्र छात्राएं जो है वो ज़रूरी कागजात के साथ में प्रेजेंट होकर अपना जो पक्ष है वो रखेंगे। DIOS डॉक्टर रामचंद्र ने बताया कि जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम तकनीकी अभिलेखीय या फिर किसी भी वजह से रोका गया है वो निर्धारित वक्त पर पहुंचकर अपनी समस्या प्रस्तुत करें ताकि उसका सल्यूशन मिल सके। इसके अलावा कल जैसा कि हमने सिटी अपडेट में कहा था कि भाई धानेपुर और महनोन में चूँकि बिजली व्यवस्था ध्वस्त पड़ी थी जिसको लेकर के जो वहाँ के SDO और JE हैं दो उनके घर की बिजली काट दी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुख्य अभियंता ने इसकी चेतावनी दी थी कि अगर लोगों के लिए भाई ये व्यवस्था सही नहीं की गई तो इनके घर की बिजली काट दी जाएगी। और धानेपुर महनोन में चूँकि आंधी और बारिश के बाद बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी और एक हफ्ते बाद भी अभी तक बिजली नहीं दी गई थी और उसी क्षेत्र के जो SDO हैं और 2 JE शहर में मौजूद इनके घर की जो है वो कल रात पावर कॉरपोरेशन ने बिजली काट दी। बिजली बाधित आपूर्ति रहने से जो कंज्यूमर्स हैं उनके बढ़ते गुस्से और SDO और 2 JE की लापरवाही उजागर होने पर विभाग ने कार्रवाई की है। हालांकि इसके बाद दोनों विद्युत उपकेंद्रों के सभी फीडरों को चालू करने का दावा किया गया लेकिन कई गांव और ब्रांच लाइनों में कल शाम तक भी आपूर्ति जो है वो नहीं हुई थी। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट्स की तरफ और अगली अपडेट जो है वो आ रही है साइबर ठगी से जुड़ी हुई। मुझे लगता है ये ज़रूरी बात है, इसको आपको जानना चाहिए कोई भी कहीं से भी आप सुन रहे हो। फिलहाल रकम दोगुनी करने का लालच देकर 10,80,000 रुपए की ठगी की गई है शहर में। जी हाँ, रकम दोगुनी का लालच देकर एक महिला से 10,80,000 रुपए की साइबर ठगी का मामला भी सामने आया है। पीड़िता जो हैं उनकी तहरीर पर साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। करनैलगंज नगर क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि उनके पति जम्मू में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो भी उनके साथ वहीं रहती थी। जनवरी 2026 में जम्मू से घर लौट आई थी, इसी दौरान उनकी इंस्टाग्राम ID पर निवेश से जुड़ा एक प्रचार दिखाई दिया। महिला ने जब प्रचार संदेश भेजा तो उनके मोबाइल पर कॉल आई। कॉल करने वाले व्यक्ति ने कहा कि अगर उनकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगी तो रकम दोगुनी कर दी जाएगी। बातचीत के बाद आरोपी ने QR कोड भी भेजा। पीड़िता ने 24 जनवरी से 5 अप्रैल के बीच में कई बार में 7,40,000 रुपये UPI ID जो है वो भेजी और इस तरह से ट्रांसफ़र कर दिया। एंड इसके बाद जब महिला का आरोप है उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो जो है उधर से गाली गलौज करने लगे और धमकी देने लगे। इसके बाद साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। फिलहाल एक और ठगी हुई है जिसके बारे में हम बता दें कि शहर के आवास विकास कॉलोनी में ही हुई है और उनके साथ साइबर ठगी का वो शिकार हुए हैं। जालसाजों ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नाम पर उनके बैंक खाते से
5,23,600 रुपए निकाल लिए। सो जो पीड़ित हैं यानी उनका नाम है राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने साइबर थाने में तहरीर भी दी है। बताया है 4 मई 2026 की रात वो घर में सो रहे थे, इसी दौरान उनके बैंक खाते से मेक माई ट्रिप प्लेटफॉर्म से UPI ट्रांजेक्शन करके 5,23,000 रुपये ट्रांसफ़र कर लिए गए। सो राजेंद्र जी का कहना है कि उन्होंने किसी के साथ ना तो OTP साझा किया ना ही पिन या पासवर्ड बताया, इसके बावजूद खाते से रकम निकल गई। पुलिस ने मामले की जांच कर रही है, बैंक खातों के ट्रांजैक्शन की जानकारी जुटाई जा रही है। साइबर टीम जो है वो टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश भी कर रही है। सो साइबर ठगी से बचने की जो टिप्स हैं वो ज़रा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरह से साइबर ठगी से बचा जा सकता है। देखिए कुछ बातों का ध्यान रखें बहुत अच्छे से, किसी को भी अपना पिन, जी हाँ पिन जो होता है वो, या पासवर्ड या OTP बिल्कुल भी नहीं बताना होता है। फ़ोन पर किसी बैंक अधिकारी या किसी खातों का आपको पुलिस के बारे में डिटेल बिल्कुल भी नहीं देना है। बैंक का आपसे खाते से जुड़ा हुआ ब्यौरा फ़ोन पर चूंकि नहीं मांगते हैं, और मोबाइल पर आने वाले जो बहुत सा अच्छे ऐसे ऑफर्स होते हैं लोगों के कमेंट पर आपको क्लिक नहीं करना होता, जिस पर आप क्लिक कर देते हैं कि इतना पैसा कमाए इसमें आए अभी क्लिक करें, ठीक है। कई बार आप कुछ भी नहीं बताते हैं बट क्लिक करते हैं तो आपका सब कुछ चला जाता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड हो सकता है और वो उससे आपकी IDs भी है, बैंक खाता भी है, सब कुछ आपका दांव पर लगा है, आधार से भी चूंकि जुड़ा हुआ होता है नंबर, तो इसलिए अगर आप किसी ऐसे अननोन सोर्स पर क्लिक करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। ऐसे पोस्ट APK फाइल हो सकते हैं जिस पर क्लिक करते ही आपके खाते से रकम जो है वो निकल जाएगी। मतलब ठगने के लिए आपको OTP बताने, पासवर्ड बताने या पिन साझा करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई ऐसे अननोन APK फाइल पर क्लिक करते हैं तो वहाँ से भी आपके खाते की रकम उड़ जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी नए नंबर से कोई ऐसा लिंक आया हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ उसको एंटरटेन नहीं करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ये एक ऐसा मामला नहीं है, ऐसे कई सारे मामले आ चुके हैं, इसलिए इसका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा तेज़ आवाज़ करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगे बुलेट मोटरसाइकिल्स के खिलाफ कहीं ना कहीं रविवार को परिवहन विभाग ने एक ख़ास अभियान चलाया। सो ARTO प्रशासन RC भारतीय की अगुवाई में कार्रवाई के दौरान 32 बुलेट बाइक्स का चालान किया गया, जबकि गंभीर नियम का उल्लंघन मिलने पर 3 बाइकों को सीज भी कर दिया गया। सो आजकल जो मॉडिफाइड बाइक्स हैं उससे शोर बहुत होता है और वो इल्लीगल होता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप भी आपके घर में ऐसी कोई बाइक है तो प्लीज़ उसको सही करा लें, या फिर अगर किसी को जानते हैं तो बता दें, नहीं तो आने वाले समय में इस तरह के अभियान में वो भी उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जा सकती है। सो इसके बाद जो है चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। और अगली अपडेट, जैसा कि हमने बताया है कि भाई आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस डे है, और कहीं ना कहीं हमारे ज़िले में भी ऐसे कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशली मेडिकल कॉलेज है, जहां ऐसी बहुत सारी नर्सेज हैं जो कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं सेवा भाव से अपनी जो कुछ जिम्मेदारी वो निभा रही हैं। सो ऐसे लोगों को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो भाई ये थी आपके सिटी गोंडा की अपडेट, आई होप कि आप तक ज़रूर पहुँच गई होगी, और स्पेशली ये ठगी वाला मामला जो है उसको ज़रूर आपको समझना पड़ेगा ताकि आपके साथ निकट भविष्य में ऐसा कुछ भी ना हो। फिलहाल गाने की तरफ चलते हैं, वापस से आएंगे। आने के बाद बहुत सारी बातें हैं, आज हमने बताया था ट्यूसडे मॉर्निंग है और बातों का पिटारा खुल गया है, तो अब चलता ही रहने वाला है।

0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: अरे सुना?
0: क्या?
4: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
0: वाओ!
4: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
7: डिलीशियस
8: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
7: और क्या क्या है खास?
8: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबी, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
7: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम रेडियो 91.6 FM। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो चलिए भाई, इसी कड़ी में हम आपको अब लेकर चलते हैं एक ऐसी अपडेट की तरफ जिसका इंतज़ार 11 मुल्कों की पुलिस हर बार थोड़ी ना करती है यार, लेकिन कम से कम 11 स्टेट के लोग तो इस एग्ज़ाम का इंतज़ार करते हैं, इसके नोटिफिकेशन का। सो आखिर बात क्या है और हम बताने क्या वाले हैं ये आप जानना नहीं चाहेंगे। सो हम बात कर रहे हैं सीटेट के बारे में। सीटेट 2026 नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो गई है और क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी आइए बताते हैं, क्योंकि आप में से ऐसे कई लोग हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके फैमिली मेंबर में कोई है या फ्रेंड में या फिर कोई कॉन्टैक्ट पर्सन। सो उन तक ये खबर जरूर पहुंचा दीजिएगा।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

सो भाई साहब, सीटेट सितंबर 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है और सीबीएसई ने हाल ही में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट सितंबर 2026 को लेकर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है नोटिस जारी कर दी है, जिसमें ऑनलाइन अप्लाई शुरू करने की डेट से लेकर के जो एग्ज़ाम डेट है, इसके साथ ही और भी कई सारी जानकारियां हैं। जो भी कैंडिडेट्स सीटेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 11 मई से यानी कल से seated.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस को पूरा कर सक रहे हैं। आपको करना क्या है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सीटेट में तो आपको जाना है seated.nic.in पर, यानी seated.nic.in पर जाना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी स्वीकार कर ली जाएगी। सीटेट एग्ज़ाम में इस बार एग्ज़ाम सिटी को लेकर बदलाव किया गया है, अब कैंडिडेट्स एग्ज़ाम सेंटर खुद नहीं चुन सकेंगे। जी हाँ, इस बार जो है वो चेंजेस एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के हुए हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट 2026 सितंबर में जारी हुए नोटिस का बताया गया है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है 6 सितंबर 2026 को संडे को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ऐसी दिन पेपर वन एंड पेपर टू दोनों एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। ये एग्ज़ाम देश भर में 132 केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। सो सेटेड सितंबर 2026 इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड लास्ट डेट कब है, आइए इसके बारे में बता देते हैं। सो इम्पॉर्टेंट जो डेट्स है वो शुरू हो गया सीटेट के लिए आवेदन 11 मई से, यानी 11 मई 2026 से आवेदन शुरू हो गया है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 जून 2026 रात 11:59 तक है। एप्लीकेशन फीस भरने की जो डेट है लास्ट डेट वो 10 जून रात 11:59 तक है। ऑनलाइन सुधार करने के लिए जो डेट है वो 15 से 18 जून तक है। एडमिट कार्ड जो डाउनलोड है होगा वो परीक्षा से 2 दिन पहले होगा और परीक्षा की जो डेट है वो 6 सितंबर है, यानी कहीं ना कहीं 4 सितंबर से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट कब आएगा फिलहाल इसकी कोई नियत तारीख नहीं है, लेकिन अक्टूबर के आखिर में बताया जा रहा है। सो सीटेट एग्जाम सिटी नहीं चुन पाएंगे। नोटिस में ये भी कहा गया है कि अगर एप्लीकेंट की संख्या होती है तो परीक्षा 5 सितंबर 2026 शनिवार को भी ऑर्गेनाइज कर सकती है, यानी अगर ज़्यादा लोग हुए। इस बार कैंडिडेट्स के लिए एग्ज़ाम सिटी चुनने की जो है फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। ये सीबीएसई अपनी तरफ से कैंडिडेट्स को खुद ही भेजेगी, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। अभी सीटेट 2026 सितंबर की शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी की गई है, जल्द ही इसकी योग्यता सिलेबस एप्लीकेशन फ़ीस और बाकी ज़रूरी डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। सो सीटेट पेपर वन पहली से पांचवी कक्षा और पेपर टू छठी से आठवीं कक्षा के लिए आयोजित किया जाता है। सो जो भी कैंडिडेट्स नौकरी में हैं या तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अर्हता परीक्षा है, जिसकी वैधता पूरी ज़िंदगी भर के लिए मान्य है। सीटेट सितंबर 2026 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर नहीं समझ पाए थे आप तो एक बार वापस से बता देते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.seated.nic.in। जी हाँ, seated.nic.in। ये अगर आप गूगल पे डालते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी और वहीं पे जा करके आप अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है जिसमें काफ़ी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं इसको लेकर के, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा एग्ज़ाम होता है, इसके बारे में आप तक जानकारी पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीटेट से अगर आप जुड़े हैं तो आप तक के लिए अपडेट पहुंच गई, और अगर आपके कोई फैमिली में है, कोई फ्रेंड्स में, रिलेटिव में, तो उन तक ये जानकारी पहुँचा दें ताकि वो अपनी प्रिपरेशन अब शुरू कर दें। भाई मई जो है वो आधा हो ही गया है लगभग, आज 12 मई हो गई है, इसके बाद सितंबर में ही स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में ही इसका एग्ज़ाम है, तो इसको लेकर के तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल आप तक ये अपडेट आ गई और अभी हम सुनेंगे ज़बरदस्त सॉन्ग को आपके मॉर्निंग वाले शो में।

0: ए से ए मास्टर, जुबान पर लगाम लियो लगाई।
1: आगे के हम सुनाई?
2: हाँ हाँ हाँ सुनाओ बेटा।
1: बी से चंटू ज्यादा पुलियो तो ठीक न खाई, और फिर सी से तोहर अत्ता होई सुताई, अत्ता होई सुताई, अत्ता ना होई सुताई। की ओकरे बाद डी से तू गदावन एस ढेचो ढेचो करे देहो दिखाई।
3: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञान स्थली बीट्स नॉन स्टॉप, जहाँ गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा एफएम, रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM।

0: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज।

0: हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: सो भैया तरकीबें तरकीबें, हम ऐसी एक तरकीब बताने वाले हैं जो काफ़ी काम की आने वाली है। यानी जब किसी प्रोफेशन में आप होते हैं, स्पेशली ऑफिस में, और आपके पास सवाल के लिए जवाब नहीं होता, आप तैयार नहीं होते, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अक्सर ऐसी सिचुएशन में हम हड़बड़ा जाते हैं जिससे हमारी पेशेवरी पर सवाल उठते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि भाई अभी हम इतने प्रोफेशनल हुए नहीं। तो आखिर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सवाल है ना, चलिए उसका जवाब देते हैं हम आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda with your favorite RJ Khan.

0: हाँ जी, तो अब आपको बता रहे हैं कि भाई ऑफिस में अचानक पूछे गए सवालों का जो है वो जवाब अगर आपको नहीं पता है तो आखिर करना क्या है, क्योंकि हड़बड़ाहट जो है वो दिखाता है कि आपका पेशेवर जो रुख है वो कम है। सो ऑफिस में काम करते वक्त कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब कोई मैनेजर या फिर एग्जीक्यूटिव अचानक आपसे कोई सवाल पूछ लेता है, और ये सवाल जो है किसी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस या किसी गलती डेटा या फ्यूचर की किसी प्लानिंग से जुड़ा हो सकता है। ऐसे वक्त में कई लोग घबरा जाते हैं, जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं या फिर गलत जानकारी दे बैठते हैं। सही तरीका अपनाकर आप इस सिचुएशन में अपने आत्मविश्वास और प्रोफेशनलिज्म दिखाने के मौके में बदल सकते हैं। सो इस तरह जब कोई एग्जीक्यूटिव आपसे अचानक सवाल पूछे तो घबराने की बजाय बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ उसका जवाब आपको देना होता है। सो पहली बात तो है, पहला पॉइंट ये कि सवाल को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए जब ऐसा कोई सिचुएशन आन पड़े। जब कोई भी मैनेजर या एग्जीक्यूटिव आपसे अचानक सवाल पूछता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अक्सर सिर्फ काम की, आपकी अभी क्या स्टेटस है या प्रोजेक्ट की जानकारी समझना चाहते हैं। जवाब देने से पहले 1-2 सेकंड ज़रूर सोचें ताकि आप सही और बहुत क्लियर आंसर कर पाएँ। सवाल को ध्यान से सुनना होता है और पूरी तरह समझना होता है। अगर सवाल साफ ना हो तो उसे बड़े ही प्यार से दोबारा पूछना बिल्कुल सही है। जैसे, क्या आप इसे और क्लियर करके बता सकते हैं सर? ऐसा करने से आपकी समझदारी और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल बेहतर दिखती है। दूसरी होती है कि आपकी जो जानकारी हो वो भरोसेमंद हो। सो जब कोई सीनियर आपसे सवाल पूछे तो सिर्फ वही जानकारी आप दे जो आप सही तरीके से आपको पता हो। कई लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित करने के लिए अंदाज़ा लगाकर जवाब दे देते हैं, लेकिन अगर वो जानकारी गलत निकली तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, वो कम हो सकती है। इसलिए गलत जवाब देने से बेहतर है कि आप ईमानदारी से कहें कि मैं सटीक जानकारी जांच करके आपको तुरंत अपडेट करता हूँ। दबाव में आपको शांत रहना है। सो जब मैनेजर सवाल पूछे तो सिर्फ आपको शब्द ही नहीं बल्कि आपका आत्मविश्वास यानी कि आपका कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आंखों में देखकर साफ और शांत आवाज़ में जवाब देने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। घबराहट या डर दिखाने से आत्मविश्वास कम नज़र आता है। शांत व्यवहार जो है ये दिखाता है कि आप दबाव वाली सिचुएशंस को भी समझदारी से संभाल सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जवाब को छोटा रखना होता है, यानी प्रिसाइज आंसर्स देने होते हैं। होता क्या है कि जवाब हमेशा छोटा, क्लियर और बैलेंस्ड होना चाहिए। लंबे और उलझे हुए जवाब देने की बजाय सीधे मुद्दे की बात करना चाहिए। पहले प्रॉब्लम, फिर उसकी जो वजह है और आखिर में सॉल्यूशन बताने के बाद जो है आप आसानी से अपनी बातों को समझा सकते हैं। सो हर सवाल को सीखने का एक मौका मानना चाहिए। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं पता है तो उसकी तैयारी आपको करना चाहिए। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, और ऐसी सिचुएशन जब कोई सीनियर या मैनेजर या एग्जीक्यूटिव आपसे सवाल पूछते हैं कोई प्रोजेक्ट के स्टेटस के बारे में या प्रोग्रेस के बारे में, तो हड़बड़ा कर बताने से बेहतर है आराम से, क्लैरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, जितना जानते हैं जिसके बारे में जो सटीक जानकारी है वो आप ज़रूर बता दें। फिर तो आप दिखने में भी कुछ कुछ प्रोफेशनल लगने लग जाएंगे। तो चलिए भाई, ये कुछ पॉइंट्स कैसे लगे और आपकी लाइफ में क्या ये काम आने वाले हैं? एंड डेफिनेटली अगर काम आने वाले हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि ऐसी चीज़ें काम तो खैर आ ही जाती हैं। सो फिलहाल चलते हैं अगले सॉन्ग की तरफ जो कि आपका इंतज़ार कर रहा है बेसब्री से आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर मॉर्निंग जॉक RJ अदनान।
1: आए हाय,
0: आए हाय, क्या बात है भाई। इस गाने को कितने दिन से आप मिस कर रहे थे, आज सुनने को मिलेगा वापस से।
1: आंखों में मस्ती
0: दूर खड़ी शर्माए, आए हाय।

हाँ जी, तो अभी एक जानकारी मिली है और हमारी आशु मिश्र जी का आज बर्थडे है फ्रॉम द लखनऊ। सो भाई, आपको आपके बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद और ये बर्थडे आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए, बहुत सारे गमों को दूर भगाए और बहुत सारा सुकून आपको मिले। सो चलिए भाई, उनकी बड़ी बहन यानी प्रीति जी ने विशेज भेज दी हैं और साथ ही एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है, तो ये बर्थडे वाला सॉन्ग हम डेडिकेट करते हैं आशु मिश्र जी को, जिनका आज बर्थडे है। और एक बार वापस से आपको आपके बर्थडे की बहुत मुबारकबाद।

भाइयों आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। डिलीशियस
2: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
1: और क्या क्या है खास?
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबी, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
1: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
0: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

अजी गाना तो शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो हमारे जहन में सवाल है वो भी तो शुरू होना चाहिए। चलिए देखते हैं सवाल का जवाब कौन देता है और क्या देता है। सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है। सवाल ये कि भाई छाई उलसूर झील जो है वो किस शहर में मौजूद है। जी हाँ, सवाल है छाई उलसूर झील किस शहर में मौजूद है। ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मुंबई। सो चार शहरों में से किस शहर में मौजूद है छाई उलसूर झील। बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, इन चार शहरों में किस में मौजूद है। एंड दूसरा जो हम पूछ रहे हैं सवाल वो है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। यानी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बंगलुरु। सो ये इसके ऑप्शंस हैं। यानी जो दूसरा सवाल है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बंगलुरु। और पहला सवाल जो हमने आपसे किया था वो था कि छाई उलसूर झील किस शहर में मौजूद है, जिसका ऑप्शन था बंगलुरु, दूसरा था चेन्नई, तीसरा था हैदराबाद एंड चौथा था मुंबई। सो इन चार ऑप्शंस में से छाई उलसूर झील कहाँ मौजूद है। और दूसरा सवाल कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ हुआ, नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या बंगलुरु। चलिए फटाफट से इसका जवाब बताइए और उसके बाद हम देखते हैं भाई क्या बताया है आपने और क्या इसका जवाब जो बताया है वो सही है या नहीं है। सब कुछ पता चलेगा आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम।

0: तो भाई साहब हद कर दी है, सच में आपने बिल्कुल हद कर दी है। चलिए अब मैं बताता हूँ कि जो सवाल किया था उसका जवाब क्या है, एंड सवाल क्या था ये भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप सुन क्या रहे हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो मेरा सवाल था कि भाई छाई उल्सूर झील किस शहर में मौजूद है? ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मुंबई। जिसका प्रीति जी ने जवाब दिया है बेंगलुरु, एंड आशु जी ने भी बेंगलुरु बोला है, एंड कमल नयन जी तो ऑप्शन के तोड़ ताड़ के बाहर निकल गए और चीन बोल दिया, जो कि है ही नहीं। ऑलराइट, बहुत बढ़िया आंसर कमल नयन जी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चलिए इसके बाद, वैसे इस सवाल का जो जवाब था वो सही है बिल्कुल। सो इसका जवाब बेंगलुरु है, यानी बेंगलुरु में छाई उल्सूर झील मौजूद है। दूसरा सवाल था, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जिसका ऑप्शन था नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, जिसमें प्रीति जी ने न्यू दिल्ली बोला है, धर्मेंद्र मोहन जी ने बेंगलुरु बोला है, आशु जी ने भी बेंगलुरु बोला है। ओके, बट द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। जी हाँ, जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन हुआ वो न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में हुआ था। आई होप कि आप तक ये जानकारी पहुंच गई होगी और आप भी समझ गए होंगे कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या है, यानी छाई उल्सूर झील बंगलुरु में मौजूद है और भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में हुआ था। सो ये इन दो क्वेश्चंस का आंसर है। एंड साथ ही साथ सेलिब्रेशन चल रहा है आशु मिश्र जी के बर्थडे का, आज उनका बर्थडे है। एक बार वापस से वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू आशु मिश्र जी, और बहुत सारी खुशियां आपको नसीब हो ऐसी हम कामना करते हैं, दुआ करते हैं। और साथ ही साथ अब बढ़ते हैं अगले मैसेजेस की तरफ जिनको हमने नहीं पढ़ा था, और अब आए हैं तो बता रहे हैं अगला मैसेज जो है वो रफ्तार का है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, एंड यस रिपीट द थॉट। ओके, रिपीट द थॉट। सो थॉट जो था वो बहुत ही प्यारा था, और ये था कि भाई सबसे लंबा सफ़र होता है प्रेम के बाद खुद तक लौटने का। ये था आज का थॉट ऑफ द डे। एंड साथ ही जो हमने साइबर ठगी का बताया सिटी अपडेट में, प्रीति जी ने कहा ठगी से बचाव सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी, बेशक। धर्मेंद्र मोहन जी हैं, अदनान सर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छे दोस्त और अच्छे संस्कार जीवन के उसे मुकाम पर पहुंचा देते हैं जहां पैसा नहीं पहुंचा पाता, कभी नहीं पहुंचा सकता, बेशक सही कहा, थैंक यू सो मच। सॉन्ग्स आपको पसंद आए, रूहानी सॉन्ग्स लगे, थैंक यू सो मच। एंड ठंडक पड़ गई है, अच्छा। इसके बाद जो है आशु मिश्र जी को रफ्तार ने, धर्मेंद्र मोहन जी ने, प्रीति जी ने और सविता जी ने सभी ने विशेस दी हैं, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ हम भी दुआ करते हैं, बहुत सारी मनी शर्मा मौजूद हैं, आपका एक बार वापस से सभी का स्वागत, वेलकम, थैंक यू सो मच। जिस प्यार से आज आपने सुना भी, सवालों का जवाब भी दिया, और साथ ही साथ बने रहे मॉर्निंग वाले शो में। सो आज सिटी अपडेट में आपने कल होने वाले रोजगार मेले के बारे में भी जाना, एंड साथ ही साथ हमने आपको साइबर ठगी के बारे में बताया ताकि आप भी अवेयर हो सके कि भाई ओटीपी शेयर करना, पिन शेयर करना या अकाउंट की डिटेल देखने से ही नहीं होता है, बल्कि अगर आप किसी अननोन लिंक पर क्लिक मात्र कर देते हैं तो भी आपके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। सो इसलिए कोई भी अननोन अकाउंट से या कोई भी अननोन एपीके फाइल जो है उसको डाउनलोड करके ओपन करने की कोशिश मत करें, ये रिस्की नहीं, बहुत रिस्की हो सकता है आपके लिए, है ना। तो चलिए भाई, अच्छी बात है, इन सारी बातों का आप ख्याल रखेंगे, और साथ ही ये आज का ट्यूसडे मॉर्निंग स्पेशल शो रहा। अब ये ट्यूसडे मॉर्निंग स्पेशल शो आपके लिए कितना स्पेशल रहा ये तो खैर आप खुद ही बताने वाले हैं। फिलहाल आरजे अदनान को दीजिए अब इजाज़त, वापस से आपसे मुलाकात करेंगे कल के वेंसडे मॉर्निंग वाले शो में। फिलहाल आप सुनते रहिए अपना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, चूंकि ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। सो आइए चलते चलते इस गाने को मिल करके एंजॉय करते हैं और अपना ख्याल रखते हैं।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
1: अरे सुना?
3: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
8: अभी रायपुर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा किरण दीदी?
9: समता मैम, आधे घंटे अभी और लगेंगे। और जिम्मी, ये लो आम का पना पियो, और देखो अब मुंह मत फुलाओ।
10: जिम्मी, तुम गुस्सा हो कि इतनी गर्मी में तुम्हें गांव ले जा रहे हैं, तो लौटते समय देखना चहक रही होगी।
8: पर आज गांव की गूंज की टीम एक पर्यावरण संरक्षक शिव कुमार मौर्य के गाँव रायपुर जा रही है।
9: आज हम लोगों की कोशिश है कि लोगों को समझाएंगे कि कैसे इतनी गर्मी से बचे और धरती के टेम्परेचर को कम करने में हम सब सहयोग कैसे करें।
10: चलो तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग सुना देते हैं, जो 5 जून को तुमने भी गाया था ना पर्यावरण दिवस पर, तब तो सबसे ज्यादा तुमने ही लोगों को शपथ दिलवाई थी।

0: उसी में ही खाना खाती है, एक मिनट के लिए भी रूम से बाहर नहीं निकलती है।
1: इसकी मम्मी बता रही थी कि ये किसी को रूम में आने ही नहीं देती है। कहती है कि जितनी बार दरवाजा खुलता है उतनी जल्दी गर्मी अंदर आ जाती है।
2: ये तो बहुत गलत बात है। क्या 3 महीने गर्मी पड़ेगी तो ऐसी ही पड़ी रहोगी? इससे तो बीमार पड़ जाओगी।
3: मैं भी ऊब जाती हूँ पर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। आप लोग बताएं क्या करें? किरण दी का गाना सासू लड़ेगी तो पीसन बिठाए या पूरे दिन सुनते रहते हैं?
4: अरे सासू लड़

0: जिमी, हम लोग गांव की गूंज की एक टीम है और हम ही लोग भागेंगे तो लोगों को कैसे समझा पाएंगे कि हम अपने गांव से कैसे जुड़ें।
1: गांव की गूंज की कोशिश है कि लोगों को गांव से जोड़ने की। शहर में टेम्परेचर कितना था? 47। और जब हम गांव पहुंचेंगे तब वहां पहुंच के देखेंगे कि गांव का टेम्परेचर कितना है।
2: गांव में पेड़, मिट्टी के घर, वैसे कई घर पक्के बन गए हैं, पर एक घर अभी भी है जो खपड़ैल का है। वहां पर देखना, तुम्हें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी।
0: ये तो हमें पता है, ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए और जब भी शरीर को ढकना चाहिए सूती कपड़े से ढकें तो लू नहीं लगती है। देखो सब में कितनी समझदार है हमारी जिमी, हम सब के लिए कॉटन के मोजे और लंबे वाले ग्लव्स भी लाई है।
1: सिर पर जो गमछा रखते हैं उसे गीला करके रखे, स्पेशली आदमी लोग गर्मियों में।
2: खूब सारा पानी पिए, छाछ, लस्सी, नींबू पानी, नारियल पानी और तरबूज खरबूज खूब खाएं। कच्चा प्याज लू से बचाता है कहते हैं ऐसा।
0: देखो फ्लाईओवर बन रहा है, इस कंस्ट्रक्शन के कारण ये एरिया कितना गर्म है। इस रास्ते में बहुत बड़े पेड़ थे, सब कट गए। फिर हम क्यों रोते रहते हैं कि गर्मी बढ़ रही है? हम लोग तो इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं।

0: इस बात पर हम सब जरूर ध्यान देंगे कि जितने पेड़ कट रहे हैं अब हम उससे दो गुना ज्यादा पेड़ लगाएंगे।
1: केवल नाम का वृक्षारोपण नहीं करेंगे फोटो खिंचवाने के लिए, बल्कि उसका तब तक ध्यान रखेंगे जब तक वह पेड़ बड़ा न हो जाए।
0: रायपुर आ गया, कितनी सुंदर बगिया है इनकी। ये तो सेब और पपीता है, यहाँ तो नहीं होता, फिर कैसे?
2: यह शिव कुमार मौर्य के पिताजी का शौक था, अलग अलग जगह के पेड़ सब्जी फल लाकर लगाते थे।
0: नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये किसान भी है और साइंटिस्ट भी है।
1: अरे अरे देखो, मनीराम को बेहोश हो गया, इसे हीट स्ट्रोक पड़ा है, इसको छाया में ले चलो।
3: पहले ठंडे पानी से पूरे शरीर को पोछो, कपड़े ढीले कर दो और तुम पंखा झलो, और कोई भाई जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर दो।
2: ठीक है, अब उसके घर वाले कहते हैं दारू बहुत पीता है, जो लोग दारू बहुत पीते हैं उनको हार्ट स्ट्रोक बहुत पड़ता है। किरण दी जरा समझा दो इसे प्लीज।

0: चलो चलो तुम लोगों को कुछ दिखाते हैं। देखो गौरैया कितने समय बाद दिख रही है।
1: इन लोगों ने छोटे छोटे घोंसले टांगे हैं जिसमें ये गौरैया घर बनाती है। पीने के पानी के कितने सारे मिट्टी के बर्तन हैं।
2: हम लोग प्लास्टिक के परिंडे टांगते हैं ये नहीं सोचते कि पानी कितना गर्म हो जाता होगा और इतनी गर्मी में इतना गर्म पानी चिड़िया कैसे पिएगी।
3: धन्य है आप लोग और आपकी अच्छी सोच।
0: मनीराम की वाइफ मायके जा रही है। किरण दीदी आप ही समझाइए तभी ये मानेगी। अरे यही तो इन पक्षियों की देखभाल करती है।
2: अरे फिर ये सब तो गर्मी में मर जाएंगी।
3: अभी देखना किरण दीदी का लोकगीत सुनकर सब झगड़े खत्म हो जाएंगे।

0: चलो इनका झगड़ा तो खत्म हुआ, चलो पीपल की छाया में बैठते हैं और बेला लस्सी लेकर आई है उसे पीते हैं।
1: देखो देखो जिमी, यहाँ उतनी गर्मी नहीं लग रही है ना, और हवाएं भी गर्म नहीं है। शहरों में तो तेजी से पेड़ कट रहे हैं, गाड़ी बढ़ रही है और एक घर में कई एसी हो गए हैं।
2: कहीं फोर लेन सड़क तो कहीं अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े मॉल, फ्लाईओवर। हम लोग खुश होते हैं देखकर कि हमारा शहर कितना मॉडर्न हो गया है।
3: हाँ सही कह रही हो, गर्मी बढ़ाने का कारण हम मनुष्य ही तो हैं।
0: पानी की परेशानी इतनी बढ़ती जा रही है, ये लोग बता रहे थे कि अब 100 फीट से नीचे पानी मिलता है।
1: गांव में तो शुद्ध पानी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, जानवर बहुत परेशान होते हैं।
3: जितना पानी पीना हो उतना ही ग्लास में लो, वेस्ट ना करें, पानी दूषित ना करें। घर पर जान

0: श्वेता, तुम्हारा क्यों मुंह लटका हुआ है? क्या हुआ?
1: मेरा मोबाइल खराब हो गया है और ऐसा लग रहा है कि दुनिया ही रुक गई है।
2: किरण दीदी, हो जाए वही वाला गाना, मेरा मोबाइल बिगड़ गयो।

0: श्वेता, तुम तो जानती हो मोबाइल से कितने हेल्थ इश्यूज होते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल खराब हो गया तो इतना दुखी मत हो।
1: सब जानती हूँ, पर फिर भी मोबाइल की इतनी आदत पड़ गई है कि बता नहीं सकते।
2: चलो चलकर मेडिकल प्लांट की बागवानी देखो, मन बदल जाएगा।
3: ये देखो एलोवेरा, तुलसी, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, काली हल्दी और ये देखो ये रहा नीम।
0: यहाँ गांव में अगर किसी को दर्द हो रहा है तो उसका भी इलाज है। शुगर है तो उसके लिए कौन सी पत्ती खानी चाहिए उसको भी बताया जाता है। हर मर्ज का इलाज है। और जानवरों को कुछ हो जाता है उसकी तो अलग ही बात है।
1: लेडीज के चेहरे पर देखो कितना ग्लो है, ये ताजी सब्जियाँ, ताजे फल और ताजी हवाओं का असर है।
3: थैंक्स सभी को जबरदस्ती चिलचिलाती धूप में लाने के लिए और इतना सुखद अनुभव कराने के लिए। अब थैंक्स बोल दिया है तो एक गाना तो बनता है।
2: बिल्कुल जिम्मी,

0: बादल छाने लगे हैं, लगता है बरसात होगी। रायपुर में मौर्य जी के परिवार से बहुत कुछ सीखने को मिला।
1: पर्यावरण की रक्षा करेंगे

0: लगाएंगे और उनकी सेवा करेंगे,
1: पानी बचाएंगे और प्लास्टिक के प्रयोग की जगह पर मिट्टी के बर्तन और कांच के स्टील के बर्तन का यूज करेंगे।
2: देखना, फिर हमारे आंगन में गौरैया आएगी, पेड़ पर तोता और कोयल बोलेंगे, कव्वों की काय काय सुनाई देगी।
3: किरण दी, सब लोग गौरी के घर पर खपरेल के घर के बरामदे में ढोलक के साथ इंतजार कर रहे हैं।
0: देखो कितने सुंदर प्लास्टिक के पन्नी से हाथ के पंखे बनाए हैं।
2: मालती, हमारी तरह से ढोलक बजाना। कजरी भाभी और काकी, आपको नाचना भी पड़ेगा।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंश

एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
7: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: हां जी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम आपकी अपने गोंडा शहर की धड़कन रेडियो ज्ञानसली। आज घड़ी में वक्त हो चला है 12:11 बाद स्टूडियो क्लॉक, और आपने ट्यून कर लिया है जब आपका अपना ज्ञानसली। तो ऑफकोर्स अब वक्त भी हो चला है आपके अपने प्रोग्राम ज्ञानसली लाइव का, जिसमें आज है ट्यूसडे को, यानी कि कहानियों वाला डे, जो कहानियां हम लेकर आते हैं दुनिया के अलग अलग कोने से। और कमाल की बात यह है कि आज हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक और मोहतरमा मौजूद है, तो आइए उनसे मिलते हैं। फिलहाल जब तक वो मोहतरमा खुद को तैयार करती हैं, तब तक के लिए हम ही आपको बता दें कि आज हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं फिनलैंड से। समझ रहे ना, कितने दूर दराज से आज हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं। लेकिन आइए देखते हैं वो क्या सोच रही है। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, तो क्या नाम है वैसे आपका?
1: मेरा नाम संध्या श्रीवास्तव है।
0: संध्या जी आज हमारे साथ जुड़ी, मतलब संध्या सुबह सुबह
1: नहीं, वो मेरा नाम संध्या है।
0: ओके, तो संध्या फिलहाल आज आप ज्ञानसी लाइव में पहली बार आई हैं, और आपको बता दें हम कि आज के दिन हम लाते हैं कहानियाँ, वो भी दुनिया के अलग अलग कोने से, लेकिन एकदम सच।
1: यस मैम।
0: ओके, तो आप तैयार हैं कहानियाँ सुनने के लिए?
1: यस मैम, बिल्कुल।
0: आई होप आप एक्साइटेड होंगे। और हमारे साथ एक और भी मौजूद हैं मोहतरमा, उनका नाम भी बताएंगे हम आपको, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पर, तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए आपका अपना शो ज्ञानसी लाइव। और ये दोनों कौन हैं ये भी हम आपको बताते हैं। सब्र कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस, और इस गाने को इन्जॉय करते रहिए। हम मिलते हैं इस गाने के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। कहानियों के साथ साथ आज दो नए चेहरे, नई आवाज़ें हम आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: जहां पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

0: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम ज्ञानसली लाइफ में। मैं हूं आपकी आरजे नदी और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानसली 89.6 एफएम, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। आपकी आरजे नदी के साथ आज मौजूद हैं दो और लोग, और उन लोगों में से एक से तो हमने आपकी मुलाकात करा ही दी थी, एंड दूसरी कौन है आइए उनसे भी मिल लेते हैं। हेलो।
1: हेलो मैम, कैसी हैं
0: आप? मैं ठीक हूँ, आप कौन है बाय द वे, अपना नाम बता सकती है?
1: मेरा नाम सुहानी श्रीवास्तव है।
0: सुहानी, क्या बात है भाई। आज संध्या जी आ चुकी हैं सुबह सवेरे और सुहानी जी आ गई हैं इस गर्मी के मौसम में, क्या बात है क्या बात है। क्या आवाज़ तुमको भी सुनाई पड़ी?
1: यस मैम।
0: ओह माय गॉड, लगता है कहानियों में भूत ढूंढते ढूंढते मैंने स्टूडियो में भी बुला लिया है।
1: मैम आज संध्या और सुहानी गलत टाइमिंग पे आएंगी तो भूत तो आएगा ही ना।
0: ओ आई सी, ओ या आई थिंक भूत भी कंफ्यूज हो चुका है कि संध्या में आना होता है, ये सुबह सवेरे संध्या जी आई हैं, तो आई थिंक मुझे सुबह सुबह आना चाहिए। क्या ख्याल है संध्या जी आपका?
2: जी मैम आप सही कह रहे हैं।
0: मैं हमेशा सही कहती हूँ, जितने भी मेरे यहाँ पर को होस्ट बैठते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं हमेशा सही कहती हूँ।
1: क्योंकि आप कभी गलत होते ही नहीं है।
0: ओह माई गुडनेस, ये बात तो मेरी मम्मी को जाके कब बता रही हो।
2: मम्मी लोग ये चीज़ मानती कहाँ कि मेरे बच्चे बहुत सही हैं।
0: वैसे ये बात सच है, 100% सच है, और इतना सच कभी हम ऑन एयर नहीं बोलते। फिलहाल हंसी मजाक को एक तरफ करते हैं और हम आपको सीधे लेकर चलते हैं आज कहानी की तरफ। आपको बता दूं कि आज हमारा स्टोरी डे होता है और मैं कहानियां लेकर आती हूं दुनिया के अलग अलग कोने से, वो भी इतनी ज़बरदस्त, और उन कहानियों के बीच में ना एक लेसन ज़रूर होता है। लेसन ये होता है कि कभी भी इंसान को आँख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
1: यस मैम।
0: आपने किया है कभी?
1: बहुत बार मैम,
2: लेकिन हर बार धोखा ही मिला है।
0: इसलिए तो मैंने लेसन में बोला था ना कि आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।
1: मैम आँख खोल के होता ही नहीं, बंद करना पड़ता है।
0: अगर आँख खोल के नहीं तो दिमाग खोल के थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए, दिमाग लगा कर करना चाहिए कि अगर हम किसी पर भरोसा कर रहे हैं क्या वो उस काबिल है और कितना काबिल है। कई बार हम सोच लेते हैं ना इंसान 100% परफेक्ट है और एक्सपेक्टेशन हमारी 1000% होती है, फिर वो टूटती है और हमें को लगता है धोखा दिया गया है। फिलहाल वो धोखा भी नहीं होता एक तरीके का, वो सिर्फ हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, हमारी आकांक्षाएं होती हैं जो टूट रही होती है।
1: यस मैम, पर मेरी आज तक टूटी नहीं है।
0: क्या आकांक्षाएं? यू आर सो लकी, आप बहुत लकी हैं इसका मतलब। तो फिलहाल आज मैं आपको लेके चलती हूँ एक ऐसी कहानी की तरफ जो हम लेकर आए हैं 1944 यानी उस वक्त जब चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध। और विश्व युद्ध तो भैया आजकल भी चल रहा है, हर तरफ देखने को मिल रहा है, युद्ध का माहौल बना हुआ है। पता नहीं क्यों लोगों को लड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, हालांकि मुझे भी आता है लेकिन सिर्फ अपने भाई के साथ।
1: मैम मुझे मेरी दीदी के साथ।
0: वो सिबलिंग का होता है, एक दूसरे से सिबलिंग लड़ा करते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आता है।
1: यस मैम,
0: और उनके बिना रहा भी नहीं जाता है।
2: ये बात तो एकदम फैक्ट कह रही है, हम दोनों लड़ लेते हैं लेकिन वो बात अलग है, कोई तीसरा इंसान बोल भी दे ना मजाल नहीं है कोई,
0: तो अंदर 100 डिग्री का उबाल आ जाता है। जैसे पानी खोलता है गैस पे रखकर वैसे हमारे अंदर उबाल।
2: जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं।
0: फिलहाल तो यहाँ पर सिबलिंग की फाइट नहीं चल रही थी, यहाँ पर फाइट चल रही थी दो देशों की। देश कौन कौन से थे वो भी मैं आपको बता दें। 1944 जब फिनलैंड और जर्मनी लड़ रहे थे सोवियत के खिलाफ, और सोवियत एक ऐसा देश जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। अभी तो फिलहाल उसके नाम पर लोग कांपते हैं, अभी उसकी इतिहास इतना डीप है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आज भी लोग इसके इतिहास को पढ़ते हैं। और उस वक्त सोवियत ने फिनलैंड की एक ज़मीन जिसका नाम था लैपलैंड, उसको अपने कब्जे में कर लिया था। अब क्योंकि भाई हम कहते हैं दोस्त का दोस्त हमारा दुश्मन होता है और दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है।
2: yes,
0: और जब जर्मनी सामने आया सोवियत से लड़ने के लिए, तब फिनलैंड ने सोचा क्यों ना जर्मनी से हाथ मिलाया जाए और अपना लैपलैंड वापस ले लिया जाए। तो ये कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाली है और हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ। तो इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 10 मार्च 1944 की सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास। 26 साल का एक सैनिक जिसका नाम था आइमो, वो अपने बाकी के साथियों के साथ, अपने बाकी के सैनिकों के साथ बर्फ़ के ऊपर कैंपर जलाए बैठा हुआ था। तो सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे और बातें कर रहे थे कि यार यहाँ आ तो गए हैं लेकिन कोई दिख नहीं रहा है, अब खबर किसकी भेजें। खबर भी तो भेजनी ज़रूरी है क्योंकि भेजा ऊपर इसलिए गया है ताकि आप यहाँ पर मौजूद सोवियत के जो भी आर्मी मेम्बर्स हैं उनके बारे में बता सकें। अब ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं, बर्फ पड़ रही है और ठंड काफी ज्यादा लग रही है, घंटों की चढ़ान है, स्कीइंग करते हुए सामने आए हुए हैं, ऊपर पहाड़ पे चढ़ चुके हैं, चोटी पर बैठे हुए हैं, अब सोच रहे हैं कि किया क्या जाए। तो यहीं पर आईमो के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना इस बर्फ को तोड़ के चाय बनाई जाए। मतलब चाय देख रही हैं आप, हम चाय से कभी फुर्सत पा नहीं सकते। हर माहौल में हमें एक कप चाय ज़रूर चाहिए।
1: फिर चाहे वो विश्वयुद्ध क्यों ना हो,
0: हाँ वो चाहे विश्वयुद्ध ही क्यों ना हो, भले ही आपके पास दूध ना हो तो हम बर्फ तोड़ के बनाएंगे लेकिन चाय ज़रूर बनाएंगे।
1: यस
0: इसको कहते हैं रियल टी लवर।
2: अरे मैं खुद बहुत ज़्यादा चाय पीने वाली में से हूँ, मुझे हर घंटों में चाय दिया जाए तो मैं बहुत खुश
0: हूँ। एंड ये बहुत गलत आदत है आपकी, डिहाइड्रेशन होगा इस गर्मी में।
2: यस मैम।
0: तो मैं आपको बता दे भाई, ये लोग बैठे हुए थे, आईमो गया अपने बर्फ़ के टुकड़ों को तोड़ने के लिए जो पहाड़ पर पड़े थे। ये तो कहते हैं कि बर्फ़ नहीं खानी चाहिए लेकिन अब जब मजबूरी होती है तो इंसान सब कुछ करता है। उसने उस बर्फ़ के टुकड़ों को एक कटोरे के अंदर, एक पैन के अंदर डाला और आग जलाकर उसको पिघलाने की कोशिश की। पिघलाते पिघलाते वो उसको बस ठोक रहा था कि कैसे भी करके बस वो पिघल जाए और मैं अपने टीम के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, अपने सैनिकों के लिए प्लस खुद के लिए भी चाय बना सकूं। इतने में ही उन्हें गोलियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, ऐसा लगता है कोई चीज़ बहुत ज़ोर से उनकी तरफ आ रही है और सारे के सारे सैनिक इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और उनकी नज़र पड़ती है सामने वाले पहाड़ पर जहाँ से बर्फ़ फिसल रही थी और उस फिसलते बर्फ़ से कुछ सैनिक नीचे आ रहे थे। लिटरली वो उस फिसलते बर्फ़ के ऊपर स्कीइंग कर रहे थे, जहाँ पर लोग बर्फ़ को टूटता देख भाग जाते हैं वो सोवियत की आर्मी उसके ऊपर स्कीइंग करते हुए, उसका फ़ायदा उठाते हुए सीधे हमला करने के लिए उनकी तरफ सामने आए थे। उन्होंने अपने बंदूकों को उस आर्मी की टुकड़ी के सामने कर रखा था और डायरेक्ट गन शॉट में यानी कि फायर करे जा रहे थे नॉन स्टॉप। अब उसकी आर्मी ने समझा, यानी कि फिनलैंड और जर्मनी के लोगों ने समझा कि यहाँ से भागने में ही भलाई है। अब देखो भैया, जंग में होशियार वही होता है जिसको ये पता हो कि जंग में कब खड़ा रहना है और कब यहाँ से रफू चक्कर होना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गलत चीज़ है तो भाई ये गलत नहीं है, इसको होशियारी कहते हैं, स्मार्टनेस कहते हैं। और इसी स्मार्टनेस का फ़ायदा उन्होंने भी उठाया क्योंकि उन्हें पता था सोवियत के पास जो गन्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो वेपन हैं, वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की हैं क्योंकि सोवियत के पास उस वक्त बहुत ज़्यादा पैसा था और उन्होंने अच्छे खासे पैसे को खर्च करके उस वक्त की सबसे एडवांस वेपन को अपने कब्ज़े में कर रखा था, यानी कि अपने लिए कर रखा था। इसीलिए जर्मनी और फिनलैंड के लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ से रफू चक्कर हुआ जाए, पहले छुपा जाए, जान है तो जहान है। और इसी ख्याल के साथ वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। उनका कमांडर जोर से चिल्लाता है कि भागो, यहाँ से भागो, कहीं भी भागो, इधर उधर भागो, मुझे नहीं पता, बस भागो, अपनी जान बचाओ। जहाँ पर सब अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, बाहर एक अलग तूफान सा छड़ा हुआ था, वहीं आईमो के अंदर एक अलग ही तूफान था। उसके अंदर एक ख्याल चल रही थी कि अभी तो मैं अपने भाइयों को घर पर छोड़ कर आया हूँ, मेरे छोटे भाई बहन हैं और मैंने उनसे वादा किया है कि इस लड़ाई के बाद मैं आऊँगा, घर सही सलामत आऊँगा और तुम लोग का ख्याल भी रखूँगा, घूमने चलेंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे, पिकनिक करेंगे, ना जाने कितने ही वादे मैंने किए हैं अपने भाई बहनों से, अगर मैं यहाँ मर गया तो मेरे भाई बहनों का क्या होगा। इस ख्याल को लेकर के उसने बस एक चीज़ सोची थी और वो ये था कि कैसे भी करके इस कॉम्बैक्ट में खुद को ज़िंदा रखना है, खुद की ज़िंदगी इस वक्त सबसे ऊपर है। और उसने सामने देखा एक बहुत बड़ा पहाड़ और जैसे ही सभी की नज़र उस पहाड़ की तरफ गई, लोगों ने तुरंत अपने स्कीज़ पहने, यानी कि वो बर्फ़ पे फिसलने वाली जो एक पैरों में पहनने वाले स्कीज़ होते हैं, शूज़ होते हैं, उनको पहना और कमांडर की तरफ देखना शुरू कर दिया कि बताइए कमांडर करना क्या है। कमांडर ने कमांड किया, चलो सब पहाड़ की तरफ चलो। कमांडर की इतनी बात सुनकर सब लोगों ने स्कीज करना स्टार्ट किया। वहीं पर आईमो के अंदर जो ये तूफान बैठा था कि अपनी ज़िंदगी बचा कर रखनी है क्योंकि भाई बहन घर पे इंतज़ार कर रहे हैं, और वो उसी ख्याल के साथ उसने बहुत स्पीड में, जो उसके एक हार्मोन है एंड्रोलिन, उसने बहुत ज़्यादा रश किया और वो बस अपने आप के अपने बॉडी से कंट्रोल खो चुका था। उसकी बॉडी अब उसके कंट्रोल में नहीं थी, यानी कि वो अपनी बॉडी के कंट्रोल में था। अब वो अपनी स्पीड कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कभी कभार आपके साथ भी ऐसा होता है, जब आपको बहुत गुस्सा आता है आपके हाथ पैर कांपना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली वो वही हार्मोन होता है जो उस वक्त उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, स्पाइक कर रहा था। और उस हार्मोन के चलते उसने अपनी स्कीज उठाई और ना पीछे देखा ना साइड में देखा, बस स्कीज करना स्टार्ट किया। घंटों करता रहा और पता चला कि आगे जाकर एक पहाड़ और बगल में पेड़ से जाकर सीधे लड़ गया। लड़ते ही बेहोश, और अब उसे होश आया पूरे 18 घंटों के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अभी तक तो वो ज़िंदा है। और ये बड़ी कमाल की बात है क्योंकि जिस स्पीड में हम आगे लड़े थे उस स्पीड में हड्डियां टूटना या फिर दिमाग पे चोट लगना दोनों बड़ा लाजमी चीज़ थी, बट मैं तो यहाँ ठीक ठाक हूँ। उसने कहा, अगर मैं ठीक हूँ तो मेरे साथी कहाँ है? साथी भी नहीं है, दूर दूर तक देखा सोवियत की आर्मी भी नहीं है। अब उसके दिमाग में एक और ख्याल आया कि सोवियत की आर्मी ने मुझे देखा नहीं गया, क्योंकि देखते तो बख्शते नहीं, और अगर बख्शा है तो मतलब देखा नहीं, और अगर देखा नहीं है तो क्या वो यहाँ है या नहीं है, क्योंकि बचना भी ज़रूरी है। उसे चारों तरफ देखा, ना सोवियत की आर्मी नज़र आई ना उसके लोग उसे नज़र आए। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं ही काफ़ी हूँ, बट उससे पहले चेक करना है खुद को कि अपने पास क्या कुछ है। उसने तुरंत उठाकर अपने पैरों की तरफ देखा, पैरों में उसकी स्कीज अभी तक लगी थी, यानी कि वो शूज़ जो बर्फ पे फिसलने के काम आते हैं वो अभी तक पहने हुए थे और वो सही सलामत थे। देखकर खुश हुआ कि अरे वाह, लकी तो मैं हूँ, सर भी नहीं फूटा, टांग भी नहीं टूटी, जूते भी पहने हुए। इसके बाद उसने देखी अपनी बंदूक कि भाई बचने के लिए, ज़िंदगी बचाने के लिए एक सैनिक को ज़रूरत होती है उसकी बंदूक की, क्या वो है? हाँ, राइफल भी उसके पास थी, प्लस उसकी कमर में उसका जो खाना पीना था वो भी बंधा हुआ था। और इतना देखकर वो उछल पड़ा कि अरे वाह, इसको कहते हैं गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, जो हम अक्सर कहते हैं कि मैं भगवान का पसंदीदा इंसान नहीं हूँ, बट उसने कहा नहीं, मैं हूँ। हो सकता है मेरे भाई बहन घर में इंतज़ार कर रहे हो, उनकी दुआओं का कमाल है कि मैं अभी तक ज़िंदा हूँ, प्लस मेरे पास सारा सामान भी है। और इस बात से वो खुश होकर उसने सोचा क्यों ना अब यहाँ से निकला जाए, और निकलने के लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 10-11 किलोमीटर की जो चढ़ाई है, जो पहाड़ है, उस पर जाना है और चढ़ना है। वो खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ और उसको पता चला उसके पैरों में चोट नहीं लगी। उसने गॉड को थैंक्स कहा कि मुझे कोई चोट नहीं लगी, क्योंकि जिस स्पीड में आके मैं लड़ा था अभी तक तो मुझे यमराज के पास होना चाहिए था, लेकिन उस दिन शायद यमराज छुट्टी पर थे या फिर कुछ ज़्यादा ही वॉर चल रही है तो कहीं बिजी थे, इसलिए हम मेरे पास तक नहीं आए। और इस बात से खुश होकर वो इंसान वहाँ से उठकर चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक कैंप से धुआं आता नज़र आया, धुआं यानी कि वहाँ पर कुछ इंसान है, इंसानों के अलावा ये हरकतें कोई नहीं करता। उसने उस कैंप की तरफ जाना शुरू किया और पता चला ये कैंप तो उसी के लोगों का है। वो उनकी तरफ बहुत खुशी की तरफ जा रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लोग मिल गए हैं, मेरे साथी मिल गए, अब उनके साथ यहाँ से निकलूँगा, ज़िंदा बच गया हूँ। और जैसे उसके दिमाग में ख्याल आया कि चलो चलते हैं अपने साथियों के पास, उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, तुरंत हिट करके आता है कि जाऊंगा तो ये लोग भून डालेंगे, इनको लगेगा मैं सोवियत का इंसान हूँ। तो इसने ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, हाय मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ, मैं आईमो हूँ, मैं तुम्हारा साथी हूँ, एंड ऑल दैट उसने चिल्लाना शुरू किया। इसके बाद भी उन लोगों ने अपनी बंदूकें उठा ली और उसके ऊपर तान दिया, लगातार फायरिंग स्टार्ट हो चुकी थी। आईमो के सोच रहा था यार मैं इन्हीं का साथी हूँ और ये कैसे इंसान हैं, ये मुझे को मार रहे हैं, ऐसे होते हैं क्या आर्मी वाले? इसके बाद भी वो चिल्लाए जा रहा था कि नहीं यार मत मारो, मैं तुम्हारा ही साथी हूँ, अगर मुझे भी तुमको मारना होता तो मैं अब तक बंदूक उठा चुका होता, बट वो सुनने को तैयार नहीं थे। और आईमो अब उनके टेंट को और अपने साथियों को बीच से छोड़ते हुए, यानी कि एक लाइन बनाते हुए उनके आगे निकल चुका था, बस यही सोचते हुए कि ये मुझ पर गोलियाँ क्यों चला रहे हैं। अब ज़रा आप सोचिए कि वो इन पर गोलियां क्यों चला रहे हैं, और ज़रा आप भी सोचिए क्यों चला रहे हैं। तब तक के लिए हम एक गाना सुनकर आते हैं, क्योंकि मेरा मन कर रहा है एक छोटा से म्यूजिकल वाले ब्रेक का, और वक्त भी हो गया एक ब्रेक का, तो आप इंजॉय करते रहिए जिस गाने को हमने बीच में ही आपके लिए रोक दिया था अरिजीत सिंह की आवाज़ में, राज रिबोट से लो मान लिया हमने। इंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: मुझ में ही, और आप सुन रहे हैं ज्ञान असली लाइव। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति। आज है ट्यूसडे और हम एंजॉय कर रहे हैं एक ऐसी स्टोरी जो बहुत ज्यादा अविश्वसनीय है, यानी कि अनबिलीवेबल है। कुछ कहानियां होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है, और आज की कहानी उनमें से ही एक है। क्योंकि भाई साहब ने जोश जोश में, या फिर कहें तो जिंदा रहने के जोश में, कुछ ऐसा कर दिखाया जो ह्यूमन हिस्ट्री में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। या इवन डॉक्टर्स भी कह चुके थे भैया ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बताते हैं। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, आपका अपना रेडियो ज्ञान असली। कहानी है फिनलैंड की आइमो की, और आइमो जो अब तक भाग रहा था अपने दुश्मनों से, अब भाग रहा है अपने दोस्तों से, क्योंकि दोस्त उस पर गोलियां चला रहे हैं। भागते भागते काफी दिन निकल चुके थे और अब उसको लगने लगा था कि यहां तो दूर दूर तक इंसान तो छोड़ो, जानवर भी नहीं है, पेड़ भी नहीं है, अब मैं जिंदा कैसे रहूंगा। जिंदा रहने के लिए उसे एक कैंप की जरूरत थी, और अब कैंप के लिए एक जगह की जरूरत थी, क्योंकि कहीं भी ऐसे कैंप नहीं लगा लिया जाता है। अब वो जगह ढूंढते ढूंढते थोड़ा आगे ही निकला था। रात होने को आई थी और उसे दूर कहीं से लाइट नजर आई। बंदा खुश हो गया, लाइट मतलब इंसान, इंसान मतलब जिंदगी। उसने उस लाइट की तरफ से जोरों से भागना शुरू किया। पहुंचते जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां उसका एक दोस्त है जो उसके साथ सुबह बैठ के चाय बना रहा था। नाम था मैडी। मैडी को जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, हाय मैडी मैडी मैडी मैडी मैडी मैडी मैडी करके पहुंच गया। और मैडी ने कहा, भैया तुम जरा चुप रहोगे, कितना चिल्लाते हो, शांत बैठो, जमीन पर लेटो। उसने कहा, जमीन पर क्यों लेटना है, जिंदगी है, जिंदा हूं तो ये लाशों की तरह क्यों बिखरना है। उसने कहा, जमीन पर लेटो, जरूरी है। और वो इंसान वहां चुपचाप लेट भी गया। और उसने कहा, तुम इतना धीरे क्यों बात कर रहे हो। उसने कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अपनी आवाज को काबू में रखना होगा। फिलहाल आइमो को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी और उसने तुरंत ही अपना स्लीपिंग बैग निकाला, गड्ढा खोदा उस बर्फ के अंदर और लेट कर सो गया। जब सुबह उठा, चारों तरफ देखा कि वो तो वहां है लेकिन मैडी नाम का कोई इंसान है ही नहीं। वो लाइटिंग की जो लाइट उसने देखी थी वो है ही नहीं, कुछ वहां पर नहीं है। उसको लगा कि दिमाग में कुछ तो लोचा हो चुका है, और अब मैं लोग देख रहा हूँ, लोग पानी देखते हैं रेगिस्तान में, मैं बर्फ में इंसान देख रहा हूँ। और इस बात से वो बहुत परेशान था, बट उसने सोचा क्यों ना, जिंदा रहना है तो आगे निकलना पड़ेगा। वैसे लग तो नहीं रहा है कि जिंदा बचूंगा, लेकिन कोशिश तो करनी बनती है। इसी कोशिश के साथ वो आगे जा रहा था, और जाते जाते काफ़ी दिन गुजर चुके थे। खाने के लिए कुछ नहीं था, खाना उसे बनाना आता नहीं था, जो खाने पीने का सामान था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था, बाकी जो था वो पता नहीं कहाँ खो गया था। शायद वो मैडी जो था वो लेकर भाग चुका था, या शायद उसने कहीं गिरा दिया था, यही उसके दिमाग में चल भी रहा था। धीरे धीरे चलते चलते वो एक बिल्डिंग के पास पहुंचा, जो कि एक आर्मी बिल्डिंग थी। अब उसके दिमाग में था कि अगर ये सोवियत की बिल्डिंग है तो अंदर जाते ही मेरी मौत सामने है, वो भी ऐसी वैसी नहीं, तड़पा तड़पा के मारा जाऊंगा, सवाल पूछे जाएंगे, टॉर्चर किया जाएगा। बट उसने नोटिस किया ये सोवियत की नहीं है। वो चलते चलते बहुत आगे निकल आ चुका है, उसने जर्मनी को भी क्रॉस कर लिया है। ये बिल्डिंग फिनलैंड या जर्मनी के आसपास है, और क्योंकि जर्मनी और फिनलैंड दोनों अभी दोस्त बने हुए थे और दोनों सोवियत के खिलाफ लड़ रहे थे, तो आइमो पर कोई भी हाथ उठाने वाला नहीं था। उसने बिल्डिंग के अंदर कदम रखा, बिल्डिंग पूरी तरह से खाली थी, कोई था ही नहीं उसके अंदर। फिर भी उसने सोचा शायद यहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा, कुछ लोग मिलेंगे, कुछ तो होगा ना यहाँ पर। और वो इसी सोच में बस आगे बढ़ ही रहा था कि उसका पैर एक ऐसी चीज़ पर पड़ा जिसने उसे उछाल कर दूर फेंक दिया। और उसका पैर, जब उसे होश आया तो उसने देखा उसके पैर से उसकी हड्डियां बाहर आ चुकी थी, क्योंकि उसका पैर शायद लैंडमाइन पे पड़ चुका था। और लैंडमाइन आपको पता है एक तरह का बॉम्ब होता है जिसके अंदर अगर आपका पैर पड़ जाए तो जान बचाना मुश्किल है। फिलहाल वो जिंदा तो था लेकिन उसका पैर घायल हो चुका था। और कमाल की बात यह है कि भाई साहब को दर्द ही नहीं हो रहा है, इस हद तक दर्द हो चुका है कि अब उन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा है। उसने खुद को फिर उठाया, लगड़ाते आगे चला, और कमाल की बात यह है कि उसका दूसरा पैर भी एक दूसरे लैंडमाइन पे पड़ चुका था, और फिर से वो हवा के ऊपर। दोनों पैर घायल हो चुके थे,
1: जो बचा था वो भी चला गया।
0: अब तुम्हें हंसी आ रही है इस बात पर?
2: ये बचेगा,
1: यही मतलब यही सोच।
0: एंड दैट्स द पॉइंट, वो अभी भी जिंदा था। दो बार लैंडमाइन पे उसका पैर पड़ चुका था, दोनों पैर उसके घायल हो चुके थे, उसके पैर उससे खून निकल रहा था, और अभी भी वो जिंदा था। वो बस किसी तरह से चलकर निकल रहा था, और उसे कहीं दूर से अब हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही थी। हेलीकॉप्टर, उसको लगा भैया फिर से सपना देख रहा हूँ, जिंदा रहने की आस इतनी ज़्यादा है कि अब मुझे हर एक चीज़ जो है वो सपने में दिखाई पड़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं था।
3: मैम क्या उसने अमृत पी रखा था?
0: बताते हैं। वो इंसान जो पूरी तरह से घायल हो चुका था लेकिन सांसें चल रही थी, उसने देखा कि वो हेलीकॉप्टर उसके आसपास आके रुका है, उसकी आवाज़ उसके कानों में पड़ रही है लेकिन यकीन करने का अब दिल नहीं कर रहा है। बट कुछ लोग उस हेलीकॉप्टर से उतरे थे और जो बात कर रहे थे उसी की भाषा में, यानी कि फिनलैंड की लैंग्वेज में। उसने आँख खोल के देखा तो वहाँ पर लोग थे और उसको लगा कि ये तो अपने ही बंदे हैं। उसे तुरंत स्ट्रेचर पर लिटाया गया और वो हेलीकॉप्टर उठ के सीधा फिनलैंड के एक हॉस्पिटल में पहुँचा। हॉस्पिटल में भाई साहब को जब आईसीयू में रखा गया, उनके पैरों की दवा करनी शुरू हुई, डॉक्टर ने एक चीज़ नोटिस की कि आयमो का दिल 205 बीट पर मिनट धड़क रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारा दिल एक मिनट में सिर्फ 72 से 82 बार धड़कता है, और उससे ज़्यादा धड़के तो आपका दिल ब्लास्ट हो सकता है। आपने भी पता होगा अगर बीपी किसी का हाई हो जाता है 144 तक पहुंच जाता है, 120 और 80 नॉर्मल माना जाता है। इसके अलावा कोई ज़्यादा हो जाए तो इंसान बेहोश होने लगता है, सो चक्कर आने लगता है। लेकिन आयमो का दिल 205 बार धड़क रहा था एक मिनट के अंदर। डॉक्टर ने कहा ये हो ही नहीं सकता, या तो ये इंसान नहीं है या तो इसने कुछ ऐसा खाया है जो इसका दिल इतनी तेज़ी से धड़का रहा है। अब उसे पूछा गया कि भाई साहब एक बताओ तुमने किया क्या है, क्योंकि इंसान का दिल इतना नहीं झेल सकता। तुम्हारा दिल अगर झेल रहा है तो तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी सुपर पावर है? तुम सुपर ह्यूमन हो, आयरन मैन हो, कैप्टन अमेरिका, कौन हो तुम? उसने अपना जब मुंह खोला तो डॉक्टर्स भी हैरान थे। जी हाँ, हम आपको बता दें उस वक्त जब आर्मी के लोग किसी लड़ाई पर जाते थे तो उन्हें कुछ खाने पीने का सामान दिया जाता था, कुछ एनर्जी बूस्ट करने के लिए ड्रिंक्स मिलती थी, कुछ बार्स मिलते थे, कुछ चॉकलेट्स मिलती थी, चॉकलेट का मतलब वो बार, और वो एक क्वांटिटी में उन्हें खाने के लिए बोला जाता था कि अगर आप कहीं पर हैं और अगर आपको एनर्जी की ज़रूरत है तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा खा लीजिए और आप भाग सकेंगे। जैसे उसने देखा था जब गोलियां चल रही थी, सोवियत आर्मी लोगों पर गोलियां चला रही थी और उसके साथी भाग रहे थे, उस वक्त सभी लोगों ने वो एनर्जी बार खाई थी सिवाय इसको छोड़कर, क्योंकि इसके दिमाग में चल रहा था भाई बहनों के पास जाना है। इसके अलावा उसके दिमाग में कुछ था ही नहीं। और जब वो पेड़ से लड़ा उसके बाद, जब उसको 18 घंटे बाद होश आया तो उसने यही सोचा था भूख लगी है कुछ तो खाऊं, और खाने के लिए उसके पास जो एनर्जी बार पड़ा था उसने वही एनर्जी बार उठाकर टुकड़ों में नहीं पूरा का पूरा एक बार में चबा लिया, निगल लिया, और यही वह एनर्जी बार था जिसने उसे इतना घायल होने के बाद भी, महीनों की थकान के बाद भी, लगातार दिनों की चढ़ाई जिसमें उसको खाना नहीं मिल रहा था, खाने की जगह पर वो बर्फ़ खा रहा था, बर्फ़ खाते खाते जैसे उसके मुँह के अंदर बर्फ़ जाती वो पानी बनकर उसके अंदर चला जाता, बस इससे वो ज़िंदा था। वो एनर्जी बार ही था जिसकी वजह से उसका दिल 205 बार धड़क रहा था एक मिनट के अंदर, और डॉक्टर्स परेशान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो एनर्जी बार एक तरह का ड्रग था। हम आपको बता दें उस एनर्जी बार का नाम उस वक्त पेरविटेन था, जो कि एक तरह का ड्रग होता है जिसको आजकल हम लोग मेथोफेटामिन कहते हैं। एक ऐसा ड्रग जो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे सकता है, जो आपके एंड्रल हार्मोन्स को बहुत तेज़ी से रिलीज़ करता है, इतना तेज़ी से रिलीज़ करता है जितना आपकी बॉडी सोच भी नहीं सकती। आपके अंदर हार्मोन्स होते हैं जब भी आपको बहुत गुस्सा आती है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हो, आपके हाथ पैर कांपना शुरू होते हैं, तब वो हार्मोन रिलीज़ होता है। आप एनर्जी बार खाते हो, आपको अचानक से जो सुपर ह्यूमन वाली एनर्जी आ जाती है पीकर किसी भी एनर्जी ड्रिंक को, जैसे स्ट्रिंग हम बोलते हैं, बिजली की रफ्तार, बिल्कुल वही उसके साथ भी था। और ये ड्रग एक क्वांटिटी में लेना होता है, कुछ एमल्स में या फिर कुछ ग्राम में, और उसने वो पूरी का पूरा बार एक बार में खा लिया था, जिसकी वजह से उसके अंदर ये ताकत आ गई थी कि वो महीनों की चढ़ाई, दो बार लाइनमैन पे पैर, दोनों पैर ख़राब, इसके बाद भी उसके पास ज़िंदगी थी। जो आम इंसान का दिल धड़क नहीं सकता, इसके बाद भी उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था। और फाइनली वो एनर्जी बार उसको महीनों तक बस ताकत दिए जा रहा था। एक इंसान जो 7 दिन तक शायद जिंदा रहता बिना खाने पीने के, वो महीनों तक सर्वाइव कर चुका था, और इसीलिए शायद उसे आज भी कहते हैं कि इस सोल्जर को कोई नहीं मार सका। क्यों नहीं मार सका? थैंक्स टू एनर्जी बार, या फिर कहें तो ड्रग। फिलहाल ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी काफ़ी लंबी थी, जो मैं आपके लिए बस कुछ शब्दों में लेकर आई थी, क्योंकि हमारे पास वक्त सिर्फ 1 घंटे का होता है। आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी आर्मी के जंग में जाते हैं या फिर किसी भी वॉर में फंस जाते हैं तो अपने साथ एक एनर्जी बार ज़रूर रखिएगा, लेकिन उसे एक बार में खाने की कोशिश मत कीजिएगा। हो सकता है आप आईमो की तरह लकी ना हो, क्या पता, है ना?
3: Yes,
0: तो भैया अब आपके फीडबैक से पहले आई थिंक हम चलते हैं हमारी दो को होस्ट की तरफ और उनसे पूछते हैं कि आज की स्टोरी उन्हें कैसी लगी।
3: मैम बहुत अच्छी थी, बहुत सस्पेंस था।
0: सस्पेंस था, ओके। एंड संध्या जी आपका क्या कहना है?
3: मुझे तो
1: बिल्कुल, मुझे भी यही लगा कि हाँ वो क्या करेगा, इतना खा लिया कैसे बचेगा।
0: वैसे आपको आइडिया था कि स्टोरी के आखिर में क्या होने वाला है?
1: नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि आखिर में उसके ही दोस्त उस पे क्यों गोली चला रहे हैं।
3: और ये बच कैसे गया?
0: अब बचने का तो मैंने आपको बता दिया,
3: वही अब समझ में आया, अब समझ में आया कि कैसे बच गया।
0: कभी कभी जो चीजें हम अनजाने में कर जाते हैं वो हमारे लिए लकी हो जाती हैं, लेकिन हर बार ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो आपके लिए कभी लकी हो रहा है हो सकता है वही आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाए। तो मेडिकेशंस हों, ड्रग्स हों या फिर कोई एनर्जी बार हो, उसे उतना ही लें जितना पर सर्विंग लिखा होता है। हद से ज़्यादा किसी चीज़ पर ना जाएं, क्योंकि आप आईमो की तरह लकी हों कहीं नहीं लिखा है। और अगर आप जोश जोश में ले लेते हैं, पता चलता है आपका दिल 205 बार धड़क तो रहा है लेकिन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, और आपके दिल अंदर से जो खून आपकी नसों में जाना था वो आपके शरीर के अंदर पहुंच चुका है। तो भाई इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और आज की कहानी आपको पसंद आई होगा तो अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। फिलहाल घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का। 12:57 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं ज्ञान असली लाइव अपनी आर्चुनती और मेरी को होस्ट संध्या और सुहानी के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, वक्त है आपसे विदा लेने का। रखिए अपना ख्याल, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना रेडियो, रेडियो ज्ञान असली 9.6 FM, यही गोना शहर की धड़कन। आपका अगला कार्यक्रम है सेहतिया सिंह, जिसमें बात होती है सेहत की। लेकर आती हैं टीकन भाभी और सेहतिया भैया, तो उनके साथ सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
5: मतलब
4: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। स्वागत है आप सभी का रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका अपना आरजे अदनान। सो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे एक ऐसी बीमारी की जिसका नाम तो आपने शायद सुना होगा लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। नाम भी अलग और अजीब सा लगता है, नाम है काला अजार। लेकिन आज की शुरुआत मैं कहानी से करना चाहता हूं। टीकन देवी जी, आप तो गांव-गांव जाती हैं, क्या आपने कभी कोई ऐसा मामला देखा? वैसे रुकिए रुकिए भाई, मैं तारुफ तो करा दूं। आज हमारे साथ में स्टूडियो मौजूद है हमारी टीकन भाभी। सो कैसी हैं आप?
1: बहुत ठीक हूँ भैया, आप अपना बताइए कैसे हैं आप?
0: बस भाभी बहुत अच्छा हूँ। आप जिस तरह से जानकारियाँ देती हैं उससे मेरा और हमारे गाँव वालों का, हमारे सभी श्रोताओं का बहुत भला होता है और हमारा बहुत पैसा बच जाता है बीमारियों के खर्च में। लेकिन आज चूंकि मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप भाभी गांव-गांव जाती हैं, तो क्या आपने कभी कोई ऐसा काला आजार का मामला देखा है?
1: अरे आरजी भैया, देखा ही नहीं, बहुत करीब से देखा है। हमारे पड़ोस में एक औरत थी, नाम था सरोज। पहले तो उसे बस हल्का बुखार आता था, लोग बोले मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसका बुखार कम ही नहीं हुआ, उसका वजन गिरने लगा, चेहरा पीला पड़ने लगा, पेट फूलने लगा। हमने कहा सरोज चलो अस्पताल चलते हैं, लेकिन उसके घर वाले बोले अरे ये तो किसी की नजर लग गई है या कोई साया है। महीनों तक इलाज नहीं हुआ, जब अस्पताल पहुंची तब तक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इलाज हुआ, जान तो बच गई, लेकिन बाद में उसके शरीर पर दाने निकल आए, चेहरा खराब हो गया। डॉक्टर बोले ये PKDL है, यानी काला आजार के बाद की बीमारी। आज भी वो घर से कम ही निकलती है, लोग उसे देखकर फुसफुसाते हैं। सोचिए आरजी भैया, अगर समय पर इलाज हो जाता तो आज ये सब ना होता।
0: सच में भाभी ये बहुत दर्दनाक है। दोस्तों ये कोई कहानी नहीं बल्कि ये एक हकीकत है। तो आज हम समझेंगे कि काला आजार क्या होता है और ये कैसे होता है और साथ ही साथ इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। सो टीकन भाभी, सबसे पहले ये बताइए कि काला आजार होता क्या है?
1: देखिए आरजे भैया, काला आजार एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसे हम आम भाषा में भले ही काला आजार कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम विसरल लीशमैनियासिस है। ये बीमारी एक बहुत ही छोटे कीड़े के काटने से फैलती है जिसे रेत मक्खी या सैंड फ्लाई कहा जाता है। अब ये मक्खी इतनी छोटी होती है कि कई बार हमें दिखती भी नहीं है, और खास बात ये है कि ये ज्यादातर रात के समय काटती है जब लोग सो रहे होते हैं। जब ये रेत मक्खी किसी इंसान को काटती है तो इसके साथ एक छोटा सा परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये परजीवी धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे लीवर, प्लीहा यानी तिल्ली और खून को नुकसान पहुंचाने लगता है। यही वजह है कि शुरुआत में हमें ये बीमारी साधारण लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को काफी कमजोर कर देती है।
0: अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन टीकन भाभी, इसके लक्षण आखिर हम कैसे पहचान सकते हैं? लोगों को कैसे पता चले कि ये काला आजार है?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे भैया। देखिए, इसके लक्षण एकदम से तेज नहीं आते बल्कि धीरे धीरे दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को लंबे समय तक बुखार बना रहता है जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। इसके साथ साथ व्यक्ति का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है और वो पहले जैसा काम नहीं कर पाता है। धीरे धीरे पेट भी फूलने लगता है क्योंकि अंदर की तिल्ली और लीवर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा खून की कमी भी हो जाती है, जिससे चेहरा पीला पड़ने लगता है और व्यक्ति बहुत ही कमजोर दिखने लगता है। यही वजह है कि कई बार लोग इसे साधारण बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है।
0: मतलब देखने में तो ये सामान्य बुखार जैसा लगता है, लेकिन असल में अंदर से बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, क्यों?
1: बिल्कुल सही समझे आप। और सबसे चिंता की बात तो ये है कि अगर समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो करीब 95% मामलों में ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए लक्षणों को पहचानना और समय पर जांच कराना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो अलग अलग स्थानों पर ज्यादा पाई जाती है। अगर हम इस काला आजार की बात करें तो ये बीमारी किन इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है?
1: भैया, भारत में ये बीमारी खास तौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ज्यादा पाई जाती है। इन राज्यों में करीब 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के खतरे में हैं।
0: इतने सारे लोग जोखिम में हैं? ये तो सच में चिंता का विषय है।
1: हाँ अर्जे भैया, और खास बात ये है कि ये बीमारी ज्यादा उन लोगों को प्रभावित करती है जो कच्चे घरों में रहते हैं, जिन घरों की दीवारों में दरारें होती हैं, जहाँ साफ सफाई की कमी होती है और जहाँ पशु घर के बहुत पास रखे जाते हैं, वहाँ ये रेत मक्खी आसानी से पनपती है और ऐसे वातावरण में इस बीमारी का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
0: तो भाभी, अगर किसी को लगे कि ये लक्षण उसे है तो उसे आखिर क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। आजकल वहाँ पर बहुत ही आसान और तेज जांच की सुविधा उपलब्ध है। एक ऐसा टेस्ट होता है जो लगभग 10 मिनट में ये बता देता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं। और सबसे जरूरी बात ये है कि इसका इलाज सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह मुफ्त किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति पैसे की वजह से इलाज से वंचित न रह जाए।
0: मुफ्त इलाज, ये तो बहुत राहत की बात है भाभी।
1: बिल्कुल, और अब तो इलाज के लिए बहुत प्रभावी दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, जैसे कि लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जो जल्दी असर करती है और मरीज को जल्द ठीक होने में मदद करती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि मरीज को पूरा इलाज लेना चाहिए, बीच में दवा छोड़नी नहीं चाहिए, नहीं तो बीमारी दोबारा लौट सकती है।
0: बिल्कुल भाभी, अभी आपने बताया कि लोग समय पर अस्पताल जाएं, लेकिन एक बात बताइए, कई बार लोग सोचते हैं कि जांच में बहुत वक्त लगेगा या बहुत पैसे लगेंगे, तो क्या सच में जांच इतनी मुश्किल होती है?
1: अरे नहीं नहीं आरजे भैया, अब तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रही। पहले के समय में जरूर जांच में थोड़ा समय लगता था, लेकिन अब सरकार ने इतनी सुविधा दे दी है कि गांव के पास ही अब सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत जल्दी काला आजार की जांच हो जाती है। आजकल एक खास तरह का टेस्ट होता है जिसे हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस उंगली से एक छोटा सा नाखून का सैंपल लिया जाता है और करीब 10 मिनट के अंदर ही पता चल जाता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं।
0: सिर्फ 10 मिनट में? ये तो सच में बहुत आसान हो गया।
1: हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि अब किसी को भी जांच कराने में डरने या देरी करने की जरूरत नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि शहर जाना

0: हो सके और बीमारी गंभीर होने से पहले ही रोक दी जाए।
1: मतलब अब सबसे बड़ी बाधा यानी देर से पता चलना, वो भी काफी हद तक खत्म हो गई है, क्यों?
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं तो हमेशा लोगों से यही कहती हूँ कि अगर किसी को 2 हफ्तों से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो रहा हो या कमजोरी महसूस हो रही हो, तो बिना सोचे समझे सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाएं और टेस्ट कराएं। डरने की नहीं, समझदारी दिखाने की जरूरत है।
1: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। तो क्या आशा दीदी भी इसमें मदद करती हैं?
0: हाँ बिल्कुल, आशा दीदी और दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर ऐसे लक्षण वाले लोगों की पहचान करते हैं, वो लोगों को समझाते हैं, उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने में मदद करते हैं और कई बार खुद टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। अगर किसी को जाने में दिक्कत हो तो आशा दीदी से मदद जरूर लेनी चाहिए, वो आपके सबसे करीब की स्वास्थ्य साथी हैं।
1: ये तो बिल्कुल सही बात कही और बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब अब जानकारी, जांच और इलाज तीनों ही गांव के पास उपलब्ध हैं, क्यों भाभी?
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि अब काला आजार को हराना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। बस जरूरत है कि लोग समय पर कदम उठाएं।
1: बिल्कुल, लोगों के बारे में तो आपने बताया कि लोग समय पर कदम उठाएं, पर साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या सरकार इस बीमारी को खत्म करने के लिए कुछ कर रही है?
0: जी, सरकार इस दिशा में काफी काम कर रही है। एक बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है इस समय, जिसका नाम है राष्ट्रीय काला आजार उन्मूलन कार्यक्रम, और ये NCVBDC के तहत आता है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य ये है कि हर ब्लॉक में काला आजार के मामले 10,000 लोगों में से एक से भी कम हो जाएं। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने 2023 में ये लक्ष्य हासिल भी कर लिया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: क्या बात है भाभी, ये तो सच में गर्व की बात है।
0: हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। अभी भी सावधानी बहुत जरूरी है। सरकार हर साल लाखों घरों में स्प्रे करवाती है। करीब 3.5 से 3.8 करोड़ लोगों के घरों में दीवारों पर दवा का छिड़काव किया जाता है, जिससे रेत मक्खियां खत्म हो सके और बीमारी फैलने से रोकी जा सके।
1: तो आम लोग खुद क्या कर सकते हैं भाभी इससे बचने के लिए?
0: बहुत आसान उपाय हैं, जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। सबसे पहले तो घर की दीवारों की दरारों को भरना चाहिए, ताकि मक्खियों को छिपने की जगह ना मिले। घर और आसपास की साफ सफाई बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा पशुओं को घर से थोड़ा दूर ही रखना चाहिए, ताकि मक्खियां इंसानों के पास ना आए। रात में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जमीन पर या खुले में बाहर सोने से बचें। इन छोटे छोटे उपायों से हम काला आजार जैसी गंभीर बीमारी से भी खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: तो टीकन भाभी, एक बात और बताइए, गांव में लोग इस बीमारी को लेकर किस तरह की गलत फहमियां रखते हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग बीमारी से ज्यादा डर और उसके बारे में सुनी सुनाई बातें बहुत करते हैं। इसको लेकर आप क्या मानती हैं?
0: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे भैया, और यही सबसे बड़ी समस्या है। हमारे गांवों में आज भी बहुत लोग काला आजार को भूत प्रेत, साया या किसी बुरी नजर का असर मान लेते हैं। जब किसी को लंबे समय तक बुखार रहता है, शरीर कमजोर हो जाता है और पेट फूल जाता है, तो लोग सीधे डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ फूंक या ओझा गुनी के पास चले जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, अरे भाई, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक बीमारी है और इसका इलाज भी है। अगर समय पर सही इलाज मिल जाए तो व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा भाभी आपने, और शायद इसी वजह से लोग देर कर देते हैं इलाज कराने में।
0: बिल्कुल, और एक और बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग सोचते हैं कि ये बीमारी छूने से फैलती है, इसलिए मरीज से दूरी बना लेते हैं। कुछ लोग तो मरीज को अलग कमरे में रखने लगते हैं या उससे बात तक नहीं करते, लेकिन सच्चाई तो ये है कि काला आजार छूने, साथ बैठने या खाना खाने से नहीं फैलता, ये सिर्फ रेत मक्खी के काटने से फैलता है। इसलिए मरीज से डरने या उसे अलग करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसे सहारा देने की जरूरत है।
1: क्या बात है भाभी, बिल्कुल अच्छी और सच्ची बात कही आपने। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये बात और जानना चाहूँगा कि और आखिर कौन कौन सी गलत धारणाएं होती हैं लोगों में काला आजार को लेकर।
0: कई लोग ये भी मान लेते हैं कि अगर बुखार अपने आप कम हो गया तो बीमारी ठीक हो गई, जबकि अंदर से बीमारी बनी रहती है और बाद में और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। कुछ लोग दवा शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा आराम मिलता

0: है दवा बीच में ही छोड़ देते हैं। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे बीमारी दोबारा लौट सकती है और जटिल हो सकती है। और एक बात और, कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ गरीब या कमजोर लोगों को ही काला आजार होता है, कि अगर माहौल सही नहीं है और मक्खियाँ पनप रही हैं तो कोई भी व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है।
1: अच्छा, तो आखिर इसका समाधान क्या है? लोग इन गलत फहमियों से आखिर कैसे बाहर आए?
0: समाधान बहुत साफ है भैया, सही जानकारी और जागरूकता। सबसे पहले तो जैसे ही किसी को 2 हफ्तों से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो या पेट फूलने लगे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। किसी भी तरह के झाड़ फूक या देरी से बचे। दूसरी बात, अगर डॉक्टर इलाज शुरू करे तो पूरा कोर्स पूरा करे, चाहे बीच में कितना भी आराम क्यों न मिल जाए। और तीसरी बात, घर और आसपास की सफाई जरूर रखें, दीवारों की दरारें भरें और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, मरीज का साथ दें, उसे अलग या कमजोर महसूस ना होने दें।
1: बहुत ही जरूरी बात बताई भाभी आपने। लेकिन आपने शुरुआत में एक दुखद कहानी सुनाई थी, क्या कोई ऐसी कहानी भी है जहां जागरूकता ने किसी की जिंदगी बदल दी हो?
0: हाँ बिल्कुल है, और ये कहानी सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। हमारे पास के ही एक गांव में मेरी एक सहेली है, रीना। कुछ साल पहले उसके इलाके में काला आजार के कई मामले सामने आए थे, जिससे पूरा गांव डरा हुआ था। लेकिन रीना ने डरने के बजाय समझदारी दिखाई। उसने पहले से ही अपने घर की दीवारों को ठीक करवाया, दरारें भरवाई और घर के आसपास साफ सफाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने मच्छरदानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आशा दीदी की हर बात को ध्यान से सुना और अपनाया भी। एक दिन उसे भी हल्का बुखार हुआ। पहले तो वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन इस बार उसने देर नहीं की, तुरंत स्वास्थ्य केंद्र गई, टेस्ट करवाया और रिपोर्ट नेगेटिव आई। वो हंसते हुए मुझसे बोली, यार टीकन, इस बार मैं डरने नहीं वाली थी, क्योंकि मुझे पता था कि क्या करना है और कहाँ जाना है। आज वही रीना अपने पूरे गांव में लोगों को समझाती है कि डरना नहीं बल्कि समय पर सही कदम उठाना है।
1: सच में यही तो असली बदलाव है, जब एक व्यक्ति जागरूक होता है और पूरे गांव को जागरूक बना देता है।
0: बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी ताकत भी है, जागरूकता। याद रखिए, काला आजार खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर हम समय पर पहचान लें और इलाज करा लें तो इसे पूरी तरह हराया जा सकता है।
1: और यही सबसे बड़ा संदेश है आज के कार्यक्रम का। समय पर जांच और सही इलाज आपकी जिंदगी बचा सकता है।
0: और साथ ही सही जानकारी अपनाइए, गलत फहमियों से दूर रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाइए।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों आज से ही एक कदम बढ़ाइए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जागरूक बनिए।
2: जागरूक बने, सुरक्षित रहे और काला आजार को मिलकर हराएं।
1: तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस शो को हम यहीं पर पूरा करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर शपथ लेते हैं।
3: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
4: प्राथमिकता देंगे,
3: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
4: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
3: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे
4: और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
3: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे
4: और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
3: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे
4: शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई
5: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर निधि, जो एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और इस समय वे न्यू कॉन्सेप्ट संस्था से जुड़ी हैं। डॉक्टर अमर निधि के पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण, लाइफ स्किल्स, परिवार नियोजन, HIV एड्स और सामाजिक व व्यवहारिक परिवर्तन पर व्यापक रूप से काम किया है। उन्होंने समुदाय को जागरूक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमें खुशी है कि डॉक्टर अमर निधि आज हमारे साथ हैं और आज हमारे जरिए वे समुदाय से कुछ बातचीत करेंगी। डॉक्टर अमर निधि, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
6: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, मुझे भी आप सबके साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है और ये ऐसा महसूस कर रही हूँ, गर्वित महसूस कर रही हूँ कि श्रोताओं को मेरे माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मैं दे सकूँ जिससे वो लाभ उठा सकें।
5: हमारा पहला सवाल है कि अनीमिया की समस्या काफी व्यापक हो गई है और इसके मुख्य कारण क्या हैं?
6: ये बहुत ही अहम सवाल है। अनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व नहीं मिलता तो खून में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी, कभी किन्हीं कारणों से शरीर में से खून का बह जाना, पेट में कीड़े या कृमि होना या कुछ पुरानी बीमारियां भी अनीमिया का कारण हो सकती हैं।
5: क्या अनीमिया के कुछ भिन्न लक्षण होते हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि अनीमिया है?
6: अनीमिया के सामान्य लक्षणों में थकान होना, चक्कर आना, त्वचा या जीभ का पीला होना, हाथ पैरों का ठंडे होना, सांस फूलना और खास कर पढ़ाई जैसे कामों में ध्यान ना लगना शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी को अनीमिया हो और ये लक्षण ना दिखाई दें। इसीलिए अनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन की जांच ही सबसे सही तरीका है।
5: जी, तो क्या अनीमिया को रोकने या अनीमिया से निकलने का कोई तरीका आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं को?
6: जी हाँ, बिल्कुल। अनीमिया को रोकने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां या सिरप का सेवन लेना, आयरन वाले आहार, हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा का लेना और बीमारी का इलाज, ये सब बहुत मदद करते हैं। गंभीर स्थिति की अनीमिया में डॉक्टर ज्यादा खुराक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं।
5: तो मैम, अनीमिया सिर्फ लड़कियों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए को ही होता है या फिर पुरुषों में भी अनीमिया पाया जाता है?
6: ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि महिलाओं, खास करके किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का खतरा अधिक होता है, लेकिन पुरुष और बच्चे भी अनीमिया से प्रभावित होते हैं, इसलिए समय समय पर सभी को अनीमिया की जांच करवानी चाहिए।
5: तो मैम, मतलब अनीमिया के बचाव के लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं? कुछ सरकारी योजनाएं या सरकारी कार्यक्रम कुछ उपलब्ध हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं?
6: ये बहुत आपने अहम सवाल पूछा जो श्रोताओं की जानकारी के लिए है कि सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत जीवन के हर चरण के लिए आयरन फॉलिक एसिड की खुराक दी जाती है और इसी के साथ साथ बच्चों और किशोरों में किशोर किशोरियां दोनों शामिल हैं, उनकी जांच, कृमिनाशक दवा और काउंसलिंग भी की जाती है। स्कूलों में साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसे हम विफ्स के नाम से भी जानते हैं, ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है।
5: मैम, हमारा अगला सवाल होगा कि आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र से परिवार किस तरह आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, कृमिनाशक दवाएं और बच्चों की वृद्धि की निगरानी जैसी सेवाएं ले सकता है?
6: ये आसान है। परिवार जो है वो नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सब सेंटर या PHC में मुफ्त अनीमिया की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर IFA की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां और कृमिनाशक गोलियां देती हैं और घर पर ही बच्चों का वजन और ऊंचाई भी नापती हैं।
5: तो क्या इसका इलाज घर पर ही हो सकता है? मतलब हमारा अगला सवाल यही था कि एनीमिया, मतलब इसके जो इलाज है, उपचार है, वो कैसे कराया जा सकता है? निःशुल्क जांच कहाँ होती है? तो इसके बारे में
6: इसको मैं दो भागों में कवर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये है कि अनीमिया का उपचार किसी भी सरकारी केंद्र पर, स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में उपलब्ध है। एक बार जब सब सेंटर या PHC या आंगनवाड़ी केंद्र से दवा मिलने लगती है तो उसको बार बार आशा और आंगनवाड़ी इसका वितरण कर सकते हैं, घर जाकर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगर किसी को अनीमिया की शंका है वो सबसे नज़दीकी सब सेंटर PHC CHC या ज़िला अस्पताल में जाएं तो वहाँ हीमोग्लोबिन की जांच और मुफ्त इलाज जो है वो डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध है। जो गंभीर रूप से अनीमिया से पीड़ित मरीज होते हैं उनको आगे रेफर कर दिया जाता है।
5: जी, तो मैम जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ज्यादा अनीमिया पाया जाता है, तो क्या इनके बचाव के लिए, इनके इनके स्वास्थ्य के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता हमें सरकार से मिलती है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनके होता है?
6: जी हाँ, बिल्कुल होता है। ICDS और जो सरकारी मुहिम है पोषण अभियान के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण, जिसे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी कहते हैं, उसके साथ साथ मुफ्त आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, स्वास्थ्य की जांच और सलाह दी जाती है।
7: मैम एक जरूरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या जो लोग अधिक मोटापे की समस्या से जूझते हैं उन्हें भी अनीमिया हो सकता है या उन्हें अनीमिया होने के अधिक चांसेस हैं?
6: थोड़ा सा ये सुनने में अजीब लगता है कि, लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जो मोटापा है वो अनीमिया से बचाव नहीं करता, बल्कि सूजन की वजह से शरीर में आयरन का उपयोग कम हो जाता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि मोटे लोगों को भी अनीमिया हो सकता है।
5: तो आजकल की जो बहुत आदतें हैं जंक फूड खाने की लोगों में, तो क्या आज की युवाओं में जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं उनको अनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं उनमें?
6: आजकल की पीढ़ी के लिए, खास करके युवा की पीढ़ी और जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी बात है जो आपने पते की बात पूछी है। जंक फूड में कैलोरी तो बहुत होती है लेकिन ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन नहीं होते, इसलिए आयरन युक्त और पौष्टिक भोजन की जगह अगर जंक फूड लिया जाए तो खून की कमी का खतरा यानी अनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जंक फूड होता है, जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: फ्लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इस चिलचिलाती गर्मी का आनंद भी उठा रहे होंगे। बिल्कुल भाई, चिलचिलाती गर्मी का भी आनंद उठाना चाहिए। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि आरजे आयुषी आई है सुन सहेली में और आते ही ताने दे रही है कि बताओ चिलचिलाती गर्मी के आनंद कौन उठाता है। लेकिन भाई, हम इंसान हैं, भगवान ने जितनी भी सारी चीजें बनाई हैं, चाहे वो धूप हो, छां हो, बारिश हो, हवा हो, तूफान हो, सबका एक अपना मजा होता है। अब देखिए ना, आ चुकी है गर्मियां और गर्मियों का मजा लेने के लिए मुझे लगता है कि आम से बेहतर चीज और कुछ नहीं होती है। आम हो गया या फिर रसीलेदार जितने फल होते हैं, जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, या फिर अगर हम बात करें खीरा की, तो खीरा भी देखिए आजकल कितना ज्यादा खाया जा रहा है, लेकिन हमें जो सुनाई दे रहा है वो तो थोड़ा गड़बड़ चीज है। क्या आपको पता है आर्जेंशी का क्या
1: क्या?
0: अरे भाई, तरबूज। ऐसा सुना जा रहा है और ऐसा न्यूज में भी दिखाया जा रहा है कि कई लोग तरबूज खाने से बीमार पड़ गए हैं और वो फिर हॉस्पिटल में नजर आते हैं। तो भाई देखिए, जहां से भी आप तरबूज लें तो अवॉइड करें बहुत बड़े साइज का तरबूज लेने के लिए, जो बहुत ही ज्यादा बहुत बड़े साइज के होते हैं वो अधिकतर इंजेक्शन से तैयार किए होते हैं, जिसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं और हॉस्पिटल आपको जाना पड़ सकता है। तो भाई, इसी थॉट के साथ मैं आपका यानी कि हमारे प्यारे लिसनर का वेलकम करती हूँ। मैं हूँ आपकी आरजे आयुषी और मेरे साथ है आपकी हमारी दोनों की सहेली आरजे अंशिका, और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा मस्ती वाली।
1: बिल्कुल, आज तो अपनी तो पाठशाला और मस्ती की पाठशाला लेकर हम हाजिर हैं, क्योंकि आज हमारा दिन ही कुछ मस्ती की पाठशाला वाला है। तो आज का हमारा दिन जो है वो है ट्यूसडे। ट्यूसडे का सेक्शन आप सभी जानते हैं लिसनर्स कि हमारा होता है बच्चों का, यानी कि थोड़ी सी मस्ती करेंगे, थोड़ी सी खुशियां बांटेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और फनी। तो आज हम बहुत सारा कुछ लेकर के आए हैं फन के साथ, क्योंकि भाई आज ये आयुषी आए और फन ना हो तो फिर मजा नहीं आएगा।
0: अच्छा, फन से मुझे याद आया कि हम सब जब छोटे हुआ करते थे या फिर हम जब मस्ती मजाक की बात अभी भी करते हैं, तो हम पक्का अपने बचपन के कोई ना कोई एक किस्सा जरूर छेड़ते हैं।
1: बिल्कुल
0: भाई, बचपन में ऐसा हुआ था, बचपन में वैसा हुआ था। पर मुझे नहीं लगता है कि हमारे जेंजीज भी, देखिए जेंजीज काफी ज्यादा बदनाम जनरेशन है, यानी जेंजी तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसा है वैसा है, पर भैया जेंजी ने भी मिलेनियल्स वाली चीजों को जिया है। बताइए कैसे
1: कैसे?
0: अब देखिए, जितने लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त, चाहे वो रेडियो से सुन रहे हो, मतलब फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हो या फिर ऐप से सुन रहे हो, वो सभी जानते हैं कि भाई बचपन में कहीं ना कहीं हम लोग अच्छे तरीके से कुड़ाई जरूर हुई है हमारी पढ़ने के लिए।
1: उसके बिना फिर बचपन कैसा?
0: उसके बिना बचपन कैसा? अब देखिए, मुझे तो मेरा रूटीन याद है कि जब मैं सुबह उठती थी तो मार मार के तो पहली बात मेरी मम्मी जगाती थी मेरे को कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, अगर नहीं मारने का मन है तो कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा एक ग्लास पानी मेरे पे डाल देती थी, मैं अपने आप उठ जाती थी। या फिर गर्मियों में पंखा बंद हो जाता था, ये तो आमतौर पर सभी घरों में होता है कि पंखा बंद कर दिया जाता है और फिर गर्मी लगती है तो इंसान अपने आप ही उठ जाता है। फिर किसी तरीके से मैं 7:30 वाला स्कूल अटेंड करती थी, फिर दोपहर में आती थी, जो खाना खाने पीने की भूख रहती थी, क्योंकि देखिए बच्चे बचपन में खाना भी नहीं खाते, मतलब पढ़ते तो नहीं है लेकिन खाना भी अधिकतर माँ बाप की प्रॉब्लम होती है कि बच्चे हमारे खाना नहीं खाते। और सेम इसी तरीके से मैं भी थी कि मुझे तो खाने से बिल्कुल एलर्जी थी, मतलब कुरकुरे लाके दे दो, टकाटक लाके दे दो, वो खा लूंगी, लेकिन अगर तुम
1: खाना नहीं, मतलब ये होता है ना बच्चों में कि घर का दाल चावल नहीं खाना,
0: जी दाल चावल रोटी सब्जी नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और उसके बाद मेरी मम्मी जल्दी से मेरे को तैयार करती थी, एक सुंदर सी मेरे पास येलो कलर की फ्रॉक थी, फ्रॉक पहनाती थी, कंघियों की करके मुझे जल्दी से ट्यूशन भेज देती थी, फिर ट्यूशन 2 घंटा पढ़ के आओ, फिर होमवर्क करो, और इतने काम के बाद भी हम लोग डांट ही खाते रहते थे कि हम लोग पढ़ते नहीं है,
1: कोई काम ढंग से मत करना, अब इतने के बाद भी सुनना पड़ता था।
0: हाँ, अब ये बताइए, हमारे माँ बाप तो बहुत ज्यादा परेशान थे कि हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन आने वाले जनरेशन के माँ बाप तो और भी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनके पास तो ये भी है कि हमारे बच्चा फोन ही देखता रहता है, पढ़ता है ही नहीं।
1: बिल्कुल, ऐसी प्रॉब्लम तो होती है, और आज कुछ हमारा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड होने वाला है। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप सभी को पता है लिसनर्स, कि हमने न्यू सेगमेंट स्टार्ट किया हुआ है सुन सहेली में, यानी कि हम आपको एक प्यारी सी पोएट्री सुनाएंगे, उसके बाद आपको कुछ रियल लाइफ फैक्ट्स बताएंगे और फिर हम चलेंगे हमारे इस वाले टॉपिक पे।
0: बिल्कुल, अब देखिए अंशिका, ये सारी चीजें तो मुझे आपसे जाननी ही है कि कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं, मतलब कि उन्हें ज्यादा मारे पीटे भी ना, और कैसे उन्हें खुद से मोटिवेट करें कि वो खुद से पढ़े। लेकिन उससे पहले मैं हमारे सभी लिसनर से कहना चाहती हूँ कि भाई, मुझे लग रहा है कि गर्मी कुछ ज्यादा ही फैल गई है और हमारे लिसनर के घर तक तो बहुत जल्दी पहुंच चुकी है। तभी तो देखो अभी तक चैट बॉक्स में कोई आया ही नहीं, ना हेलो ना हाय ना नमस्ते ना सत श्री अकाल ना आदाब, सारे के सारे अपने घर में बैठे हैं। तो भाई जल्दी से आइए चैट बॉक्स में और बताइए कि कैसा है आपका हाल चाल और गर्मी ने क्या आपका किया हाल बेहाल, या फिर अभी आप ठीक है।
1: नागेश्वर जी आ गए हैं और लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, नमस्कार। नमस्कार नागेश्वर जी, कैसे हैं आप? उससे पहले बता दूं कि भाई आज आप सोच रहे होंगे कि आज ये चेंजिंग कैसे है, मतलब अचानक आज आयुषी कैसे है, आज
0: सप्ताह
1: आ रहे होंगे कि आज ये चेंजिंग कैसे है, मतलब अचानक आज आयुषी कैसे है, आज
0: सरप्राइज नहीं आती हूँ।
1: अरे मुझे पता है आप सरप्राइज देती हैं, लेकिन हम हमारे लिसनर को भी क्लियर कर देते हैं ना। तो एक्चुअली हुआ ये है कि आज आपकी फेवरेट आज समता छुट्टी पे है, इसलिए आज हमने हमारी जो सहेलियां यानी कि आरजे आयुषी इन्हें पकड़ा है और इनसे कहा है कि चलिए हमारे साथ और फटाफट से आप भी अपनी कुछ बातें, कुछ शरारतें, कुछ प्यारी सी नोकझोंक वो बताइए हमारे लिसनर्स को। वैसे तो आप शरारतें ही करती हैं, तो मुझे लगता है शरारतें ही बताएंगी।
0: लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हमारी आरजे समता आज बोल नहीं रही है, लेकिन आरजे समता सुन जरूर रही होंगी।
1: हाँ,
0: तो
1: ये तो
0: उनकी कोई बुराई नहीं करना है आज, ठीक है?
1: ओके ओके कन्फर्म।
0: हाँ
1: तो चलिए हमारे

0: तो ये बातें चलती रहेंगी। अब चलते हैं, आपको हम ले चलते हैं प्यारी सी पोएट्री की तरफ। तो आज की हमारी जो पोएट्री है उसका जो हम टाइटल लेकर के आए हैं वो बड़ा प्यारा सा है। प्यारा इसलिए क्योंकि टाइटल है प्यारा बचपन। बचपन की वो बेफिक्री, वो खेल, वो छोटी छोटी बातों में लड़ना, वो सारे इमोशंस जो कभी ना कभी सभी ने फील किए होंगे, वो आज हम आपको बताएंगे इस पोएट्री के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। ना स्कूल की चिंता, ना होमवर्क का भार, बस गलियों में दौड़ना और दोस्तों का प्यार, मिट्टी में सन जाना, कागज की नाव चलाना, यही तो है बचपन का सबसे हसीन खजाना। एक टॉफी के लिए वो घंटों तक लड़ना, एक टॉफी के लिए वो घंटों तक लड़ना, फिर अगले ही पल कंधे पर हाथ रखना, बारिश की बूंदों में छप छप कर नहाना, और तितली के पीछे दूर तक भाग जाना। परियों की कहानी और राजा रानी का किस्सा, दादी की गोद हमारे दिन भर का एक प्यारा बसेरा। बिना बात के हंसना, छोटी बात पर रोना, और माँ के आंचल में सिर रखकर सो जाना। पैसे नहीं थे जेब में, फिर भी हम अमीर थे। पैसे नहीं थे जेब में, फिर भी हम अमीर थे। खुशियों के सागर में हम ही वजीर थे। छूट ना जाए पीछे ये भोलापन हमारा, याद आता है सदा वो बचपन का किनारा। बिल्कुल, अभी जिन्होंने भी ये पोइट्री हमारे लिसनर्स से सुनी होगी उन्हें भी याद आ गया होगा, और यहाँ बैठे बैठे हमें भी इन लाइंस के थ्रू रिमेम्बर हो गया कि वाकई में बहुत ही प्यारा बचपन, और बिल्कुल मिट्टी में खेलना, कागज़ की नाव बनाना, और घंटों एक टॉफी के पीछे लड़ जाना, बिल्कुल वही इमोशंस हैं कि कैसे जुगनू रात को जब दिखते थे तो हम उनके पीछे भाग जाते थे कि हमें उन्हें पकड़ना है। बट बिल्कुल समय के साथ कहीं ना कहीं वो भोलापन, वो आपका बचपन, वो आपके इमोशंस छूट जाते हैं। तो आज के दिन यानी कि बच्चों के दिन हम यही मैसेज देना चाहेंगे, बच्चों को तो देना ही चाहेंगे कि वो हमेशा अपने बचपन में खूब जिएं, खूब खुश रहें, और छोटी छोटी इन सारी खुशियों को अपने झोली में भरें, क्योंकि ये पल जो अगर बीत जाएंगे ना तो फिर नहीं आएंगे। मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि आजकल हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी जो होते हैं ना, बस फ़ोन दे दो, अगर आपने फ़ोन दे दिया है तो वो सारा का सारा जो है उनका टाइम वहीं पर रह जाता है। तो आज बच्चों से स्पेशली हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने बचपन को थोड़ा सा महसूस करिए, बस उस फ़ोन में मत गवाइए, क्योंकि हमारा बचपन तो ऐसा होता था कि मतलब हमने कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें फील किया है उसी जो इस पोएट्री में अभी भी बताई गई।
1: बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि सबका बचपन जो है, जब तक किसी के ठुड्डी पे चोट नहीं लगी हो, कोहनी पे चोट नहीं लगी हो, घुटने ना फूटे हो, या आपके पैर की उंगलियां ना कुचली हुई हो, तो मुझे लगता है ये इन सबके बिना हम सबका जो बचपन है वो बीता नहीं है। और कहीं ना कहीं ये सभी बच्चे के साथ ज़रूर हुआ है, बिना टायर चलाए हमारा बचपन नहीं गुजरा है। याद है आपको जब हम लोग टायर चलाया करते थे गांव में, या फिर कभी कभी हम अपने मोहल्ले में भी,
0: और गर्मियों की सीजन में स्पेशली जब आप किसी के भी खेतों पे पेड़ों पे चढ़कर आम तोड़ते थे और तोड़ते हुए पकड़े जाते थे तो डांट भी पड़ती थी और साथ में बहुत मज़ा भी आता था। मतलब कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल एक मेमोरी है, आज भी कभी याद आता है तो हंसी आ जाती है।
1: बिल्कुल, पता है अंशिका कि मैं ना जब छोटी थी तो मैंने बहुत ही शातिरपने से आम तो चुराया है और किसी को पता नहीं चला है, लेकिन एक बार मैं ना नींबू चुराते हुए पकड़ी गई थी।
0: नींबू चुराते हुए?
1: बिल्कुल, नींबू जब मैं जिसके घर से नींबू चुरा रही थी वो जो है वो खाट पे से सोए हुए थे, तो मुझे लगा कि वो सो रहे हैं। तो मैंने उनका जो है पेड़ से अच्छा खासे अमाउंट है, मतलब मुझे लग रहा था कि मतलब वो बड़े गांव के नींबू तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैंने 5-6 नींबू जो है वो तोड़ लिए थे। और जैसे ही आखिरी वाला मैंने तोड़ा, क्योंकि वो मेरा आखिरी नहीं था, मुझे 2-4 और तोड़ने थे, पर क्योंकि वो उठ गए थे तो वो आखिरी हो गया। और जैसे ही पत्तियों के हिलने की छिपकने की आवाज जोर से हुई वो उठ गए और उन्हें देख लिया कि मैंने ही चुराया। फिर वो लड़ते लड़ते मेरे घर तक आए थे।
0: ओके, तो फिर पिटाई नहीं हुई?
1: पिटाई कौन करेगा, हम तो अपने घर के छोटे थे ना।
0: छोटों का फायदा होता है बच के। बिल्कुल, और जब अभी आयुषी ने कहा कि नींबू तोड़ते हुए तो मुझे याद आ गया कि अमरूद और आम तोड़ते हुए मैंने भी काफी डांट खाई है। हालांकि हमेशा होता था कि कभी पकड़ गए तो डांट पड़ गई, अगर नहीं भी पकड़ गए कभी तो ये होता था कि जब घर पे जाओ, अरे कहाँ से लाई हो मम्मी, मैंने आम चढ़ के आम तोड़े, तो घर पे सुनना पड़ता था कि हाँ गिरो, हाथ पैर तोड़ो, जब टूटेंगे तब बताएंगे। हालांकि कभी ऐसा हुआ नहीं, मतलब कभी गिरे भी तो इतनी सीरियस चोट नहीं लगी, लेकिन वो एक बचपन था कि मतलब बताइए इस गर्मी में कितनी तेज धूप है, बट फिर भी उस धूप में दोस्तों के साथ आम तोड़ने का अपना मजा था। मुझे तो ये भी याद है कि गांव में मतलब तालाब वगैरह हुआ करते थे, तो हम लोग घंटों घंटों तालाब के पास बैठे रहते थे, तो वो सारी एक मेमोरीज हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि आप तालाब जाइए, आप आम तोड़िए, आप पेड़ पे चढ़िए, कहने का सेंस ये है कि थोड़ा बच्चे बाहर निकले। जो बचपन आजकल मोबाइल फोन में कैद हो गया है, चार बस अपना रूम चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो वो एक चीज को थोड़ा सा अवॉइड करके बाहर।
1: साथ ही साथ मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ बचपन का, कि जब मैं छोटी थी तो मैं अपने गांव में कुछ दिनों के लिए गई, तो मेरी बुआ हुआ को ना शाम को जो कोई काम था, मतलब हमारे गांव में दो घर है, वो दूसरे घर में जा रहे थे जहाँ पे कोई रहता नहीं है, पर हमें कुछ काम था इसलिए हम उस घर पे गए थे।
0: ओके।
1: तो सबने कहा कि देखो आजकल सीआर बहुत आ रहा है, सीआर तो हम सभी जानते हैं, सीआर बहुत आ रहा है, तो जब भी अगर आपको लगे कि आपके आसपास कोई है, तो हम चार पांच बच्चे थे घर के, तो आप आवाज करते चलो, कुछ ऐसा ऐसे शब्द थे कि वो आ गया, या कुछ ऐसी आवाजें थी, तो आप कुछ आवाजें निकालो जिससे कि सियार आपके पास ना आए, अगर वो आपके पास आ गया तो फिर बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना काट लेगा आपको और फिर आप नहीं बचोगे। तो हम चार पांच बच्चे थे और मेरी एक बुआ भी थी, तो हम सब जा रहे थे। अब बुआ तो घर के अंदर घुस गए लेकिन हम लोग नहीं घुसे, हम लोग बाहर ही थे और हम सारे मिलके बहुत तेज तेज आवाज निकाल रहे थे। अब हम लोग आगे देख के तो आवाज निकाल रहे थे, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने आवाज बंद की और पीछे देखा, हमारे पीछे सियार की एक फौज खड़ी हुई थी।
0: ओके।
1: अब उस वक्त आप सोचिए कि हमारे क्या हालत रही होगी, ना हम लोग सही से सांस ले पा रहे थे, ना सही से सांस छोड़ पा रहे थे।
0: बिल्कुल।
1: फिर हम लोगों ने जो स्पीड से भागे है ना, कि वहां से अगर हम लोग सीधा भागते सीधा दिल्ली पहुंचते, यानी उत्तर प्रदेश से डायरेक्ट दिल्ली। तो ऐसी जो छोटी छोटी कहानियां है हमारे बचपन की, वो बहुत ज्यादा कहते हैं कि हम लोग को खुश कर देती है,
0: खुश कर देती है,
1: कितने भी डिप्रेस्ड हो। और कोई एक छोटा सा इंसिडेंट भी अगर आपके बचपन का याद आ जाए ना, डिप्रेशन तो भाई चुटकियों में छूमंतर हो जाता है।
0: बिल्कुल। और एक प्यारी सी हंसी, एक मुस्कान चेहरे पे छोड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की मेमोरीज बनाने का हक है आज के बच्चों को भी। तो थोड़ा कोशिश करें कि आप जाएं और इस तरह की मेमोरीज को लें। और इसी के साथ नागेश्वर जी का मैसेज में देख रही हूँ कि लिख रहे हैं वो कि बिना कोनी टूटे और घुटने टूटे बिना तो साइकिल भी नहीं सीखी जाती। बिल्कुल नागेश्वर जी, और साथ में लिख रहे हैं टायर चलाने वाली बात हमें अच्छी लगी, हमने भी बहुत घुमाया है, आप घुमाते रहें। और साथ में लिखा है नींबू, ओके
1: नींबू
0: चोरना।
1: अरे कोई बात नहीं नागेश्वर जी, आरजी आयुषी के आगे आप चोरनी भी लिख सकते हैं चलेगा, पर अच्छी बात है कि मैं भाई नींबू ही चुराती हूँ, मैं पैसे से नहीं चुराती, पैसे आपके सेफ रहेंगे हमारे पास,
0: हम नींबू और आम वाले हैं, वो वाले नहीं है, पैसे वाले नहीं। अरे उसे चोरी नहीं कहते नागेश्वर जी, उसे मस्ती कहते हैं, आपको पता है। अगर बचपन में आपने ये मस्ती नहीं की तो फिर बच्चे कैसे, बच्चे हैं तो फिर ये करने का तो हक बनता ही बनता है। आपने भी अपने बचपन में आई थिंक काफी की होगी। तो चलिए लिसनर्स, हमने आपको प्यारी सी पोइट्री सुनाई, बहुत सारी बचपन की बातें भी बता दी, और मुझे लगता है कि ज्ञान भी दे दिया है हमने आपको। अब ज्ञान तो दे दिया है और ज्ञान के साथ एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग भी सुनवाते हैं आपको, और इस सॉन्ग के उस पार आते हैं, रियल लाइफ फैक्ट्स को लेंगे, और साथ ही साथ में हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो भी हम शुरू करेंगे, लेकिन इस प्यारे से सॉन्ग के उस पार। स्टेडियम

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। सुन सहेली वापस आ गई हैं आपकी सहेलियां आपसे बातें करने के लिए। और आज हम आपको जो बताने वाले हैं अब वो है कि आज का जो रियल लाइफ फैक्ट हमारा है वो क्या निकल कर के आया है, आज आपको नया क्या मिलने वाला है। तो आज हमारे रियल लाइफ फैक्ट में है कि बेबी स्टेप्स जो होते हैं, यानी कि हर दिन छोटी छोटी कोशिशें करना, किसी काम को करने के लिए अगर आप छोटी छोटी कोशिशें हर दिन करते हैं तो ये धीरे धीरे आपको आपके गोल के बहुत करीब लेकर के जाता है। यानी कि हमें हमेशा अपने टास्क को एकदम से पूरा करने के बजाय छोटी छोटी कोशिशें हमेशा करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हर छोटे छोटे कदम के साथ आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे आपको बेहतर करने की हिम्मत मिलती है। बिल्कुल, कई बार होता है ना कि हमें कोई काम करना होता है और हम सोचते हैं कि बस एकदम से हो जाए, या कई बार किसी काम को करने के लिए हम एक साथ बहुत सारी कोशिशें करते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। आप छोटी छोटे बेबी स्टेप्स लीजिए और हर दिन अपने गोल को अचीव करने के लिए छोटी छोटी कोशिशें करते रहिए। ये बच्चों से भी हम कहना चाहेंगे कि चाहे पढ़ाई को लेकर के हो या किसी भी चीज़ को लेकर के हो, हर दिन उस गोल तक जाने के लिए, उन चीज़ों को अचीव करने के लिए छोटी छोटी कोशिशें करते रहिए। ऐसा कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर आप छोटी छोटी कोशिशें हर दिन करते हैं तो इससे आप मोटिवेट भी होते हैं। और आपकी लाइफ में एक जो कभी कभी होता है ना कि हमारी लाइफ में हम बोर हो जाते हैं कि अरे ये तो डेली का रूटीन है, हम बोर हो गए, तो खुद को इस बोरियत से हटाने के लिए अगर आप हर दिन खुद को छोटे छोटे टास्क देते रहेंगे तो वो आपको चेयरफुल भी रखता है और साथ ही साथ में आपके मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखता है।
4: बिल्कुल, और देखिए साथ में ना मैं भी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि देखिए काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको मैंने ये कहते सुना है अपने बच्चों से कि तुम हमसे सीखो, हमने ये किया है, हम तुम्हें बता रहे ना, हमारी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो एक 30 साल या 35 साल के इंसान हैं और वो बच्चा उन्हीं का जना हुआ बच्चा है, तो उन दोनों में एक पूरी जनरेशन का गैप है। आप दूसरी जनरेशन से बिलोंग करते हैं, ये दूसरी जनरेशन से। और आजकल का ज़माना अंशिका ये नहीं है कि आप किताबों से सीखें, आजकल के ज़माने में इंसान पे जब तक खुद पे नहीं आती है या प्रैक्टिकल नहीं होता है उनके साथ, तो वो कभी भी उस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो हमेशा मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि देखो हमने ये सब्जेक्ट लिया था, देखो हमारा कुछ नहीं हुआ, तो तुम भी ये मत लेना। लेकिन हो सकता है कि जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं की है वो आपके बच्चे के लिए वर्क कर जाए।
0: बिल्कुल,
4: और हमेशा उसको अपनी, क्योंकि देखिए जब एक बच्चा बहुत छोटा रहता है, मान लीजिए अगर कोई बच्चा 8 साल का है, 9 साल का है, तो उसका दिमाग 9 साल के बच्चे जितना ही होगा, उससे आप 40 साल या 50 साल वाली समझदारी की उम्मीद करना आपकी बेवकूफ़ी है। लेकिन काफ़ी जगह लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल उतना ही बड़ा बिहेव करे, उन्हें मतलब कहते कई लोगों को चाइल्डिश नेचर ही नहीं अच्छा लगता है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे पे प्रेशर बनाने लगते हैं कि आपको ऐसा ही बिहेव करना है, एक पर्टिकुलर पैटर्न है, एक पर्टिकुलर बिहेवियर टाइप है कि आपको इसी तरह बिहेव करना है जैसे बड़े लोग करते हैं। देखो अंकल कैसे बैठे, अंकल की तरह बैठो ऐसे। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग तो अभी उतनी चीज़ के लिए रेडी है ही नहीं।
0: बिल्कुल,
4: अभी अपनी ही एज की चीज़ के लिए। और जब तक बच्चा छोटा रहता है तो शैतानी, बचपना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। तो छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा समझदारी की उम्मीद करना कहीं ना कहीं उन पे प्रेशर बना देता है कि हमारे माँ बाप ऐसा चाहते हैं पर हम ऐसा बन नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों के लिए एक ट्रॉमा बन जाता है जो वो बड़े होके उनके जिंदगी में एक अधूरापन रहता है जो वो बड़े होके भी याद करते हैं।
0: कहीं ना कहीं बिल्कुल सही पॉइंट है आयुषी। देखिए कई बार क्या होता है, हम कहते हैं ना कि बचपन जो है, अगर बचपन में शरारती नहीं की जाएंगी तो कब की जाएंगी। आप अपने बचपन को याद करिए, अगर हम हमारा बचपन याद करें तो हम कभी हमारे बच्चों को ये नहीं कहेंगे कि इस तरह बिहेव करो। क्या आपने अपने बचपन में साइकिल चलाते हुए कभी घुटने में चोट नहीं खाई है? क्या हमने हमारे बचपन में कभी बहुत सारी शरारतें नहीं की हैं? की हैं। तो जो आपने बचपन खुशी से जिया है वो जीने की आज़ादी आप अपने बच्चों को भी दीजिए। क्योंकि देखिए बड़े कभी भी बड़प्पन के नीचे बचपन को दबाना नहीं चाहिए। बड़े तो वो हो जाएंगे मैच्योर, आज बचपन में क्या मैच्योर होंगे, बड़े होने पर वो मैच्योर हो जाएंगे। तो वो एक मैच्योरिटी जो आप भरना चाहते हैं वो बच्चे में भरिए मत, क्योंकि वो आपके भरने से नहीं आएगी। वो मैच्योरिटी जब वो एज धीरे धीरे बढ़ेगी तो वो मैच्योरिटी खुद ब खुद आ जाएगी। और मैं तो कहती हूँ बचपन में मैच्योरिटी की जरूरत भी क्या है।
4: बिल्कुल। अब देखिए एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर, बच्चा पढ़े कैसे। तो मैंने ये काफ़ी जगह नोटिस किया है कि जिसके बच्चे थोड़ी से, मैं डम भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बच्चे हैं, जो आजकल के लोग टर्म यूज़ करते हैं कि यार तुम तो गधे हो, पढ़ते नहीं हो। देखिए हर एक इंसान की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है कि वो कितना कर सकता है। अगर आपका बच्चा मान लीजिए 20 मार्क्स का पेपर है, उसने 4 मार्क्स ही लाए हैं, तो आपको उतने मार्क्स उसको मोटिवेट तो करना चाहिए कि आप ज़्यादा मार्क्स लाओ, आप और अच्छे से पढ़ाई करो। लेकिन कभी भी जो उसके मार्क्स हैं उसकी और उस बच्चे की खुद की डिसरिस्पेक्ट ना करें। उस चीज़ों को भी आप बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करें, क्योंकि हो सकता है वो 4 मार्क्स भी वो ना ला पाता, लेकिन उसने अपने दिमाग की वजह से, अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की वजह से वो 4 मार्क्स भी स्कोर कर पाया है। तो छोटी छोटी चीज़ का जो अप्रिशिएशन होता है वही एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि बच्चे आगे चल के पढ़ेंगे। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें नहीं अप्रिशिएट करेंगे, अगर उसने 4 मार्क्स लाए हैं तो आप बोलेंगे अरे 4 ही तो लाए हैं, हमने तो 19 की उम्मीद की थी तुमसे 20 में से। तो कहीं ना कहीं बच्चा एक बार ट्राई करेगा, हो सकता है 4 से 6 मार्क्स आ जाए, हो सकता है 4 से 8, दूसरी बार 10 मार्क्स आ जाए, लेकिन आपकी अगर लाइन वही रही ना कि मैंने तो 19 की उम्मीद की थी, तो कहीं ना कहीं बच्चा दो टाइप से रिएक्ट कर सकता है। एक तरीका ये होगा कि वो फिर मेहनत करना ही छोड़ देगा, क्योंकि उसके दिमाग में आएगा कि यार माँ बाप तो कभी खुश होते ही नहीं है चाहे मैं कितना भी अच्छा कर लूँ। या वो गिल्ट फील करने लग जाएगा कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए वो ओवर स्ट्रेस या प्रेशर में आ जाएगा, उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है और उसको कह सकते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो वो जितना लाए आप एक बार उसको अप्रिशिएट तो करके देखो, फिर आप मोटिवेट करो कि हाँ आपने अच्छा किया, लेकिन थोड़ी सी और मेहनत करिए। तो थोड़ा थोड़ा करके ही इंसान, कहते हैं ना कि एक एक कदम चलेंगे तभी हम लोग शिखर तक पहुँचेंगे, इकट्ठे हम लोग यहाँ से लेकर के छत तक पैर नहीं पहुँचा सकते।
0: बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल सही पॉइंट बताया है अवशी ने। एक पॉइंट इसमें मैं भी ऐड करना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि बेसिकली हम बात कर रहे हैं आज कि बच्चे पढ़ाई से भागते क्यों हैं, क्यों वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। या कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि उनको बिल्कुल से एक कुफ चिढ़ हो जाती है कि नहीं नहीं मन नहीं है पढ़ने का, आज वो टॉपिक हमने उठाया। तो सबसे पहला कारण जो होता है बच्चों के ना पढ़ाई करने का या उनके कई बार पढ़ाई से बोर हो जाने का, वो ये होता है कि उन्हें जो सब्जेक्ट्स पसंद हैं आप वो पढ़ने के लिए उन पर फोकस नहीं डाल रहे, आप उन पर वो पढ़ने के लिए फोकस डाल रहे हैं जो उन्हें नहीं पसंद है। देखिए सबको मैथ्स नहीं पसंद हो सकता, सबको इंग्लिश नहीं पसंद हो सकता है, सबको हिंदी नहीं पसंद हो सकता है, हो सकता है सबकी पसंद अलग अलग हो। आपने किसी बच्चे को देखा होगा उसे साइंस में बहुत इंटरेस्ट होता है कि मुझे साइंस पढ़ना बहुत पसंद है, आई लव साइंस। और किसी को आपने देखा होगा कि वो कहते हैं यार मुझे तो साइंस के फॉर्मूले ही समझ में नहीं आते। या किसी को मैथ, लोग कहते हैं कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट आपने किसी को देखा होगा उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है और उसे इंटरेस्ट भी बहुत है मैथ्स पढ़ने में। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बच्चे को वही

0: हम कहते हैं ना कि जैसे माहौल क्रिएट करना है बच्चे के लिए, तो वो आप क्रिएट कर पाएंगे जब आप उसे उसका फेवरेट सब्जेक्ट पहले पढ़ने के लिए कहेंगे, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे वो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने लगेगा और अपने आप से उसकी एक हैबिट बन जाएगी कि हाँ मुझे पढ़ना है, एक मूड बन जाएगा। हम कहते हैं ना कि किन्हीं किन्हीं चीज़ों के लिए मूड बनाना पड़ता है, यार मूड नहीं है, लेकिन हम कहते हैं चलो मूड बनाते हैं। तो एक जो ये बनाने वाला सेक्शन होता है बच्चे के लिए, मोटिवेट करने वाला सेक्शन होता है, वो तब होगा जब आप उसे उसका फेवरेट सब्जेक्ट पहले पढ़ने के लिए कहेंगे।
1: बिल्कुल। अब देखिए अंशिका, इसके ना पढ़ने के पीछे बच्चों का एक और कारण बहुत ज़्यादा होता है और वो जायज़ भी है, वो है कि बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और जब इंसान का शरीर थका होता है तो दिमाग और मन कभी काम नहीं करता है। देखिए, जो अगर मैं आपको कुछ अपनी स्टोरी बताऊं, मैं जब छोटी थी तो मुझे याद है स्टार प्लस पे एक नाटक आता था, एक ड्रामा आता था, इसका नाम था ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो कि 9:30 बजे आता था।
0: जी, जी, जी।
1: और जब तक मैं छोटी थी, जब मेरी मम्मी उसको ज़रूर देखती थी, लेकिन कभी भी मैंने उस सीरियल को नहीं देखा क्योंकि मेरी मम्मी वो आने से पहले ही मेरे को सुला देती थी। मतलब हमारा 9:30 एकदम आखिरी था कि मतलब भगा दिए जाते थे हम लोग कमरे
0: जी
1: कि अब आपको सोना है। और बेड पे जाते ही जब बच्चा थका होते तो वो सो जाता है। तो 9:30 से लेकर के 6:00 बजे तक की एक नींद जो थी वो मेरी अच्छी खासी हो जाती थी, जिससे मेरा बॉडी और मेरा दिमाग ये प्रिपेयर हो जाता था कि अगले दिन मेरे को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आजकल के जमाने में देखिए ये चीज बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आजकल बच्चे भी रात में जग रहे हैं, चाहे वो छोटे से छोटे कितने भी बच्चे हों, और माँ बाप खुद भी जग रहे हैं। अब देखिए इसके पीछे कई सारे कारण भी हो सकते हैं कि आपका बच्चा क्यों नहीं सो रहा है। देखिए, अब काफी लोगों को क्या होता है कि अगर एक लाइट भी जल रही हो तो वो नहीं सो पाएंगे, अगर एक छोटी सी घंटी भी बज रही हो, वो बहुत ही धीरे बज रही हो, तो भी वह लोग नहीं सो पाएंगे, उन्हें बिल्कुल शांति की जरूरत होती है। तो वो ये चीज़ें आप पहचानेंगे, आपका बच्चा आखिर सो कैसे पाता है। हो सकता है वो भरी आवाज़ में भी सो लेता हो, या हो सकता है वो बिल्कुल सुई की अगर नोक भी आ जाए उस पर भी उठ जाए। तो आपको एक तो वैसा माहौल बनाना है, दूसरा बच्चे के साथ साथ आपको खुद भी वो चीज़ें करनी है। ये नहीं कि आप बच्चे को भेज दें कि नहीं नहीं जाओ जाओ जाओ जाओ, हम तो 12:00 बजे तक जगेंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बच्चे के मन में आ भी जाता है। तो आप बच्चे को एक प्रॉपर स्लीप दे, फिर देखिए जब आपका बच्चा सो के उठेगा, सुबह 6:00 बजे आप जगाएंगे या कभी भी जगा रही हैं स्कूल के लिए, तो वो उस टाइम पे उठ भी जाएगा, उसकी दिमाग और बॉडी रेस्ट भी ले लेगी, अच्छा खासा वो एनर्जेटिक फील करेगा और अच्छे से पढ़ाई भी करेगा।
0: बिल्कुल। एक पॉइंट और मैं लेना चाहूँगी और उसके बाद हम नेहा जी के सवाल को लेंगे जो कि उन्होंने पूछा है कि मेरा बेटा आजकल स्कूल जाने को नहीं बोलता है, मतलब नहीं बोलता है, कहता है मम्मी सोने दो, मुझे स्कूल नहीं जाना है, क्या करें। तो नेहा जी, आपका ये सवाल हम अभी लेना चाहेंगे और इसमें बताना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को थोड़ा समझाइए प्यार से, तो हो सकता है कि वो जाने के लिए हाँ कर दे। कई बार क्या होता है ना कि जैसे स्कूल अगर न्यू होता है तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, और अगर जैसे एक्सिस्टिंग भी है कि मतलब वो पहले से ही उसमें पढ़ रहा है, फिर भी कई बार बच्चे कहते हैं अरे मुझे नहीं जाना, तो आप रीज़न जानने की कोशिश करें कि वो क्यों नहीं जा रहा है, और फिर जो रीज़न है उसको आप सॉल्व कर दीजिए तो वो जाने लगेगा। क्यों आयुषी, मैं ठीक कह रही हूँ?
1: बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। साथिया जी, उन्होंने लिखा है कि मुझे भी अपने बच्चों को लाइट ऑफ करके और जो है सन्नाटे में सुलाना पड़ता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को भी रेस्ट चाहिए होता है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी रेस्ट चाहिए होता है। और जो लोग बहुत ही भरी आवाज़ में सो जाते हैं, क्या वो लोग जैसे वो उनको हैबिट होती है, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ में या बहुत ज़्यादा लाइट में सो रहे हैं तो हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरीके से शांत नहीं हो पाता है। इसीलिए हमें एक शांत माहौल और एक डिम लाइट की ज़रूरत है, जहाँ पे हम लोग अच्छे से सो जाएं और हमारे सारे सेंस ऑर्गन, सारे पूरा नर्वस सिस्टम हमारा अच्छे से रिलैक्स हो पाए। और इसी तरीके से आप अपने बच्चे को भी सुला सकती हैं, और सुलाने के बाद और ये ट्राई करें कि जब बच्चा सोए तो आप सभी सोए, घर में कोई भी खन्नपन्न बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर बच्चा चौंक के जग गया तो वो उसके दिमाग के लिए और भी ज़्यादा नुकसानदेह होता है।
0: बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये पॉइंट तो है। और देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं होता है, अगर आप जिसे मेंटल पीस, मतलब कहने का मतलब है कि जब शांत एकदम होता है तो हमें कहीं ना कहीं मेंटल पीस भी मिलता है, जो हमारे अगले दिन की एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक पॉइंट और हम इस टॉपिक का आपको बता देते हैं कि बच्चों को जब भी आप जैसे पढ़ाने के लिए अगर आप मोटिवेट करना चाहते हैं तो उसमें विजुअल लर्निंग एक बहुत ही अच्छा एक जो है आजकल माध्यम कह लें हम, बन के उभरा हुआ है, जिसमें कि आप बच्चे को गूगल से कोई भी स्टोरी करके, जैसे कोई आप मान लीजिए मैथ का टॉपिक समझा रहे हैं तो कार्टून कैरेक्टर्स के थ्रू बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, तो कुछ ऐसे वीडियोस दिखा करके, कुछ ऐसे

वीडियो सुना करके जिसमें कोई कार्टून उन सम्स के बारे में बता रहा हो या ऐसा कुछ। आजकल गूगल पे तो मुझे लगता है काफी मिल जाते हैं इस तरह के वीडियोस। तो इन सब तरीकों से अगर आप बच्चे को पढ़ाएंगे या आप बताइए किसी कहानी के तरीके से उसको करके बताइए, तो इन सब चीज़ों से बच्चे जल्दी समझते हैं और उनका इंटरेस्ट भी जागता है। और अगर उनकी पढ़ाई में उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हो, जैसे कई बार हम बच्चे को कहते हैं ना अरे खाना खा लो, देखो भीम लड्डू खाता है तो उसको शक्ति आती है, कहने का सेंस ये है कि अगर इस तरीके की चीज़ों को कहीं ना कहीं हम ऐड करते हैं तो इससे बच्चे का इंटरेस्ट जागता है कि हाँ मुझे पढ़ना है। तो इस तरीके की छोटी छोटी कोशिशें आप कर सकते हैं, इससे आपके बच्चे का इंटरेस्ट आएगा, वो पढ़ेगा भी और ज़्यादा आपको परेशान भी नहीं करेगा। तो चलिए फिलहाल के लिए चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ। बस यूं गए यूं आए एक नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाएंगे। स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली। और अब सुन सहेली में बारी है हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, वो टॉपिक नहीं है लेकिन उस टॉपिक तक पहुंचने के लिए एक पहेली है जो आप सभी को सॉल्व करनी है और आप सभी के साथ आयुषी को भी सॉल्व करनी है। अब हम बात करने वाले हैं उसके बारे में जिसकी जो जिनके जो पंख होते हैं वो हरे होते हैं, उनकी जो चोंच होती है वो रेड होती है और उनकी आवाज़ जो होती है ना वो पूरे घर में बहुत मीठी मीठी सी प्यारी प्यारी सी होती है और उनके घर में होने से हमारा घर जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। और वो कई बार तो इतने ज़्यादा उनमें प्रैक्टिस भी हो जाती है कि वो घर के लोगों का नाम भी लेने लगते हैं और आपसे बातें भी करते हैं। अब बताओ कौन है वो, बताइए।
1: क्या
0: अभी मैंने आपसे सवाल पूछा?
1: सवालों से तो भाई मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। अंशिका, अभी आप ब्रेक पे भी थी तो इतने ज्यादा सवाल आप मेरे से पूछ रही थी, अब मैं सोचती हूँ कि आपसे एक सवाल पूछा जाए।
0: बताइए,
1: थोड़ा फन वाला है।
0: पूछिए।
1: ये बताओ, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में ही क्यों चटनी चटाई? वो सुबह भी तो चटा सकते थे।
0: उनका मन चांदनी रात में चटाने का होगा।
1: ऐसा क्यों?
0: अब ये तो मुझे नहीं पता।
1: नहीं बताना पड़ेगा।
0: अब मुझे पता नहीं तो मैं कैसे बताऊंगी?
1: बस देखिए, ऐसे ही लोग इरिटेट हो जाते हैं जब भी हम बात करते। अच्छा अंशिका, ये बताओ, कभी तुमने नोटिस किया है कि हम लोगों को ऐसी कौन सी बहुत इरिटेटिंग चीज है जिससे हमें बहुत ज्यादा प्यार है?
0: ऐसी कौन सी बहुत इरिटेटिंग चीज है जिससे आपको प्यार है?
1: हाँ, हम सभी को बहुत ज्यादा प्यार है। और हम लोग कहीं भी देखते तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।
0: क्या है?
1: सोचो सोचो,
0: आप बताइए।
1: अरे भाई, तोता।
0: पैरेट, तोता।
1: अंग्रेजी मीडियम, क्या हम हिंदी मीडियम वालों को तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? पैरेट को ही तो तोता कहते हैं।
0: अरे यार,
1: ऐसे कैसे कह सकती हो?
0: अरे आप गलत ट्रैक पे क्यों जा रही है?
1: नहीं, एक तो आप जवाब नहीं दे पाई,
0: आपने तोता कहा तो मुझे पैरट ध्यान था तो मैंने पैरट के दिया।
1: अंशिका ने गलत किया कि नहीं? अब पैरट और तोता दोनों एक ही चीज होता है।
0: अरे वो तो मुझे भी पता है कि पैरट और तोता दोनों एक ही चीज होते हैं।
1: तो फिर आपने क्यों कहा कि नहीं तोता, वो पैरट?
0: मैंने नहीं पैरट नहीं कहा, मैंने सिर्फ पैरट कहा।
1: अच्छा, आप तोते की तरह लड़ना बंद करिए और मुद्दे पे आइए।
0: यहाँ दो तोते नहीं है, यहाँ दो कुछ और ही हो गया। खैर वो छोड़िए, आप हम मुद्दे पे आते। तो मुद्दा हमारा ये कि इससे पहले मैंने जो सवाल पूछा था ना कि हरे होते हैं और उनकी नोज रेड होती है और वो घर में बोलते हैं, उसका जवाब भी यही था और इसका जवाब भी यही है, यानी कि तोता। तो आज जैसा कि हमारे लिसनर्स को मालूम है कि हमारा जो सेक्शन होता है वो पेट्स केयर में भी होता है, तो आज पेट्स में हमने लिया है पैरेट यानी कि तोते को। तो तोते की अगर हम बात करें तो देखिए, ये जितने प्यारे होते हैं, मतलब जितने क्यूट होते हैं, उतने ही सेंसिटिव भी होते हैं।
1: नहीं, ये जितने प्यारे होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं।
0: खतरनाक?
1: बहुत ज्यादा।
0: ओके, कैसे होते हैं खतरनाक?
1: अब इमेजिन करिए कि आपके घर में एक तोता है, ठीक है, और आप तोते के सामने आप और आपकी मम्मी बैठ के अपनी ताई जी की बुराई कर रही हैं, ठीक है, कि मम्मी देखो ताई जी ऐसे बोलती हैं मेरे को, कि जब देखो तब सच समझ के चल देती हैं, ऐसा है वैसा है, ताई जी बहुत गंदी है। और आपके तोते ने सब सुना। अब जब आपकी ताई जी आएंगी, वही तोता वही बोलना शुरू कर देगा कि ये बोल रही थी कि ताई जी कितनी गंदी है, ये है वो, क्योंकि तोता एक बहुत ही शैतान किस्म का पक्षी है।
0: ओके, तो मैं आपको बताऊं आयुषी कि मेरे घर पे तोता था, मतलब अभी एक साल पहले उसकी डेथ हो गई
1: जी।
0: और बाकी मेरे यहाँ पता है वो 20 मतलब कम से कम 20 साल तक मेरे यहाँ पे था।
1: तब तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि तोता कितना शैतानी करता है।
0: शैतानी तो करते हैं ऑफकोर्स, मतलब हाँ बहुत शैतानी करता है, और वो तो बहुत शैतान भी था। मतलब उसके लिए तो मैं अभी आपको अगर बताने लग जाऊँ ना कि क्या क्या उसकी हरकतें थी तो आप हंसेंगी। मतलब ऐसा होता था कि चाय पीना उसे बहुत पसंद था, तो चाय का टाइम जैसे ही होता था वैसे मतलब तुरंत कटोरी वटोरी साफ करके और बिल्कुल बैठ जाता था बिल्कुल सीधा होकर के कि अब मुझे चाय चाहिए। और अगर किसी दिन लेट हो जाता था ना चाय बनाने में, मतलब कुछ भी लेट हो जाता था, तो पूरे घर में मतलब आवाज़ कर करके और फिर चाय मांगता था कि मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय दो, और चाय दे दो तभी शांत होता था।
1: यानी कि देखिए, जो तोता होता है ना वो कहीं ना कहीं हम इंसानों की तरह बोल लेता है, शब्द प्रोनाउंस कर लेता है। ये हाँ। बहुत ही कम तोतों के अंदर ये चीजें होती है, लेकिन होती है, ऐसी पाए जाते हैं। लेकिन तोता के अंदर इतना दिमाग नहीं होता कि वो अपनी खुद की प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम वो आपको बता पाए। जैसे कि अगर मान लीजिए इस तपती गर्मी में आपको बहुत धूप लग गई हो, आपको सर दर्द कर रहा हो, तो आप तो बता लेंगे कि मेरा सर दर्द कर रहा है, पर तोता आपको कभी नहीं बता पाएगा कि मेरा सर दर्द कर रहा है। तो उसको कैसे समझें?
0: बिल्कुल, उसको समझने के लिए कुछ टिप्स होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, और ज़रूरी है कि कुछ ऐसी बॉडी मूवमेंट्स पे हम ध्यान दें। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि गर्मियाँ जो है वो शुरू हो गई हैं और कहीं ना कहीं हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ हम लोगों में ही नहीं, हमारे पेट्स में भी हो जाती है, और स्पेशली तोते में। तो आज तोते पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप कैसे पहचानें कि उसे हीट स्ट्रोक या फिर डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो उसका सबसे मेन एक जो आप सिम्टम्स देख सकते हैं वो ये होते हैं कि तोते हाँफने लगते हैं। हाँफने का मतलब होता है कि वो चोंच खोल करके तेजी तेजी से सांस लेने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने तोते में इन चीज़ों को देख रहे हैं तो उसका मतलब है कि उसे डिहाइड्रेशन है और शायद हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। सबसे पहले जो मैं चीज़ बताना चाहूँगी वो ये है कि अपने तोते को हमेशा ठंडी जगह पर रखें। ठंडी जगह का सेंस है कि किसी ऐसी जगह उसके पिंजरे को आप न रखिए जहाँ पर सीधे धूप आती हो, थोड़ा ठंडा जहाँ पर रहता हो, आप चाहे रूम में रखिए या जहाँ भी आप रखते वो जगह थोड़ी ठंडी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि कई बार शरीर को ठंडा करने के लिए वो अपने पंख को फैलाते हैं, तो अगर बार बार वो अपने पंखों को फैला रहे हैं इट मीन्स कि उन्हें ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो आपको उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा उनके जो डेली रूटीन है जो उनका एक वो आप देखिए कि कहीं इस तरीके के लक्षण तो नहीं है कुछ, आपको पता चल जाएगा खुद ही अगर आप ज़्यादा उस पर ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ होती है कि उनमें सुस्ती आ जाना। सुस्ती आ जाने का मतलब है कि वो पिंजरे में आराम से सो रहा है, बार बार आंखें बंद कर रहा है, बहुत ज़्यादा हिल डुल नहीं रहा है। जैसे होते हैं ना पैरट्स होते हैं कि किसी घर के इंसान को देखते हैं, हमारे यहाँ भी मिट्टू था, तो अगर घर का कोई भी आता था तो बिल्कुल खुश हो जाता था, उसके आ जाता था बिल्कुल पिंजरे के पास, उसके साथ बातें करता था हम लोग के साथ। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे ये नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुस्त रह रहे हैं, तो इनका मतलब यही है कि उनमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, कमजोरी हो जाती है, स्किन का रूखापन, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन ये आपको तब पता चलेगा जब आप थोड़ा सा उन पर ध्यान देंगे। कई बार क्या होता है ना कि हम ध्यान ही नहीं देते तो हमें नहीं पता चल पाता है कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर इस तरह की चीज़ें हो भी गई हैं तो इससे कुछ तरीके भी हैं कि जिनसे आप अपने पैरेट को बचा सकते हैं इन सारी ही प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो ये है कि उसे साफ और ताज़ा पानी देना चाहिए। दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप ठंडा पानी दीजिए। ठंडे पानी का मतलब है फ्रिज का बहुत चिल्ड पानी नहीं देना है आपको, आप नल से निकाल करके जो आपके घर पे हो उससे ठंडा, थोड़ा सा ठंडा पानी उनको दीजिए। दूसरी चीज़ कि गर्मियों में तरबूज, तरबूज के बीज हो गए, अंगूर जैसे फल हो गए, केला हो गया, खीरा हो गया, ये सारी चीज़ें उन्हें ज़रूर देनी चाहिए। खीरा आपको देना चाहिए। खीरा आपके घर में कोई भी पेट हो, जैसे मान लीजिए डॉग है, कैट है, कोई भी पेट है, तो खीरा ज़रूर देना चाहिए। खीरे में कितना पानी होता है, 70% पानी कहीं ना कहीं होता है, और हमारे बॉडी के लिए भी वो अच्छा होता है, हाइड्रेट करता है, तो हमारे पेट्स के लिए भी अच्छा होता है, तो खीरा ज़रूर देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हमेशा, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि अरे पेट्स हैं, पेट्स को रूटीन से नहलाओ मत, लेकिन रूटीन से उनको नहलाना डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो डेली रूटीन में उन्हें नहलाएं ज़रूर। अगर आप डेली नहीं नहला सकते तो एक दिन को गैप करके फिर एक दिन, लेकिन नहलाइए। नहाने से क्या, मतलब नहलाने से क्या होता है ना कि उनमें फ्रेशनेस बनी रहती है और डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, इस तरह की चीज़ें उनमें नहीं होती हैं, और आपके पेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं।
1: तो आपने बहुत सही बात बताई। और दोस्तों पता है मैं इतनी देर से शांत बैठ के नोटिस कर रही हूँ कि अंशिका तोते में कितनी एकदम, कहते हैं हमारे अवधि में ये जूझ ही पड़ी है एकदम, कि तोता हमारा मिट्ठू ऐसा करता था। आपको अभी भी मिट्ठू की याद आती है?
0: बहुत याद आती है क्योंकि...
1: तो आप, अच्छा ये बताइए आपने नोटिस किया होगा। अच्छा, जो मैंने नोटिस किया है कि मेरे पास तो नहीं था पर मेरे घर के बगल वाले घर में था, कि अक्सर जो तोते होते हैं हमारे घर के, जो भी पेट होते हैं उन्हें हम जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए अपने घर पे रखते हैं कि अरे कुत्ता रहेगा तो हम लोग घुमाने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बिल्ली है, तोता हो या तोता हो गया, कोई भी पेट हो गया, तो हम लोग जस्ट उसको एंटरटेनमेंट की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो भी एक जीव है जो बोल नहीं सकता है, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हमें जो करना होता है सिर्फ उसका आनंद ही नहीं लेना होता, उसके बजाय ही नहीं होता, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व भी करना होता है कि आखिर इनका रिएक्शन चेंज हो रहा है, रहन सहन में क्या बदलाव आए हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो बहुत कम लोग करते हैं, गेस करो क्या?
0: क्या?
1: डॉक्टर के पास जाना। अगर कोई बीमारी आपको लग रही है, या मान लीजिए चाहे वो आपके घर का पक्षी हो जैसे आपने पेट के रूप में, या कोई भी टाइप का पेट हो, तो अगर आपको उनके बिहेवियर में या उनके हरकतों में चेंजेस लग रहे हो जो कंट्रोल में नहीं आ रहे हो एक दो दिन में, तो आपको ज़रूरत है कि आप उन्हें एक अच्छे वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाएं। अब देखिए, आपने ये बहुत कम सुना होगा कि अरे जानवरों के डॉक्टर क्या ही करते हैं, पर जानवरों को भी डॉक्टर की ज़रूरत होती है।
0: बिल्कुल, उन्हें डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। और हमारे यहाँ पे मिट्टू था, तो जब वो बीमार था तो हम उसे लेकर के जाते थे और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हमने कराई थी, बट इट्स ओके, ये तो होता रहता है। और अभी आयुषी ने कहा ना, याद आती है, याद बहुत आती है, मतलब जब भी बात निकलती है पेट्स की और स्पेशली पैरेट की, तो वो पूरा रिमेम्बर हो जाता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम था, मतलब 20 साल बहुत मायने रखते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम था, तो कहीं ना कहीं हाँ हो जाता है। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने घर में रख रहे हैं उनकी, तो उनकी प्रॉपर केयर करें और थोड़ा सा उनको लेके सेंसिटिव भी रहें। देखिए, कोई भी पेट हो तो कई बार क्या होता है ना कि हम जब रखते हैं तो हमें कहीं जाना होता है तो हम एक ये रखते हैं कि अरे नहीं छोड़ दो, खाना पीना दे दो और छोड़ दो, कहीं चलना है तो चलो। तो थोड़ा सा ये भी केयर रखिए कि कोई भी पेट हो, आपके घर में डॉग है, कैट है, जो भी है, उन्हें अकेला छोड़ने से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि घर में अकेले जब वो रहते हैं ना तो वो बेचैन हो जाते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे पहले पैरट था, अब डॉग है, तो हमारे यहाँ पे जब हम उसे छोड़ के कहीं हम लोग सब लोग चले जाते हैं तो बहुत बेचैन हो जाता है, पूरे घर में दौड़ता है, भौंकता है, तो कहीं ना कहीं अकेले वो नहीं रह पाते। पेट्स में ये चीज़ होती है कि आप उनको छोड़ दीजिए बिल्कुल अकेले, तो वो बहुत बेचैन हो जाएंगे, बिल्कुल रेस्टलेस हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कहने का सिलसिला इतना है कि उनको अकेले छोड़ने से थोड़ा सा बचे। अगर सब लोगों को कहीं जाना बहुत अर्जेंट है, आपको सभी को जाना है, तो ठीक है, कोशिश करिए कि नेबर के यहाँ पे या कहीं भी जहाँ पे आप उनको एक दो दिन के लिए छोड़ सके, अकेले ना छोड़ें, क्योंकि अकेले छोड़ना इट्स नॉट गुड ऑप्शन, तो अकेले नहीं छोड़ना चाहिए।
1: बस अब मुझे लग रहा है अंशिका इमोशनल हो रही है अपने मिट्टू को याद करके, लेकिन हाँ। मिट्टू को याद करके हम लोग मुस्कुराएंगे तो है ही है। देखिए, कहते हैं कि जब कोई कोई भी हमारे पास रहता है या फिर कोई इंसान हो, कोई पेट हो, तो हमें ऐसा लगता है कि यार कितना प्यार है, लेकिन हम उन चीज़ों को कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि उनके कुछ चेंजेस होते हैं जो हमें जानना चाहिए। हालांकि देखिए, ये चीज़ तो बनी बनाई है, जो आया है उसे जाना ही है, लेकिन कितनी सारी, ये डिपेंड करता है कि आप जब जा रहे हैं तो आप अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं। कई लोग इतने गलत काम करते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे भाई तू चला ही जा, लेकिन कई चीज़ कई जीव इतने अच्छे होते हैं कि उनके जाने के बाद भी उन्हें अच्छे तरीके से याद किया जाता है। वैसे ही आज मिट्टू भी, और आपके घर में भी कोई ना कोई पेट भी रहा होगा जिसे आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं। वैसे पेट से याद आया अंशिका कि देखिए, जैसे हम ह्यूमन के पेट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वैसे ही पेट्स के भी होता है। तो अगर आपके घर का तोता, देखिए कुछ तोते को तो मैंने ऐसा भी देखा बहुत नखड़े होते हैं कि उन्हें ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसा है वैसा है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सब कुछ खाते हैं और हम उन्हें बहुत ही बेफिक्र से उन्हें कुछ भी दे भी देते हैं। तो कोशिश करें कि गर्मी में उन्हें कम मिर्च वाला खाना दें, या फिर अगर आप जो भी दें तो मिर्च को थोड़ा अवॉइड करें, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है जब आप गर्मियों में बहुत तेल मसाले का खाना खाते हैं, वैसे ही उनके साथ भी हो जाता है। अब वो चाहे चिड़िया हो, तोता हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, उन सभी के साथ आप इन चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें। कोशिश करें कि आप जहाँ भी अपने घर के पेट, यानी स्पेशली हम तोता की बात करें, तो वहाँ पे एसी, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हम अगर एसी में रह रहे हैं तो हम लोग बहुत ही लंबे टाइम तक 16 डिग्री या फिर 18 पे बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो पक्षी होते हैं वो थोड़े से नाजुक होते हैं, वो ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं पर इतना नहीं, लंबे समय तक नहीं। तो उनकी तबीयत खराब हो, उनके हेल्थ इश्यूज हो, तो कोशिश करें कि उन्हें आप एक नॉर्मल टेम्परेचर पे या पंखे में रखें।
0: ओके, चलिए लिसनर्स, अब चलते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। बस यूं गए और यूं आए फिर से हमारी मॉरल स्टोरी के साथ, क्योंकि आज ट्यूसडे है, तो आज हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों के लिए मॉरल स्टोरी तो ज़रूर है। तो देखते हैं कि आज हमारी स्टोरी का मॉरल क्या निकलता है, स्टोरी कैसी होती है, ये सब आप जानेंगे लेकिन इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के बाद। तो बस यूं गए और यूं आए, स्टे ट्यून्ड।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

0: चल जाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है जो छुपाई नहीं सकती। तो चलिए अब हम वापस आ गए हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के साथ, हमने एंट्री की है और अब बारी है हमारी मॉरल स्टोरी की। तो आज मॉरल स्टोरी में क्या है ये जानने के लिए आप सभी भी होंगे बहुत ही एक्साइटेड। तो चलिए फटाफट से बताते हैं कि आज हमारी जो मॉरल स्टोरी है वो है जोया की छोटी सी नर्सरी। आज हमारी स्टोरी का टाइटल ये है और आज की जो स्टोरी है ना वो काफ़ी मुझे लगता है कि आप सभी को मोटिवेट भी करेगी। तो स्टोरी कुछ इस तरह शुरू होती है कि जोया एक लड़की थी जिसे पौधे लगाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके छोटे से अपार्टमेंट की बालकनी में धूप बहुत कम आती थी। उसके लगाए पौधे सूख गए जिससे वो बहुत उदास हो गई, पर उसने हार मानने के बजाय इंटरनेट पर कम धूप वाले पौधों के बारे में पढ़ा और अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाकर मनी प्लांट और स्नेक प्लांट लगाए और उसकी खूब देखभाल की। कुछ ही महीनों में उसकी बालकनी में सबसे हरी भरी हो गई, जिससे उसे ये सीख मिली कि सही जानकारी और धैर्य के साथ किसी भी मुश्किल हालात में भी हमें सफलता मिल सकती है और आप जो चाहें आप उसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन बस उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और थोड़ा सा हमें सही चीज़ों पे रिसर्च करनी चाहिए, सही चीज़ों को जानना चाहिए। तो जैसे कि आज हमारा बच्चों का डे है और आज के दिन हम एक मैसेज जो है हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को यही देना चाहेंगे कि अगर आप फ़ोन भी चलाते हैं और किसी टॉपिक पे आपको क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे जानना है, तो उसके लिए आप फ़ोन से, कहते हैं ना कि फ़ोन का भी एक बहुत ही अच्छा यूज़ किया जा सकता है। तो आप भी अच्छी चीज़ों को जानिए, अच्छी चीज़ों को पढ़िए और थोड़े पेशेंस के साथ आप भी अपने किसी भी गोल को, जो भी आपका गोल है, उसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से पेशेंस के साथ में। और कहीं ना कहीं पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब मैं तो कहूँगी बच्चों के लिए नहीं, उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो पेशेंस रखें। जैसे कई बार हम अपने बच्चों से बोलते हैं ना कि नहीं बस ये तुम ये कर लो जल्दी से और जल्दी से तुम अच्छे हो जाओ, पढ़ाई में बहुत अच्छे होना है तुम्हें, फटाफट से पढ़ाई करो, तो इतनी जल्दी कुछ नहीं होता है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि अगर बच्चे को ABCD लिखनी नहीं आती है तो वो 24 घंटे के अंदर ABCD लिखना सीख जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस आपको भी रखने की ज़रूरत होगी बच्चे के साथ, प्यार से सिखाइए। जब आप प्यार से सिखाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा सीख भी पाएगा, पढ़ भी पाएगा और अच्छे से उसे अपनी लाइफ में जो भी करना होगा वो कर पाएगा। तो फटाफट से आप सभी बताएं कि आपको आज की हमारी ये मॉरल स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए अब सबसे पहले बारी है हमारे आज के स्टोरी, तो हमने आपको बता दी, बट हर दिन हम आपको कुछ टिप ऑफ द डे भी बताते हैं। तो आज का हमारा जो टिप ऑफ द डे है वो बच्चों को लेकर के ये है कि अगर आपके बच्चे आधे घंटे रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो उन्हें 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर दीजिए। ब्रेक का मतलब है कि अगर आधे घंटे पढ़ते हुए हो गए तो आप 5 मिनट का ब्रेक दे दीजिए कि 5 मिनट जाओ और जा करके पानी पी के आओ या कुछ भी करना हो। ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेगुलर पढ़ते पढ़ते कई बार हमारा माइंड जो होता है ना वो थक जाता है और कहीं ना कहीं उसे एक बीच बीच में कुछ ब्रेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इससे बच्चे चेयर अप होते हैं और फिर दोबारा पढ़ने के लिए उनमें एक एनर्जी भी आती है।
1: बिल्कुल, अब देखिए बिल्कुल इसी तरीके से इमेजिन करिए एक रेडियो शो विदाउट एनी सॉन्ग या फिर विदाउट एनी ब्रेक, है ना, थोड़ा सा परेशान हो जाएगी आपसे कि भाई बिना ब्रेक के कैसे बोल रहे। इसीलिए कहते हैं और ब्रेक है और एंटरटेनिंग ब्रेक है, सबसे बड़ी बात ये एंटरटेनिंग ब्रेक है, ब्रेक है तभी आप हमारे साथ घंटों जुड़े रहते हैं, बल्कि हमारे साथ सालों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बच्चों की पढ़ाई में भी।
0: बिल्कुल,
1: अब देखिए ब्रेक काफ़ी टाइप के, और सबसे बड़ी बात है ब्रेक नहीं है जिसका, बल्कि मुझे लगता है कि पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग हो तो बच्चे पढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है, जो मैं हालांकि मैं अभी कोई बच्ची नहीं हूँ, पर मैं भी जब पढ़ती हूँ तो मैं भी चीज़ों को ना कनेक्ट कर देती हूँ अपनी पर्सनल चीज़ों से। जैसे फॉर एग्जांपल ये थोड़ी सी फ़नी चीज़ है, जैसे मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ आप जानते हो, मैं काफ़ी लिसनर भी जानते हैं, तो हमारे में जो बॉडी टाइप होती है वो बॉडी टाइप को समझने के लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ थी कि बॉडी टाइप समझा कैसे जाए, तो मैंने उसको एक नाम दे दिया जो कि मेरे पर्सनल रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है। जैसे कि मेरे को देखना था कि जो मोटे इंसान होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो मैंने देख लिया कि ये एंडोमॉर्फिक है, एंडोमॉर्फिक मेरी ये वाली दीदी है, तो इससे क्या हो गया, मुझे याद हो गया जब भी मैं एंडोमॉर्फिक दिखती हूँ मेरे में आता है यार निक्की दीदी, तो उनका नाम निक्की है तो वो थोड़ी मोटी है, तो फिर जब भी एग्जाम में आते हैं तो मैं उनकी सारी क्वालिटीज लिख देती हूँ कि वो इंसान मोटा होता है, एनर्जेटिक होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, और भाई अच्छे नंबर भी मैं स्कोर कर लेती हूँ। तो चीज़ों को जब आप रिलेट करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो वो एक बहुत ही इंजॉयबल वे होगा आपका पढ़ने के लिए, आप सीखेंगे भी, समझेंगे भी और मज़ा भी आएगा।
0: बिल्कुल। और प्रबल जी आ गए हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम। तो ये गुड आफ्टरनून आपका प्रबल जी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि 255 पे आप आए, मतलब इतनी देरी से आएंगे आप गुड आफ्टरनून करने के लिए, एक्सेप्टेबल नहीं है, टाइम से आइए। मैं हर बार कहती हूँ ना कि जाते जाते मत आइए, आते आते आइए।
1: अच्छा चलो आज माफ कर दो, कल आ जाएंगे।
0: अच्छा चलो माफ कर दिया, अब आयुषी ने कह दिया तो फिर मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन ये माफी सिर्फ आज के लिए है, हमेशा नहीं मिलने वाली है आपको।
1: कल से अंशिका जी आपको डांट भी देंगी।
0: नहीं डांटूंगी तो नहीं, मैं तो बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप टाइमली आए। देखिए टाइमली ना आने का जो नुकसान होता है ना वो हमारे लिसनर्स को ही होता है। अब हमने कितनी सारी बातें की, तो प्रबल जी ने हमारी बातें मिस
1: कर दी ना आपने फॉर्मेलिटी वाली बात। अब देखिए हम सब किसी और शोज में होते तो हमारा डांटने का बिल्कुल हक नहीं था, लेकिन क्योंकि हम सुन सहेली में है जो कि दोस्तों के बीच का शो है, तो अगर हम लोग नहीं डांटेंगे तो दोस्त कैसे।
0: वो तो है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए हमने आपको माफ कर दिया है प्रबल जी, कल आइएगा और टाइम से आइएगा। तब तक के लिए आप सभी भी अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन को। और हमें आज के लिए इजाजत दें क्योंकि हमारा जो टाइम है वो हो गया है, अगर आज हम जाएंगे नहीं तो फिर कल वापस आएंगे कैसे। तो कल आएंगे बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारे धमाल के साथ। बाय बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827। अरे सुना?
0: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
0: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता
5: रहता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
8: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
9: मतलब?
8: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
10: श्रोताओं, एक और दिन लेके मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच में, और दिन के साथ में आपका अपना शो भी आ गया है और वक्त हो गया 3:06, यानी के आपके फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम में मैं हाजिर हूँ, आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और हाँ जी, कॉल इन शो है आपका और कॉल इन नंबर आपको बखूबी मालूम है। नहीं मालूम है तो मैं याद दिला देती हूँ, तो नंबर वही है 6393316429, यानी के 6393316429। कॉल करिए और अपनी फरमाइशों को करवाइए ट्यून, क्योंकि भाई दोपहरिया है और खड़ी दोपहरिया तो है, लेकिन आज दोपहरिया में थोड़ी सी चेंजेस आ गई है। पता नहीं क्या भगवान जी को अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है कि कुछ अच्छे काम अगर हो रहे हैं इस धरती पे तो भगवान जी को भी वो अच्छा लग रहा है। और उनका कहना ये है कि भाई थोड़ी थोड़ी बद्दी हम किए दे रहे हैं। अच्छी बात ये हो रही है कि भाई आज है जेठ का मंगल, और जेठ के मंगल में लगे हुए कई जगह पर लंगर, लंगर के साथ में भंडारा, भंडारे के साथ में खाने वालों की भी कतार हैं। भाई धूप में तो बैठ के या खड़े होकर खाना थोड़ा सा कष्टकारी होता है, इसलिए हमें लग रहा है कि ऊपर वाले ने यानी कि इंद्रदेव ने अपने मुलाजिमों से कह दिया है कि आज थोड़ी सी बद्री कर दो। तो भाई गोंडा में तो ऐसा वाला मौसम है, आपके उधर का कैसा आप बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज जी हाँ, हनुमान जी के लिए हमारी प्लेलिस्ट से आप लोगों को एक बचपन वाला गाना सुनाएंगे हम। बचपन से 55, 56, 58, 57 जो भी हो जाएंगे एवरग्रीन हिट्स में ये हमेशा याद किया जाने वाला सॉन्ग होगा, क्योंकि ये है जय हनुमान सीरियल का टाइटल ट्रैक। और कितना पसंद है हमको, आपको, हम सभी को, ये आप सुनने के बाद खुद ही रेटिंग करके बताने वाले हैं। उसके बाद आज की सबसे पहली डिमांड होगी हमारे सुखी राम जी की। हाँ जी, सुखी राम जी हमें सुनते हैं एमपी से। फिलहाल के लिए ये गाना जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान करते हुए आगे बढ़ते हैं, और इस नगमे को आप भी एंजॉय करिए, हम भी करते हैं।

साथ जय जय हनुमान। और बस यही कहूंगी कि बजरंग बली पर आप सभी की कृपा बनी रहे और आपके बल में भी वृद्धि होती रहे। हर एक परिस्थिति से निपटने का बल हो आपके पास में, हर एक दुख सुख में आप लोगों के साथ खड़े हो ये वाला बल हो आपके पास में, आप लोगों की मदद का जरिया बन सके ये वाला बल हो आप में, और बिल्कुल हंसी का किसी के कारण हो ये वाला बल हो आप में। फिलहाल बढ़ेंगे आज की पहली वाली डिमांड की ओर जो कि सुखी राम जी की। आइए देखते हैं ये क्या सुनना चाहते हैं, फिर आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेकर के हम अपने सबलू सावन जी की, फिर हमारे रिजो जी की भारी भाई, ये भी अपने बचपन से कहीं से कुछ लेके आए हैं, फिर नेक्स्ट डिमांड देवी प्रसाद जी की, फिर हमारे प्रबल जी, शाहिद अंसारी जी, धर्मेंद्र मोहन भारती जी, निब्बर जी, सौरभ मौर्या जी और बाकी सभी।

हाँ जी, बस कृपा बरसनी चाहिए, चाहे हमारी हो उन पर या उनकी हो हम पर, इतना ही कहेंगे आपसे हम मंगू जी। और चंगू जी हमारी कहाँ है आज हमें पता नहीं चल रहा है, उनको भी थोड़ा सा आवाज दीजिए ताकि इधर आए झांके। और झांकने के बाद में जो मौसम हमें दिख रहा है भैया हमारे उत्तराखंड का, हमारी रीना शर्मा जी बताती है रुड़की उत्तराखंड से कि भैया आज तो हमारे यहाँ मौसम है थोड़ा सा बारिश का। थोड़ा सा इधर भी पास करिए ना प्लीज, हाँ हमारे गोंडा की तरफ भी। भाई मौसम इतना औसम हो तो थोड़ी बहुत बारिश तो बनती है, दो चार बूंद ही सही, लेकिन हाँ आत्मा मन और सब कुछ तृप्त करती है बारिश। फिलहाल ये गाना।

बेमिजाजी और दीवानियत की तो बात बनेगी ना जब ऐसा मौसम होगा और सांस में आपकी कोई यादें होंगी। यादें नहीं होंगी अगर कोई साथ में होते तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता, और कभी कभार ना साथ में तड़प भी हो सकती है मुलाकात की। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। बहुत ही पैसी डिमांड थी सुखी राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड किसी और की नहीं है, हमारे प्यारे मुंबई बोरी बले वाले, बोरी बले नहीं बोरी बले वाले, हाँ जी हमें मालूम है बोरी बले, लेकिन बजरंग बली का दिन है, बले बले ही होगी सबकी, बले बले। फिलहाल ये गाना हमारे मुंबई से है, हमारे प्यारे लिसनर सबलू सावंत जी की ओर से। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को। 3 से 4 के सफर में मैं हूँ आपके हुसैन दोस्त आकांक्षा, और वक्त हो चला है 3:14। और अगर आपको भी अगर अपने अपने सॉन्ग्स को ट्यून करवाना है तो देर किस बात की है, मिलाइए 6393316429 यानी 6393316429

क्या बात है भाई, आज तो जज्बात पे जज्बात उमड़ के आ रहे हैं और आपकी अपनी आरजी आकांक्षा भी होती जा रही है जज्बाती। फिलहाल गाना बड़ा ही खूबसूरत है भाई सबलू जी, उम्मीद है कि आपकी मिसेज भी इसे सुन रही होंगी, यानी कि हमारी भाभी श्री, और आप दोनों के प्यार में यूं ही दिन प्रतिदिन गहराई बढ़ती रहेगी। फिलहाल हमारी और आपकी गहराई भी बढ़ती रहेगी, रिश्तों की मिठास बढ़ती रहेगी, जो इतने भी हमारे प्यारे चैटबॉक्स वासी हैं या हमें जो जहां कहीं से भी सुन रहे हैं। फिलहाल

भाई जज्बातों को अगर किसी के मतलब आपको सामने लाना है तो कुछ ऐसा नगमा बजा दीजिए, और यकीन माने कोई अगर आपसे गुस्सा है ना उस टाइम उसके रूसे रूसे चेहरों को अगर आपको हंसाना है तो एक प्यारी सी याद भरी नोकझोंक वाली जो आपके और उनके बीच हुई हो वो वाला सॉन्ग उनके सामने ट्यून कर दीजिए। कुछ बोलने का ही नहीं, पर देखिए वो ऑटोमेटिक आपको ऐसे देखेंगे घूर के या देखेंगी कि आप हंसे ना हंसो वो खुद ही हंसने लगेंगी। ऐसा होता है नगमों में बड़ी ताकत होती है, गीतों में बड़ी ताकत होती है। फिलहाल अब ताकत की बारी आ गई है उस नगमे में जो कि है हमारे प्यारे रीजू जी की, यानी कि मुंबई के गोरे छोरे रीजू जी की डिमांड आई हुई है। और इनका कहना भैया इनके बचपन का सॉन्ग है, और इसको जब ये सुना करते थे ना तब ये बेड पे सोफे पे कोई भी हिस्सा ऐसा बसता नहीं था घर का जो ठीक ठाक रह जाए, सबको ये कूद कूद के बराबर कर देते थे। अगर कोई आपके घर में कोई ऊंचा हुआ हिस्सा हुआ आपके

बिस्तरों में, तो ये वहां आके कूद के इसको बराबर करने में मास्टर है, क्योंकि बचपन से इन्होंने ये करतब सीखा हुआ है। फिलहाल गाना क्या है आइए सुनते हैं और जानते हैं आपके 3 से 4 के सफर यानी कि कॉलर ट्यून गोंडा के साथ में। एंजॉय द ट्रैक, बड़ा मजा आने वाला है, आप भी झूमने वाले हैं, हम भी झूमने वाले हैं।

हाँ जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आपका बचपना याद आ गया होगा, या फिर आपके अगल बगल कहीं चंगू मंगू और चुन्नू मुन्नू नाच झूम रहे होंगे। तो फिर आपको बिल्कुल से सोचने की जरूरत नहीं है भाई, हमारे रिजु जी की डिमांड थी और डिमांड बड़ी ही फाड़ू टाइप्स की थी भाई। बचपन में जब हम जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम क्या थे, हम बस होते हैं चंचल मन प्रवृत्ति वाले चंचला। हाँ जी, फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर और आएंगे चैट बॉक्स की ओर भी, लेकिन उससे पहले दो डिमांड हम और लेना चाहेंगे जो कि है हमारे प्यारे एक श्रोता की। और एक श्रोता की दो डिमांड नहीं है भाई, दो श्रोता है। पहले तो हम बजाएंगे अपने देवी प्रसाद जी के डिमांड को, फिर आएंगे हम अपने प्रबल जी के डिमांड के साथ, और उसके बाद हम आएंगे चैट बॉक्स की ओर आप सभी के पैगाम की ओर, और फिर नेक्स्ट डिमांड लेंगे हम जिनकी वो है हमारे प्यारे शाहिद अंसारी जी फ्रॉम मुरादाबाद। फिलहाल के लिए चलिए रो लेते हैं थोड़ा सा, शादी के बाद में क्या होता है जानते हैं इस नगमे के माध्यम से जो कि हमारे देवी प्रसाद जी की डिमांड। 3 से 4 के सफर में मैं हूं आपके दोस्त आर्जिया कांग।

जी के सॉन्ग की लिरिक्स का मतलब अगर कोई समझ पाया तो बता दीजिएगा। रिजु जी को खुद को नहीं पता, मुझे मालूम है, लेकिन हमारे कुछ बहुत ही होनहार श्रोता है जिनका दिमाग ऑटोमोबाइल ऑटो क्या बोले ATM की तरह, हाँ, जब एनी टाइम आप कभी भी उसमें अपना वो विड्रॉल कराने के लिए अपना ATM कार्ड यूज कर सकते हैं। तो मुझे मालूम है कि मैं फिलहाल के लिए आप लोग के दिमाग का यूज कर सकती हूँ। तो प्लीज अगर किसी को लिरिक्स का मतलब पता हो तो मेरे को बता दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा याद करके अपने भतीजे श्री को सुनाना है इसलिए।

हाँ जी, तो अभी आगे बढ़ेंगे हम शादी के बाद वाले लम्हों की ओर। पता नहीं मुझे बाद वाले लम्हों में रोना ही होता है, हंसना होता है, मैं जब शादी होगी तो मैं जरूर आपसे बताऊंगी। फिलहाल देवी जी का कहना है कि शादी जब होती है तो रोना होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं डिमांड की ओर, जो की हमारी प्रवीण मिश्रा जी और पंडित जी की ओर से। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

जहाँ तो ये सवाल है प्रबल जी का कि क्या याद उन्हें भी करती होगी, वो तो जाहिर सी बात है अगर आपने नेक कर्म किए होंगे तो आपके नेक कर्मों को गिना जाएगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे भाई साहब यानी कि हमारे पंडित जी काफी नेक कर्मों से ओत प्रोत है, तो आपको आपकी वो जरूर याद करती होंगी। फिलहाल बादशाह जी की आवाज में आपने अभी ये रैप एंजॉय किया और अभी वक्त हो चला है कि हम मुलाकात कर ले अपने प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे चैट बॉक्स वासियों से। भाई पैगाम आए हुए हैं हम तक, और अगर हम पैगाम नहीं लेंगे तो फिर हम थोड़े से निष्ठुर कहलाएंगे, और निष्ठुर कहलाना हमें थोड़ा सा पसंद नहीं है, इसलिए हम चलते हैं उसी ओर जिस ओर है आपके पैगाम। और इसी बीच में आपकी कॉल्स भी आ रही है तो मैं थोड़ा सा कॉल्स को रखूंगी साइड में, और कॉल्स को साइड में रखते हुए आपके पैगाम की ओर बढ़ेंगे। भैया जो भी कॉल कर रहे हैं थोड़ी देर बात कर लीजिएगा। और हमारे पास में जो मैसेज हमें दिख रहा है वो है हमारे प्रबल मिश्रा जी पंडित जी का, और साथ ही साथ में है रिजू जी, और गुड आफ्टरनून एवरीवन बोला है प्रबल जी ने। और हाँ जी, जैसा कि रिजू जी ने बताया था कि इनके बचपन की फरमाइश थी टैन टैन, हाँ जी क्रेजी फॉग, और क्रेजी फॉग की बात फ्रॉग है, फॉग नहीं है, और क्रेजी फ्रॉग के बाद में ये नागेश्वर जी हमारे बीच में आ गए हैं। ओके नागेश्वर जी भी आ गए हैं रतलाम की गलियों से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और साथ ही साथ में नेहा जी हैं बहराई से, यानी कि हमारे मंगू जी हैं, चंगू जी नजर नहीं आ रही, कोई बात नहीं। सबलू सावन जी मुंबई बोरीवली से हैं, धर्मेंद्र मोहन भारती जी आवाज विकास कॉलोनी गोंडा से। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले मैसेज की दोस्तों, तो हमारे बीच में सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से, आप बताइए आपके उधर लंगर कब लगने वाला है। आज पता है आज मैं लंगर कर रही थी, मुझे कोई लंगर नहीं दिखा, आज जहां दिखा वहां हम रुके नहीं, बात ये अलग है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, नहीं आपकी की ओर, जिसमें नेक्स्ट मैसेज मुझे दिख रहा है आरसीएम से बबलू जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जी हाँ, ये हमें सुनते हैं भटपी से। बबलू पांडे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आरसीएम से सुनने वाले सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट मैसेज की, तो आप लोगों के हार्ट इमोजीज हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक के लिए लगातार। रफ्तार जी भी आ गए हैं हमारे बीच में गुड आफ्टरनून बोलते हुए, आपकी दोपहरिया बहुत ही शुभ और मंगल हो। इसके बाद में बबलू पांडे जी ने अपनी चंद लाइनें हम तक पहुंचाई हैं, और चंद लाइनों में बहुत ही गहराई लाते हैं अपनी जिंदगी का। फिलहाल देखते हैं आज इन्होंने जिंदगी के बारे में क्या बताना चाहा है। तो लिखते हैं, जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए, अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। वेरी वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच ये रिमाइंडर कराने के लिए। और नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो हमारे बीच में है मनी शर्मा जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है आरजे आकांक्षा। और हाँ जी, आज फिर से इन्होंने एक सॉन्ग डेडिकेट किया, लेकिन इस बार का जो सॉन्ग है मनी जी का वो इनके भ्राता श्री यानी के इनके बड़े भैया प्रबल जी और इनके दोनों को है हमारी ओर से डेडिकेट। भाई इन्होंने किया था सभी चैटबॉक्स वासियों को जो जो इनके दोस्त और भाई लगते हैं, लेकिन हमने कहा ये जोड़ी काफी अच्छी लगती है मुझे, तो मैं इस पर थोड़ा सा फोकस करके मैंने बोल दिया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले मैसेज की ओर, तो भाई सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, सो आपको खुद ही ट्राई करना होगा, ऐसा कहना है हमारी नेहा जी का। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मैसेज में ओके, तो जब आपकी बारी आएगी सुरेंद्र जी जरूर आपका गाना बजेगा। फिलहाल हमारे नेक्स्ट सिंगर नहीं, नेक्स्ट होता की बारी है जिनका नाम है हमारे साहिद अंसारी जी, जो मैं सुनते हैं मुरादाबाद से। चलिए इनकी डिमांड को करते हैं ट्यून और सुनते हैं कि आखिर में ये हमसे क्या सुनना चाहते हैं।

हाँ जी, तो पत्थर के इंसान के बारे में बता दिया है हमारे प्यारे श्रोता ने, और अभी हम बढ़ेंगे एक उस सॉन्ग की ओर जो कि गर्मी में आपको थोड़ा सा राहत दिलाने का काम करेगी, लेकिन ये है थोड़ा सा आइटम सॉन्ग, तो एंजॉय करेगा उसी मूड के साथ में। धर्मेंद्र मोहन भारती जी की डिमांड पर 3 से 4 के सफर में आप सुन रहे हैं शो फरमाइशी यानी कि कॉलर ट्यून गुंडा।

0: व्हाट्स कुआं?
1: हाँ जी, तो जनाब को ये नहीं पता है कुआं क्या है। तो कुआं में झौवा भर पानी होता है और पौवा में अपनी पानी में होते हैं झौवा भर मेढक, और मेढक के साथ में टर टर की आवाज़। अगर आप कुआं में डूबना चाहते हैं तो पहले आप अपने कान में कुछ रुई हुई ठूंस के तब डूबिएगा, ताकि आपको आवाज़ परेशान ना करे। फिलहाल ये गर्मी का माहौल आपको ये थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं दिमाग में कुछ भी चल सकता है कि कभी आप तालाब में डूबते हुए मतलब दिखना चाहेंगे, लाइक क्या ही बोल दूँ, लेकिन मन कर रहा है बोल दूँ, हाँ, भैंस और पड़ियों की तरह, और कभी कभी आप मेंढकों की तरह कुएं में डूबते हुए नजर आना चाहते हैं। फिलहाल ये धर्मेंद्र जी की हमारी डिमांड थी, और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये है हमारी निब्बर जी की डिमांड। और निब्बर जी की डिमांड के बाद सौरभ जी का डिमांड होगा। सौरभ मौर्य जी, प्लीज अपने सॉन्ग को एक बार चैट बॉक्स में आके लिख दें, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है इसलिए। और मनी जी, आपका सॉन्ग एक बार प्लेलिस्ट हो चुका है, आपका गाना बजेगा, लेकिन आप थोड़ा सा वेट करिए। और दूस जो आपने लिंक भेजा है वो दूसरा गाना है, और हमने जो प्लेलिस्ट किया है, आपने जो कॉल करके बताया, वो दूसरा गाना है। फिलहाल के लिए बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे निब्बर जी की, और ओल्ड वर्जन नहीं, आज मेरा सुनने का मन है ये, तो आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं 3-4 हज़ार के सफर में ये वाला सॉन्ग।

जी श्रोताओं, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारे सौरभ मौर्य जी की डिमांड, और इनको सुनना है आशा जी की आवाज में। ये बहुत ही लेजेंडरी सॉन्ग्स में से एक सॉन्ग, उम्दा सॉन्ग्स में से एक सॉन्ग, इन आंखों की मस्ती में।

हाँ जी श्रोताओं, और अगर वक्त की बात करें तो 3:40 हो चुके हैं और 40:41 भी हो गया लीजिए, और वक्त को निकलते देर नहीं लगती है। इस सफरनामे में 19 शेष है मेरे पास में, और एक डेडिकेशन का सॉन्ग भी आया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो भाई वही प्ले करूंगी जो मेरे पास में आया हुआ है कॉल के थ्रू। और ये गाना डेडिकेट किया गया है हमारे प्रबल जी को, और हमने मनी जी को कर दिया, प्रबल जी और नागेश्वर जी को इन्होंने किया था। फिलहाल हमने इन्हीं दोनों की जोड़ी को डेडिकेट कर दिया, और एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, बड़े मियाँ छोटे मियाँ।

दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है नागेश्वर जी, गाना आप ही के लिए आया हुआ था, लेकिन बस हमने थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि दोस्ती को हमेशा से जागरूक रहना चाहिए और उसमें किसी तीसरे का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी दोस्तियाँ तीसरे के आने पर ही टूटी हैं, तो मैं नहीं चाहती कि किसी और की दोस्ती टूटे। फिलहाल आप सभी दोस्त हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक इसके बाद जो नगमा है वो हम अपने मंगू जी को नहीं चंगू जी को डेडिकेट करेंगे, क्योंकि गाना बहुत सही है और क्या है वो बाद में बताएंगे, पहले गाना।

भाई मान लिया नागेश्वर जी ने कि इन्होंने ये गाना सभी को डेडिकेट किया। फिलहाल हमारे मनी जी ने सारे चैटबॉक्स वासियों को किया था। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट वाइट सॉन्ग की ओर, और ये सॉन्ग हम डेडिकेट करेंगे अपनी नीना जी को। कारण है कि भाई ये जो हमारे मनु सर का टैग लाइन है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, तो राजू सलमानी जी यानी हमारे रॉबिन हुड जी ने एक सॉन्ग की डिमांड की है और वो सॉन्ग यही है, और ये बनता है हमारी नीना जी के लिए। वैसे तो काफी देर से आती है लेकिन आ जाती इतना ही काफी है, और आप सभी बने रहते हैं ये भी मुझे पता है, और काफी लोग हमें मैसेज भी नहीं करते पर सुनते रहते हैं छुप छुप के, और वैसे छुप छुप के सुनना काफी अच्छा होता है क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं होता कि उन्हें सुना जा रहा है। फिलहाल ये ट्रैक एंजॉय करते हैं और फिर आते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड के साथ में। बड़ी प्यारी सी एक सॉन्ग की डिमांड हुई है जो कि सुरेंद्र यादव जी के द्वारा, फिर होंगे हमारे राम नरेश तिवारी जी।

हाँ जी, और यही कहना है हमारी अनु पांडे जी का जो हमें सुनती है विजयनगर से। पहले तो उन्होंने हमें लंगर के लिए जी हाँ न्योता भेजा, उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया। फिर उन्होंने कहा भैया हमारी बारी आते आते बहुत देर हो जानी है, इसलिए आज रहने दीजिए, हम करेंगे कल फरमाइश। तो थैंक यू सो मच भाई, ऐसे समझदार प्राणी भी हमारे जी हाँ श्रोता गणों में गिने जाते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारे सुरेंद्र यादव जी की डिमांड है गौरा चौकी से। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

जी हमारे बीच में जुड़ गए हैं सचिन शुक्ला जी फ्रॉम दिल्ली और दरक्षा अंसारी जी सीतापुर से और सविता दुबे जी हरखापुर से। आप तीनों का भी स्वागत और अभिनंदन करती है आरजे आकांक्षा। और तोता तोता सजन से कहना, क्या कहना है सुनेंगे इस गाने के माध्यम से। और अगर मैं कहूँ कि कितना वक्त हमारे पास, केवल और केवल 10 मिनट। देखते हैं किस किस की बारी आ जाती है और किस किस की रह जाती है। वैसे अनु जी ने तो अपना दिमाग बखूबी यूज कर लिया, बहुत ही सही से।

भाई लंगर के खाने की बात होगी तो हम अकेले ही खाएंगे, अपनी थाली से एक भी पूरी किसी को नहीं बांटेंगे। आपको खाना है तो आप स्वयं जाइए विजयनगर और वहां से खाना लाइए और खाइए, वहीं खा के आइए, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि अनु जी ने सभी को इनवाइट किया इसीलिए उन्होंने बोला आप अनाउंस कर दीजिएगा। फिलहाल उनके विजयनगर में आज लंगर लगा हुआ है, वैसे मुझे लगता है जाते जाते खत्म हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। और रवि जी आ गए आवाज विकास कॉलोनी गोंडा से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और राम नरेश तिवारी जी की डिमांड पे और क्षमा जी की डिमांड पे ये प्यारा सा गीत आज काफी दिनों बाद, रोज इनका मतलब डिमांड होता था, मैं प्ले नहीं कर पाती थी, आज टाइम से डिमांड इनकी हमें प्राप्त हुई और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने आपके इस सॉन्ग को ट्यून किया।

हाँ जी दोस्तों, तो कुछ गाने ऐसे ही होते हैं एवरग्रीन जिन्हें गिना जाता है। और प्रेम मौर्या जी का भाई फीडबैक आया हमारे पास में कि ये इनका फेवरेट सॉन्ग है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। और नेक्स्ट डिमांड जो है वो है किसकी, ये बता देते हैं हम आपको। जी हाँ, तो नेक्स्ट डिमांड हमारे पास में आई हुई है रीत लाल जी की। आज इनका भी सॉन्ग काफी दिनों बाद मैं ट्यून करने वाली हूँ। रोज कॉल होती थी लेकिन बारी नहीं आती थी। गाना बहुत ही खूबसूरत है, एंजॉय करिए।

जी हाँ, और आज की लास्ट डिमांड हम लेंगे अपने प्यारे श्रोता यानी कि पिंटू जी की, जो हमें सुनते हैं मनकापुर से। और इसी के साथ मैं लूंगी आप सभी से इजाजत, और माफी चाहूंगी मैं निशा जी से, अनु जी ने पहले ही मना कर दिया है, और समरीन जी, अंश जी से। भाई गाने मैं क्या करूँ, एक ही घंटा होता मेरे पास में, मैं उतना ही प्ले कर सकती जितना मेरे पास में मोहलत होगा। आप कल जरूर से ट्यून करवा लीजिएगा। फिलहाल के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, और सुनते रहिएगा रेडियो गाना 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। बाय।

0: तो बहुत खुश थी। फिर शाम को क्या हो गया?
1: विनोद का कोई फोन नहीं आया।
0: ओहो, नो न्यूज इज गुड न्यूज। अगर कोई प्रॉब्लम होता तो मैसेज आता, सिंपल। ये क्या बढ़िया माहौल है, जस्ट लुक अराउंड, इट्स सो ब्यूटीफुल। आप ऐसे मौसम में कैसे उदास रह सकती हैं?
1: क्योंकि मुझे किसी का इंतजार है।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: अरे सुना?
5: क्या?
4: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
5: वाओ!
4: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
6: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
5: मतलब?
6: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
8: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
9: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
8: और जेंट्स के लिए?
9: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
8: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
9: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
10: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
11: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
12: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
13: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
14: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में। स्टे ट्यून्ड।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
0: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: डिलीशियस
6: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
5: और क्या क्या है खास?
6: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
5: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45। अरे सुना
7: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
7: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
8: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
9: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
8: सच में? क्या खास है वहाँ?
9: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
8: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
9: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
8: और फोटोग्राफी वगैरह?
9: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
8: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
9: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
8: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
1: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
0: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें।
1: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहनें, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
0: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबराहट आने पर डॉक्टर को दिखाएं।
1: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
0: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
3: अच्छा ये बताओ।
4: हाँ सर।
3: तुमने अपनी जिंदगी में कभी कोई नेक काम किया है?
4: हाँ बिल्कुल किया ना सर।
3: क्या किया?
4: एक बुजुर्ग धीरे धीरे अपने घर जा रहे थे और मैंने उनके पीछे एक कुत्ता छोड़ दिया और जल्दी से उन्हें उनके घर पहुंचा दिया।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे,

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.0।
1: हाँ, वापस आ चुकी आरजे बीना आप सभी के पास करने बहुत सारी बात। और आज बात हो रही है ग्रेट निकोबार की, जिसपे संकट के बादल मंडरा रहे हैं और उस बादल को हटाने का काम हमें सबको करना है। जी हाँ, आप सबके साथ आरजे बीना है जो बात कर रही है ग्रेट निकोबार की, जो कि आप ही के भारत यानी कि हमारे इंडिया का हिस्सा है। जी हाँ, फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ, ये हमारे देश का एक आइलैंड है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। तो चलिए आगे बताती हूँ कि इसमें खतरा किस चीज का मंडरा रहा है। खतरा जो है वो है, आप खुद बताइए, किसी जगह जहाँ पे प्रकृति अपने आप अपने जीवों को रहने खाने पीने की जगह दे रही है, किसी भी आपदा से उसे दूर रख रही है, तो उसपे खतरा किसका मंडरा सकता है? कोई प्राकृतिक खतरा तो हो ही नहीं सकता। किसका खतरा? मानवीय खतरा। जी हाँ, हमारे मानव का लालच जो है वो घट नहीं सकता, और ये लालच एक बड़े कह सकते हैं ना कि विनाश का प्रतीक माना जाता है। जलवायु परिवर्तन, सुनामी, प्राकृतिक आपदाएं, वनों की कटाई, प्रदूषण, ये सारी चीजें मानव की देन है। अब आप सोच रहे होंगे प्राकृतिक आपदाएं, जी हाँ, आप प्रदूषण करेंगे तो प्रकृति भी अपने अंदाज में हमारे सामने रुद्र रूप धारण करके सामने आ जाएगी। हमने ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाई है, ना कि प्रकृति ने। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो भाई बाढ़ और कम वर्षा की समस्या तो बिल्कुल बढ़ जाएगी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो हमारे निकोबार को खतरे में डाल रहे हैं। तो चलिए आपसे बात करते हैं। और जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सुदूर दक्षिण छोर पर नीति आयोग द्वारा परिकल्पित लगभग 75,000 से 81,000 करोड़ की एक महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा और रणनीतिक परियोजना को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है ग्लाथिया बे में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, 450 मेगावाट पावर प्लांट और एक नया टाउनशिप बनाकर इसे एक वैश्विक व्यापार केंद्र यानी कि ग्लोबल ट्रेड हब बनाना। यह परियोजना भारत के समुद्री व्यापार को आत्मनिर्भर बनाने और हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी का मुकाबला करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन ये अपने भारी भरकम पर्यावरणीय प्रभाव के कारण विवादों में है। अब आप बताइए, इतनी सारी चीजें बनानी हैं तो भाई प्रकृति को तो परेशान करना पड़ेगा, हमको अपना विकास करना है। हमें हमारे विकास के लिए क्या बनाने हैं? ट्रांसपोर्ट्स बनाने हैं, ट्रांसशिप बनानी, टाउनशिप्स बनानी है, मेगावाट पावर प्लांट लगाना है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना है, लेकिन कैसे? पेड़ों को काट, वहां के वन्य जीवों को भगा के। तो ये बताइए, वन्य जीव कोई बहुत ज्यादा क्षेत्र में तो फैले नहीं है, एक छोटा सा क्षेत्र है, उसको भी हम खाली करा देंगे तो वो क्या आके हमारे घर में रहेंगे? जी नहीं, वो इस दुनिया से अलविदा कह देंगे और फिर हमारी रेड डेटा बुक का जो डेटा है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और हम कहेंगे कि अरे पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ेगा जब हम बढ़ाने में लगे हैं, और जो प्रकृति उसे बैलेंस करे उसको भी हम खत्म कर रहे हैं। जी हाँ, क्या हमारी दोगलापंथी है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ग्लाथिया बे में, जिससे भारत कोलंबो सिंगापुर बंदरगाह जो है इस पर निर्भर करेंगे। इस प्रोजेक्ट के और क्या घटक हैं? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नागरिक और रक्षा दोनों देशों के लिए बनाया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत, इसके बिना भी जिंदगी आरामी से चल रही है। टाउनशिप और विकास, 2050 तक लगभग 6.5 लाख लोगों के लिए एक नया शहर विकसित करना। नहीं रहना है ऐसे शहर में, उन लोग को ऐसे ही रहने देते हैं ना, क्यों हम लोग परेशान कर रहे हैं? जिसको बहुत ज्यादा रहने का शौक है निकोबार में, जाके वहाँ की ट्राइब कम्युनिटी को ज्वाइन कर ले। मुझे नहीं लगता कि वहाँ के पेड़ पौधों को काट के एक नया शहर बसाने की जरूरत है। ऑलरेडी हमारे देश में इतने शहर हैं जहाँ पे सर्वाइवल हो सकता है, पर क्या करें, ये परियोजना हमारे आपके कहने से तो बदलने नहीं वाली, लेकिन हाँ हमारे आपके एकजुट होने से जरूर बदल सकती है। तो क्या चाहते हैं? कि आपका ग्रेट निकोबार नॉन ग्रेट निकोबार बन जाए, या फिर आप चाहते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को बढ़ावा दें और सपोर्ट करें? वैसे मेरा तो सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि पर्यावरण का दोहन होना सबसे बड़ा दुष्प्रभाव होगा हमारे पेड़ पौधे वन्य जीवों के लिए। और मैं नहीं चाहती कि हमारा जो कहते हैं ना कि वन जीव है वो किसी भी तरह की समस्याओं को झेले। बहुत मुश्किल होता है यार किसी के घर से किसी को निकाल देना और फिर उससे कहना कि भाई तुम नई जगह जाके रह लो। क्या ऐसा संभव है? क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। अब आप लोग सोच के बताइए कि कैसे हम

किसी को किसी के घर से जाने के लिए कह सकते हैं। आप बताइए, आपसे कोई आके ऐसे अचानक से बोले कि अरे कुछ दिनों के लिए तुम बाहर जाके रह लोगे, कुछ नहीं हमेशा के लिए, क्या तुम अपना घर मुझे दे सकते हो? वैसे इसके महत्व को बताने के लिए बहुत सारी चीजें भी हमें बताई गई हैं, जैसे कि ग्रेट निकोबार परियोजना जो है, इसका उद्देश्य है द्वीप को एक रणनीतिक समुद्र और आर्थिक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना, लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बाद में विकास की बात करूँ तो ये विकास का एक रेगुलेटेड एनवायरमेंटल फ्रेमवर्क के अंतर्गत आएगा, जिससे IIA के तहत नोटिफिकेशन 2006, ICRZ नोटिफिकेशन 2019 के तहत मंजूरी मिली है। इस परियोजना में 42 कंप्लायंस कंडीशंस का जो पालन है वो अनिवार्य होगा। इसके तहत द्वीप केवल 1.82% फॉरेस्ट कवर का डायवर्जन किया जाएगा, जिससे बदले में 97.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वनीकरण की योजना बनाई गई है। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव होगा, अगर आसपास कोई भी चीज परिवर्तित होगी तो बची हुई चीजों पे तो प्रभाव पड़ता ही है। वैसे मुझे लगता है कि हम सभी को एकजुट होकर इसे बचाने की जरूरत है। ग्रेट निकोबार विकास का अड्डा तो जरूर है, लेकिन हमें संरक्षण भी करना है। अगर हम बायोडायवर्सिटी को नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में भारत पे भी बादल जो है वो संकट के ही मंडराएंगे। होने वाले युद्ध, होने वाले प्रदूषण, ये सभी हमारे ग्रेट निकोबार जैसे और बहुत सारे ऐसे बायोडायवर्सिटी पॉइंट्स का दहन कर देंगे जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आप लोग बताइए कि कैसे हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को रोक सकते हैं। आप बताइए कि क्या ये जो मतलब पक्ष और विपक्ष की बात है सही है या फिर गलत? मेरे हिसाब से तो विकास तो हमारा हर क्षेत्र से हो रहा है, पर अगर हम अपने पेड़ों को काट के अगर विकास ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि ग्रेट निकोबार का खत्म होना या ग्रेट निकोबार को क्षति पहुंचाना हमारे लिए बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है? लोगों का कहना है कि हमारे जीवन काल में देश की प्राकृतिक और जनजातीय विरासत के खिलाफ कहीं ना कहीं एक कदम होगा। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये हमारे विकास का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि जब ऐसे विकास होते हैं तो वन्य जीवन प्रभावित होता है, ये एक समस्या बन के ही सामने आएगा। 72,000 करोड़ रुपए के इस बुनियादी ढांचे को, उन्नयन को आइलैंड के मूल निवासियों और नाजुक परिस्थितियों के तंत्र के लिए गंभीर खतरा जो है, ये मैं ही नहीं बहुत सारे लोग बता रहे हैं। और अगर हम लोग इसको समझें सरल भाषा में तो ये प्रोजेक्ट जो है ये 2021 में शुरू किया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया, पर बात विरोध करने की नहीं है, बात है प्राणियों के बारे में सोचने की। इस प्रोजेक्ट को नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद लागू किया गया था, जिसमें द्वीप को लाभप्रद स्थिति का उपयोग करने की क्षमता की पहचान की गई थी, जो दक्षिण पश्चिम में श्रीलंका के कोलंबो और दक्षिण पूर्व में पोर्ट क्लैम मलेशिया और सिंगापुर से लगभग समान दूरी पर स्थित है। इसकी विशेषताएं ये होंगी कि ये जो है मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बन सकता है। इसका महत्व ये होगा कि हमारे सैन्य बलों को एक मौका मिलेगा, अधिक बड़े युद्ध पोतों की जो कहते हैं ना प्रैक्टिसेस शुरू हो जाएंगी, विमानों के लिए हमारे जो रास्ता साफ हो जाएगा, मिसाइल बैटरियां और सैनिकों की तैनाती सुविधाजनक हो जाएगी, और हमारे द्वीप समूहों से हम कड़ी निगरानी कर पाएंगे, ग्रेट निकोबार की निगरानी कर पाएंगे, ऐसा हमारा जो बिल है वो ये कहता है। पर चुनौतियां क्या क्या हैं, अब फिर से मैं आप लोग को एक बार फिर बता देती हूँ चलते चलते। चुनौतियां यही हैं कि हमारे वन्य जीव प्रभावित होंगे, ऐसी गंभीर चिंताएं इसे प्रस्तावित करती हैं, जो कि बुनियादी ढांचे से ज्यादा एक सोच के लिए हमें अग्रसर करती हैं, वो सोच जो हमारे पेड़ पौधों, हमारे वन्य जीवों और हमारी बायोडायवर्सिटी को लेके हमारे अंदर होनी चाहिए।

द्वीप का जो प्राकृतिक वातावरण है वो पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह परियोजना वन अधिकार अधिनियम 2006 का उल्लंघन करती है, जो शोम्पेन की जो जनजातियां हैं उनके समूह की सुरक्षा, संरक्षण, विनयन और प्रबंधन के लिए एकमात्र कानूनी रूप से सशक्त प्राधिकारी मानी जाती है। द्वीप की परिस्थितियां जो है वो खतरे में आ सकती हैं, जैसे कि इस परियोजना से द्वीप का पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इसमें करीब 10 लाख वृक्ष काटे जाएंगे। आशंका है कि बंदरगाह परियोजना से प्रवाल भित्तियां नष्ट हो जाएंगी, जिसका प्रभाव स्थानीय समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ेगा और साथ ही गैलेथिया खाड़ी जैसे क्षेत्र में घोंसला बनाने वाले स्थानीय निकोबारी मेगापॉड पक्षी और लेदरबैक कछुओं के जीवन पे खतरा मंडरा जाएगा। द्वीप का जो पारिस्थितिकी है उसके खतरे में आने से 10 लाख पेड़ों की कटाई तो होगी ही, साथ ही साथ प्रवाल भित्तियां जो हैं वो नष्ट होने के बाद जो और पक्षी हैं जो दूर क्षेत्र से आते हैं वहां पे प्रवास करने के लिए, उनके भी जीवन में क्षति पहुंचेगी। ये क्षेत्र जीएनआई के भूभाग का लगभग 15% हिस्सा होगा। ये राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अद्वितीय वर्षा वन पारिस्थितिकी तंत्र में देश के सबसे बड़े वनों में से एक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रस्तावित जो बंदरगाह है वो भूकंपीय रूप से अस्थिर क्षेत्र माना जाता है, जिससे 2004 में सुनामी के दौरान लगभग 15 फीट की स्थायी गिरावट का अनुभव किया गया था। ये उच्च जोखिम वाले आपदा प्रवण क्षेत्र में से एक माना गया है। बड़े पैमाने पर यहाँ पे बुनियादी ढांचा बनाना सुरक्षा और व्यवहारता के लिए भी चिंताएं खड़ी कर देगा। मतलब जो क्षेत्र आपके भविष्य के लिए भी नहीं सुरक्षित है तो हम उसे क्यों चुने, वो जैसा है उसे वैसा रहने देते हैं, बल्कि हमें और वहाँ पे वन्य जीवों के लिए रहने की सुविधाएं करनी चाहिए। तो आप लोग बताइए, क्या मेरी बातों से आप सहमत हैं? अगर आप भी सहमत हैं तो प्लीज आप लोग भी ग्रेट निकोबार के लिए आवाज उठाएं और अपने ग्रेट निकोबार की बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए अपने चैट रूम में एक ग्रीन हार्ट जरूर शेयर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन। धड़कने तभी मुस्कुराएंगी जब पेड़ आसपास लहराएंगे। आप सुन रहे थे विज्ञान शाला, लर्निंग बियॉन्ड क्यूरियोसिटी।

0: मन्ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
7: अरे सुना?
8: क्या?
7: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
8: वाओ!
7: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

में शामिल है, वो कौन है जो मेरी मंजिल है, वो कौन है जिसे मैं सुनना चाहता हूं।

मैंने ये न जाना कभी ऐसा

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: गोंडा शहर की धड़कन।
8: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
9: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
8: और जेंट्स के लिए,
9: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
8: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
9: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
10: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
11: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
12: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
13: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
12: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
14: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
15: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
14: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
15: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ

0: बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहां योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहां एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

रहा। वैसे दो लहरें मिलती तो हैं, लेकिन क्षणिक भर के लिए मिलती हैं। और जब कुछ पल के लिए दो लहरें मिलती हैं ना, तो उनके मिलने का कहते ना कि जरिया उतना सही नहीं लगता यार। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज की शाम है बिंदास, क्योंकि ना होगी सिर्फ मेरे आपकी बात, बल्कि एक प्यारी सी कहानी की बात जो आपको उस दौर में ले जाएगी जिस दौर में प्यार करना एक गुनाह माना जाता था। सो वेरी वेल, आप सब जानते हैं कि आज ट्यूसडे एंड ट्यूसडे मीन्स द लव स्टोरी डे। बट लव स्टोरीज कुछ मुकम्मल होती हैं, कुछ नामुकम्मल होती हैं, पर सब में एक बात तो ज़रूर खास होती है कि प्यार जो है ना, तरीका जो है प्यार करने का, वो लगभग सिमिलर होता है। किसी को देख के अट्रैक्शन फील करना, किसी की बातों में खो जाना, और किसी के साथ जन्म जन्म के वादे कर लेना और किस्मत के आगे घुटने टेक देना। तो फिर हो ना जुदा ये वादा रहा। हर इंसान चाहता है उसका जो कहते हैं ना पार्टनर, इस गाने को फॉलो करता हुआ उसकी जिंदगी में ऐसे बना रहे, कभी भी उससे जुदा ना हो, कभी भी उससे किसी भी तरह की कहते ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, जो प्यार है वो ऐसे ही अमर अमर अमर प्रेम कथा बन जाए। पर आप लोग बताइए, क्या प्यार का अमर बनना किसी एक पे निर्भर करता है या दोनों पे, या फिर किस्मत पे? मेरे हिसाब से दोनों पे। किस्मत और हमारे कर्म दोनों ही हमारे प्यार को हमसे मिला सकते हैं, और हाँ, प्यार से जुदा भी कर सकते हैं। ये शब्द आजकल नया नया सा आया है, कंपैटिबिलिटी। पर मैं जहाँ तक जानती हूँ, कंपैटिबिलिटी जैसा शब्द प्यार में हो तो ज़रूर सकता है, लेकिन प्यार के मुकम्मल होने या ना होने के लिए ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी तो नहीं है। तो चलिए हम सुनते हैं एक प्यारा सा गाना और आप लोग को ले चलते हैं प्यार वाली दुनिया में, एक लव मेडली में जो आपको करा देगी दुनिया की सैर और इन वादों को पूरा निभाने के लिए कुछ कहते हैं ना कि पक्के फैसले लेगी। तो एक प्यारा सा मतलब मैंने मैशअप बनाया आप लोग के लिए नए और पुराने गानों का। आई होप ये गाने आपकी जो प्लेलिस्ट हैं उसमें तो नहीं होंगे, बहुत छोटी सी प्लेलिस्ट है, लेकिन आपके मन को जरूर खुश कर देगी।

जी हाँ, किसी का चेहरा जो हमें शदाई यानी कि दीवाना बना देता है, पागल कर देता है, एक पल के लिए ऐसा लगता है जीने का सहारा उसको देखना ही है। भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, बस उसके चेहरे में ही हर मौसम की खुशबू मिलती है। ये प्यार है। शुभ संध्या अनिल जी, दीपांशी, रवि, वेरी गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है।

ओ धूप के जैसी गर्मी की शाम है या वो बहारों सी है। जी हाँ, कुछ प्यार की कहानियाँ ऐसी होती हैं जो फैंटेसी वाली लगती हैं। हमने अपने जब बचपन की बात करें तो हमने बहुत सारी ऐसी लव स्टोरीज़ वाली मूवीज़ देखी थी जिनको देख के लगता था कि यार लव तो ऐसा सिंपल स्ट्रेट सा होता है, यानी कि सिमरन के पिताजी सिमरन को बोलते हैं कि जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी एंड ऑल सेट। लेकिन यार ऐसा होता नहीं है, सारी चीज़ें समय से विपरीत चलती हैं। पर क्या करें, इतना सब जान के भी हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते ना। पर हाँ, मन में किसी के लिए जब अब प्यार आ ही जाता है तो हर मुश्किल सिचुएशन का सामना करने की हमारे अंदर जो ना कैपेसिटी आ जाती है, और कैपेसिटी अगर आ गई तो भाई प्यार करना तो भाई आसान हो जाता है। आसान मतलब कि आपका जो कहते हैं ना कि एक जज्बा है आपके अंदर का, जो कहते हैं ना गट फीलिंग है, वो आपको आपके प्यार तक पहुंचा ही देती है। क्या बोलते हैं, डू यू एग्री विद मी? यस ऑफ कोर्स, आप लोग मेरे साथ एग्री हो ही जाते हैं। और देखिए, आज मैं एक प्यारी सी कहानी और साथ ही साथ कुछ बातें आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जिस बात से आपको ये पता चल जाएगा कि प्यार का मतलब दो रूहों का मिलन नहीं है। प्यार का मतलब ये है कि दो थॉट्स मिले और कुछ नए थॉट्स बन के सामने आ जाए। एंड आपने बहुत सारे म्यूजिशियंस का नाम सुना होगा, उनमें से एक दो ऐसे म्यूजिशियंस भी हैं जिन्होंने ना सिर्फ गाने बनाए बल्कि प्यार के लिए एक कहते ना कि पैगाम लिख के रख दिया। और आज मैं उसी प्यार के पैगाम को आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं। और जैसे ये गाना है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है,

अब प्यार का पहला खत हो या प्यार का पहला मैसेज हो, दोनों ही लिखने में पहली हिचकिचाहट तो हमेशा हो ही जाती है। और वो हिचकिचाहट कहाँ से कहाँ पहुँच जाए कुछ पता नहीं भाई, कुछ पता नहीं। बस हम ये सोचते हैं कि यार किसी तरह ये खत हमारे मंजिल तक पहुँच जाए। और वैसे ही मंजिल बताने के लिए मैं आपको बता दूँ कि आज है शेख चिन्ना मौलाना का बर्थडे, जो इंडियन म्यूजिशियंस में से एक रहे और इन्होंने अपनी बहुत ख्याति जो है ना बनाई। इसके साथ वीआर गोविंद राजा पिल्लई का भी आज बर्थडे है। ये एक वायलिन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे जो कि वायलिन बहुत ही अच्छा बजाते थे और इन्होंने वायलिन बजा के कुछ रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। इसी के साथ मैं आज आप लोग को ये भी बता देती हूँ कि तीन ऐसे राइटर्स का भी आज बर्थडे है जिनका नाम आपने सुना होगा। एक है रमन लाल देसाई जो कि गुजराती राइटर हैं हमारे देश के। इसी के साथ हासूर जी जो कि इंडियन राइटर में से एक हैं। और अंतिम नाम है मदना पल्ले जिन्होंने स्पिरिचुअल फिलॉसफी बड़े लेवल पे लिख रखी है। तो ये तो आज के कुछ स्पेशल लोगों के बर्थडेज़ की बात हो गई, यानी कि आज 12 मई है और 12 मई कुछ खास लोगों के लिए खास हो जाती है। अब बात करती हूँ एक प्यारी सी कहानी की, जिस कहानी को पढ़ के मेरा दिल भी थोड़ा सा पसीज सा गया। और पहले प्यार की पहली कहानी है, तो आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं ना प्यार का जो पहला खत होता है वो बहुत आराम से लिखा जाता है और पहले प्यार का मज़ा भी कुछ और होता है। पहला प्यार हमेशा आपको एक कहते हैं ना डिवाइन फीलिंग दिलाता है। अब आप लोग बताइएगा कि क्या आपके अंदर कोई डिवाइन फीलिंग किसी के लिए कभी आई है प्यार के बारे में जानने के बाद। वैसे मैं अगर कहूँ तो मुझे किसी की भी प्यार की कहानी सुनने के बाद एक अलग सी फीलिंग आ जाती है, अंदर से इंट्यूशंस आते हैं और मन करता है कि दुनिया में हर किसी का प्यार ऐसा होना चाहिए। अगर प्यार ट्विस्ट एंड टर्न के बाद अपने मंजिल तक पहुँच जाता है। और अभी हाल ही की एक मैं रियल इंसिडेंट बताना चाहती हूँ कि दो सोलमेट्स जिन्होंने आज के 50 साल पहले शादी के बंधन में बंधने का निर्णय लिया परिवार की रजामंदी से, एंड फाइनली दोनों शादी करके एक हो गए। थॉट्स अलग थे, हमारी जो उषा जी थी वो थोड़ा कम पढ़ी लिखी थी, पर हमारे शिवनाथ जी काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे, लॉयर थे दोनों में, लेकिन प्यार बहुत था। उनका कहना था कि शादी के 50 साल पूरे होने को हैं और उन्होंने कभी भी एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट नहीं किया, एक दूसरे की बातों में रजामंदी दिखाई, ये ना दिखाते हुए कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बल्कि ये दिखाते हुए कि वो दोनों एक दूसरे की हर बात की इज्जत करते हैं। 50 साल बीत गए और एक दिन ऐसा डार्क डे आया कि उषा जी उठी सुबह, टहलते वक्त उनकी धड़कनें रुक गई और इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनका अलविदा कहना जैसे लगता है एक रिमाइंडर कॉल था शिवनाथ जी के लिए कि अब तुम्हें भी आना है मेरे पीछे। महज 45 दिनों की दूरी और उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यहाँ पे गोंडा शहर के पास तरबगंज के रहने वाले दो बेस्ट कपल की, मतलब एक कपल जिसमें दो सोलमेट्स ने एक जिंदगी को जिया एक साथ और फिर अलविदा भी एक साथ कर दिया। और ये बहुत रिसेंट बात मैं बता रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि किसी का प्यार इतना अरसे तक चलता है और एक दूसरे का इतना सम्मान करता है। एंड आई होप हमें इस प्यार से ये तो सीखने को मिला कि हमें एक दूसरे के फैसलों की इज्जत करनी चाहिए। हमारा प्यार कहाँ तक जाता है ये तो हमारी डेस्टिनी बताएगी, पर हाँ एक दूसरे के जो कहते हैं ना कि भावनाओं की कद्र करना भी बड़ी बात होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप लोग को बताती हूँ एक कहानी जो पहले प्यार से शुरू हुई, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद मन कर रहा होगा ना कि प्यारा सा गाना सुन लिया जाए। हाँ मैं वही गाना सुनाऊंगी जिसको सुन के आपको भी लगे कि साथ हो तो ऐसा हो
नहीं तो भाई ना। तो चलिए चलते हैं।

गोंडा मैसल मसाला आरजे बिना वाला ऑन योर फेवरेट फ्रिक्वेंसी 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन, धड़कनों में प्यार का प्रवाह बरकरार है।

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है? जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या

0: हाँ भाई, अक्सर जो सिर्फ हमारा होता है उसे हम खो देते हैं, तब ऐसा लगता है कि यार दुनिया में मेरा तो कुछ है भी नहीं। जिस पे मैं हक जताता था या जताती थी वही मेरा नहीं हुआ। और कुछ ऐसे ही भावों के साथ ये कहानी भी आज आपको सुनाना चाह रही हूँ। कहानी किसी की है, नाम तो नहीं बताऊँगी, पर हाँ आप लोग को उसकी सारी फीलिंग्स सुनाऊँगी जिसने मुझे ये कहानी लिख भेजी है। काल्पनिक नाम बता देती हूँ, पूर्णिमा बनर्जी का है। और चलिए सुनते हैं इनकी कहानी। तुम्हार आई आंखी दूटी के जादू जाने, तुम्हारोई आंखी दूटी के जादू जाने, हाय ततो काछे ताने जतो दूरे जाई। अब सोच रहे होंगे ना आरजे बिना कौन सी भाषा बोल रही है। तुम्हारी इन आंखों में ना जाने क्या जादू है, जितना दूर जाती हूँ उतना पास खींची चली आती हूँ। बस इतना ही पढ़ा था मैंने और थर थर कांप उठी थी और उसकी तरफ देखते हुए कांपते स्वर में पूछा था, ये क्या है। उसके मुस्कुराते हुए जवाब में मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे घुमा दिया। मेरे दिल का हाल आगे पढ़ो ना, पर मैंने उस कागज़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वहाँ से भागकर अपने घर आ गई थी। भागते हुए मुझे इतना ही सुनाई दिया था, प्यार हो गया है तुमसे, प्यार सुन लो एक बार, प्यार हो गया है। हाँ, कहानी पूर्णिमा अपनी सुनाती हैं जब उनसे किसी ने आके अपने प्यार का इजहार एक खत के रूप में किया था और एक ही लाइन पढ़ के इनकी रूह कांप सी गई थी और मानो लग रहा था कि पूरी दुनिया अलट पलट सी गई है। नहीं, ये कोई कहानी नहीं, बस कुछ यादें थीं जिनके बारे में आज पूर्णिमा बता रही थी। पर कहते हैं ना, पहला प्यार कभी नहीं भूलते, इसीलिए शायद अभी तक ये भूल नहीं पाई। वो पड़ोस में ही अपने भाई के घर रहने आया लड़का, उस पंजाबी परिवार में पति पत्नी और एक नन्हा सा बच्चा था जिनके घर हमारा आना जाना लगा रहता था। एक दिन जब वो भाभी भाभी चिल्लाते हुए उनके घर के अंदर आई तो एक अनजान नौजवान को देखकर ठिठक गई। भाभी ने ही परिचय कराया कि बहना ये मेरा देवर है, आज ही आया है। एक रूढ़िवादी परिवार में जन्म लेने की वजह से शायद पूर्णिमा इन लड़कों से बात करना या लड़कों से बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसको देख के अलग सा खिंचाव महसूस होता था। जब भी पूर्णिमा अपने पड़ोस में भाभी के घर जाती तो ऐसा लगता कि वो निगाहें उसी को ढूंढ रही हैं और वो चाह के भी उन निगाहों से निगाहें नहीं मिला पा रही। क्या लगता है आपको, क्या दोनों के बीच का प्यार मुकम्मल होगा या बस चिट्ठी का फटना एक संकेत मात्र है कि प्यार अधूरा रहेगा। प्यार नहीं, तो चलिए सुनते हैं हम नवा मेरे फॉर दिस स्टोरी। स्टोरी कंटिन्यू रहेगी लेकिन इस गाने के बाद। आप लोग बताइएगा कि पूर्णिमा को उसका प्यार मिलना चाहिए कि नहीं। चैट रूम में आपके आंसर्स ही इस कहानी को मुकम्मल करेंगे।
1: तुम भी मेरे लिए पागल थी।

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyways, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही था।

तेरी सांस चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। जी हाँ, पूर्णिमा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। पूर्णिमा का भी प्यार शायद उन्हें नहीं मिलने वाला था। वो आए दिन अपने पड़ोस में भाभी के घर जाती थी, काफ़ी घंटों बातें करती थी और उनके देवर को देखने का बहाना ढूंढती थी। पर पूर्णिमा ये इस बात से अनजान थी कि वो बंगाली थी और उनकी भाभी का परिवार पंजाबी। दोनों के बीच में मेल तो कभी नहीं होने वाला था, पर कहते हैं ना, प्यार जो होता है ना, वो अट्रैक्शन की जो डोरियाँ हैं ना, वो मजबूत करता जाता है अगर आपके मन में थोड़ी सी भी चिंगारी हो। मतलब पेट्रोलियम वगैरह सब एक जगह, लेकिन प्यार की ताकत, प्यार की एनर्जी, प्यार का कंबशन, ओ माय गॉड, एक तरफ। जी हाँ, यहाँ पूर्णिमा जी की लाइफ में भी प्यार ऐसे ही धमाका करने वाला था और धीरे धीरे करते करते एक महीने तक एकदम आना जाना था। वो हर वक्त मौका ढूंढती थी भाभी के घर जाने का और उन निगाहों को देखने का। एक दिन जब वो उनके घर गई तो पता चला भाभी घर पे नहीं थी और उनके बेटे के साथ जनाब खेल रहे थे। ऋषि नाम था उनका। ऋषि से पूर्णिमा ने कहा भाभी नहीं है। बोला नहीं। इतना सुनते ही वो पीठ दिखा के निकलने की कोशिश कर रही थी, तभी ऋषि ने कहा आप मुझसे डरती हैं क्या? पूर्णिमा ने कहा नहीं तो, आप मुझसे बात क्यों नहीं करती हैं? बस ऐसे ही, क्योंकि आप पंजाबी हो। ये जवाब साफ कह रहा था कि मैं तुम्हें चाहना तो चाहती हूँ, लेकिन ये कहते ना कि रिलीजन की डोरियाँ अलग कर रही हैं हमें। तो ऋषि ने जवाब दिया तपाक से कि मैं पंजाबी ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे बंगला आती है, लिखनी पढ़नी बोलनी सब। इतना सुनते ही पूर्णिमा ने जवाब दिया अच्छा, अगर इतना आता है तो मुझे कुछ लिख के दिखाओ और पढ़ के भी बताओ। ऋषि ने टेबल से पेन पेपर उठाया और कहा दो मिनट रुको बस, और जल्दी से कुछ कागज पे लिख डाला। लिखा वही शब्द जो मैंने पहले पढ़े, तुम्हाराई आंखी दुटी के जादू जाने, हाय ततो काछे ताने जत दूर जाई। जी हाँ, और ये पढ़ते ही शर्म से लाल हुई पूर्णिमा उस कागज के टुकड़े करके भाग के घर आ गई। फिर उनके घर जाने की हिम्मत नहीं की, पर जनाब यहाँ हार नहीं मानने वाले थे। हर दिन कुछ देने के बहाने, मिलने के बहाने, किताब मांगने के बहाने पहुँच जाया करते थे। कभी संदेश खाने के बहाने, कभी आंटी के हाथ की चाय पीने के लिए। पर पूर्णिमा ने जवाब देना और बात करना बंद सा कर दिया था। वो बात नहीं करना चाहती थी। उनका मानना था कि नहीं, इस रिश्ते को हवा देना एक गलती होगा, एक हफ्ते का दिन बीता, नाराजगी भी खत्म नहीं हुई। फिर ऋषि ने एक दिन कॉलेज जाते समय उसका रास्ता रोक के एक लेटर और गुलाब उसे दे दिया। पूर्णिमा ने भी उसे चुपचाप बैग में रख लिया, क्योंकि वो तमाशा नहीं करना चाहती थी। पर वो इस बात से बिल्कुल रूबरू थी कि अगर उसने इस रिश्ते को पहचान दी भी तो उसे मौका नहीं मिलेगा आगे निभाने का। उसके परिवार वाले तुरंत उसकी शादी कर देंगे और शायद उसे ऋषि को ही भूलना पड़ेगा। घर आई तो एक्साइटमेंट सिर्फ उस लेटर को पढ़ने की थी। जैसे ही लेटर पढ़ना शुरू किया, आंखें भीग गई, आंखों से आंसू गिरते गए और चिट्ठी पढ़ती गई। चिट्ठी में साफ लिखा था कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो सिर्फ उसी के लिए यहाँ रुका है। अगर वो हाँ में जवाब देगी तो यहीं पर रुकेगा वो और आगे पढ़ाई यहीं करेगा, और वो दोनों परिवारों को खुद मनाएगा। उसने ये भी कहा था कि वो सिर्फ प्यार नहीं, वो शादी करना चाहता है।
उसे पूर्णिमा की आंखों से प्यार हो गया था, उसके भोलेपन से प्यार हो गया था, उसकी सादगी से प्यार हो गया था, उसके घुंघराले बालों से प्यार हो गया था। पूर्णिमा ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा इस खत को लेके अपनी भाभी के घर आ गई। आनमन हर बात वो अपनी भाभी को बताती थी। कहने को तो पड़ोसन थी पर हम उम्र होने के कारण वो हर बात बताती थी। जैसे ही उसने भाभी को ये बताया, भाभी ने खुशी से उसे गले लगा लिया और कहा कि क्यों नहीं, इस रिश्ते को तो आगे बढ़ना चाहिए। इधर पूर्णिमा के पिता ने कमरे में कुछ ढूंढते हुए इस लेटर को देख लिया और अगले ही दिन अपने गांव असम जाने का फैसला किया। किसी को नहीं पता कि क्यों जाने वाले थे उसके पिता गांव। इधर हाँ करके ऋषि को वो बहुत खुश थी, उसकी भाभी की तरफ से और ऋषि की तरफ से उसको सपोर्ट मिला, जिस वजह से उसने हाँ कर दिया था। पर घर आते ही पता चला कि उसके पिता बोल रहे हैं कि कल असम जाना है, गांव पे कुछ जरूरी काम है। किसी को नहीं मालूम था क्या होने वाला है। सबने तैयारी की और इसने भी ऋषि को बताया कि हम कुछ दिनों के लिए गांव जा रहे हैं, आऊंगी फिर मिलूंगी। गांव पहुंचने के बाद सब कुछ बदलने वाला था। क्या बदलने वाला था अब आप सोच के बताइए। हाँ, पूर्णिमा की जिंदगी में वो दिन आने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। घर जाते ही उसके पिता ने उसका रिश्ता उसके गांव में ही एक जानने वाले रिश्तेदार के घर कर दिया था। उनके पहुंचने के 2 दिन बाद ही वो लोग सगाई करने आ गए, सगाई हो गई और 1 हफ्ते बाद ही शादी की तारीख भी निकाल ली गई। पूर्णिमा को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अपनी माँ से बात की कि माँ मेरी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। उसकी माँ ने कहा मुझे नहीं पता, तुम्हारे पिता मुझसे बात नहीं कर रहे। एक दिन हिम्मत करके उसने अपने पिता से बोला कि क्यों, मुझे क्यों ये सजा दी जा रही है, अभी तो मेरी पढ़ाई भी नहीं पूरी हुई। उसके पिता ने बस यही जवाब दिया कि समय के साथ हर चीज जरूरी है, तुम पढ़ाई बाद में भी कर सकती हो। उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि उन्होंने उस चिट्ठी को पढ़ा है। वो अपने पापा के पैर पकड़ के रोती रही पर पूर्णिमा के पिता ने उसकी एक ना सुनी। उसके पास मोबाइल भी नहीं था क्योंकि उसके गांव में नेटवर्क नहीं हुआ करता था। वो ऋषि को एक कॉल तक नहीं कर पा रही थी और बेचैनी से उसका दम घुटने लगा था। ना चाहते हुए भी उसे शादी के मंडप में बैठना पड़ा था और 15 दिन के अंदर उसकी जिंदगी क्या से क्या हो गई थी। उसने अपने प्यार के साथ कुछ पल भी नहीं बिताए थे। पूर्णिमा की शादी के बाद उसकी विदाई हुई। 5 दिन बाद वो घर आए क्योंकि उसके सेमेस्टर एग्जाम थे और वापस ये लोग दिल्ली आ गए थे। दिल्ली आने के बाद ऋषि ने पूर्णिमा को लाल साड़ी में मांग में सिंदूर जब देखा, उसे लगा मानो किसी ने उससे पूरी दुनिया छीन ली। अगले ही दिन वो दिल्ली से वापस पंजाब आ गया, बिना कुछ कहे बिना कुछ पूछे। ये प्यार की कहानी यहीं रुकने वाली थी, किसी को नहीं पता था। शादी के आज कई साल हो गए पूर्णिमा को पर उसका प्यार अभी भी ऋषि था, ऋषि है, ऋषि रहेगा। अब आप बताइए कि क्या पूर्णिमा ने कोई गलती की थी, क्या उसे उसका प्यार नहीं मिलना चाहिए था, आप बताइए। पर जो भी है वो यही है, पूर्णिमा को उसका प्यार नहीं मिला। ये अधूरा प्यार भी बड़ा कमबख्त होता है, जब तक सांसें चलती हैं तब तक दर्द देता ही रहता है, भले आप कितना आगे भाग के क्यों ना चले जाओ। गुड इवनिंग आशु जी, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर अ कप ऑफ टी। चलिए सुनते हैं पूर्णिमा के लिए प्यारा सा गाना।

आप लोग इस स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर पाए होंगे। हाँ, थोड़ी इमोशनल थी, पर क्या करें, रियल स्टोरीज ऐसी ही होती हैं। सच्ची कहानियाँ हमेशा सक्सेसफुल हों ये ज़रूरी नहीं। शायद आपकी ज़िंदगी में भी प्यार आपका मुकम्मल नहीं हुआ होगा, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों आखिर होता है। पर सच तो ये है कि ऐसा हाँ कई बार नहीं बार बार होता है। तो इसके बाद कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगी बॉलीवुड के बारे में। तब तक के लिए सुनते रहिए और ये प्यारा सा गाना फिल्म हमारी अधूरी कहानी से विद्या बालन इमरान हाशमी वाला सुन लीजिए। आवाज है जीत गांगुली की।

अच्छा आज खत की बात हुई है तो क्यों ना थोड़ा सा आप लोग को खत के बारे में और भी बता दूं कुछ। और कहाँ है सब लोग? सब लोग ना आज सोने में लगे हुए हैं। दीपांशी गुड इवनिंग, कैसी है आगे? और सोने के बाद जब उठते हैं ना सब लोग को एकदम कड़क चाय चाहिए होती है। फिलहाल कड़क चाय के साथ मैं आप लोग को कड़क कड़क सी बात भी बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने उनके बारे में तो पढ़ा ही होगा। अब कहेंगे किन के बारे में आरजे बिना बताने जा रही है, ऐसे नाम नहीं बताती हैं। अच्छा आपने ये गाना सुना है?

जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे मैं इस गाने की बात क्यों ही कर रही हूँ। जी हाँ, क्या बताऊँ, इस गाने की एक कहानी जो छुपी हुई है। आप लोग सोच रहे होंगे ये गाना तो लव सॉन्ग है, लेकिन ये एक दोस्ती की मिसाल भी है। अब आप सोचेंगे कैसे। ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। तो चलो इस गाने के पीछे की कहानी यानी कि इसकी लिरिक्स की कहानी सुना देती हूँ। क्या है इस लिरिक्स के पीछे की कहानी, अब आपसे कैसे छुपाऊं, बताती हूँ कि ये कहानी जो है ये दो दोस्तों के बीच की है। नॉस्टैल्जिया इस गाने में अलग सा कुछ, एक एक शब्द चीख चीख के कहता है कि कोई प्यार से अपने जुदा हो गया और अपने प्यार से अपने बिताए हुए पल वापस मांग रहा है उसके साथ। फिल्म आई थी इजाजत 1987 में, याद है आपको कि नहीं। 1987 में आई थी फिल्म इजाजत, और गुलजार जी ने गाना लिखा था अलगाव का, सेपरेशन का, जिसमें यादों का नॉस्टैल्जिया है। ये जो गाना है ये किसी भौतिक वस्तु को नहीं बल्कि प्यार की यादों को, बिताए हुए लम्हों को और टूटी हुई यादों को वापस मांगने का एक तरीका है। और इस गाने को आशा भोसले ने गाया है और आरडी बर्मन ने संगीतबद्ध किया। अब आपको बता देती हूँ कि इस लिरिक्स के पीछे की कहानी क्या है। ध्यान से सुनिएगा तो आपको याद आएगा कि इसमें इसका एक स्टेंजा है। अब आप बताइए मैं किस स्टेंजे की बात करूं। जिसने भी इस गाने को सुना होगा वो स्टेंजे के बारे में जरूर बताएगा।

सो चलिए मैं ही बता देती हूँ। इसमें जैसे कहते हैं ना, पहला वाला जो स्टैंजा है, पतझड़ के कुछ पत्तों के गिरने की आहट और एक अकेली छतरी में जब आधे आधे, अगला है तीसरा स्टैंजा, 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कंधे कातिल, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे कुछ, झूठ मूठ के वादे भी सब याद करा दूं, सब भिजवा दो मेरा वो सामान। तो इसमें 116 चांद की रातें जो है, ये बेसिकली आरडी बर्मन और गुलजार साहब के बीच में जो मीटिंग्स हुई थी उनको इसका जिक्र किया गया है कि 100 जो कहते हैं ना कि 16 चांद की रातें, दिमाग में आता है कि यार ये कौन सा

कैलकुलेशन है कि 116 चांद की रातें, ये लाइन कैसे बनी, इस लाइन के पीछे की स्टोरी क्या है। तो ये लाइन जो है दोस्ती को दिखाती है कि ये लाइन जो है बेसिकली ये गुलजार जी ने अपने दोस्त के साथ बिताई हुई एक कहते हैं ना कि पल को रिप्रेजेंट किया था। और सब लोग सोचते थे कि यार ये कैसे आ गया, किसने मिलने के समय को भी गिन के रखा हुआ था क्या ना। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो 116 चांद की रातें हैं ये एक मेमोरेबल मीट थी जिसमें इन्होंने किसी के साथ समय बिताया था, तो वो था गुलजार साहब ने जो कि आर डी बर्मन के साथ समय बिताया था। 105 साल सिनेमा को उन्होंने दिए थे। कोई स्टैटिक इसका नहीं बना था, पर हाँ जरूरत तो होती है ना अपनी मौजूदगी और अपने प्यार को और अपने एहसासों को दूसरे तक पहुंचाने की। तो बस ऐसे ही गुलजार जी ने अपने शब्दों से ही बता दिया कि वो कैसे मिल जाते थे एक दूसरे से। हो सके तो ये गाना सुना भी दीजिए, बिल्कुल सुनाऊंगी, क्योंकि किसी का प्यार टूटा है और टूटे प्यार के लिए कुछ कहना तो जरूरी है। गुड इवनिंग कमल नयन जी, कैसे हैं आप और क्या हाल है, और बाकी सारे लोग दिखाई नहीं दे रहे, बंटी गुर्जर जी एंड ऑल कहाँ हैं सारे, जल्दी से आ जाइए और अपनी प्रेजेंस से बताइए कि आपके साथ भी कभी कोई प्यार का अधूरा खत आपका रहा है या फिर आपके प्यार के पन्ने सारे कम्प्लीट हुए हैं। गुड इवनिंग सविता जी, आप भी बताइए कैसी हैं, क्या हाल है।

0: घर।
1: जी हाँ, बंजारे को घर तो मिल जाएगा, लेकिन यार ये खबरें सुन सुन के तो आजकल दिमाग खराब हो रखा है कि यार फिर से लॉकडाउन लग जाएगा क्या। क्या आप लोगों ने भी न्यूज सुनी? हाँ भाई, न्यूज सुन गई, सुन ली है। तो फिर चलिए देखिए, जो भी है प्रेजेंट टाइम में हम लोग तो सुन ही सकते हैं और सुन के कर सकते हैं। फिलहाल टेंशन जैसे लगता है कि पहले जैसा माहौल ना हो जाए यार, जैसे कुछ सालों पहले था। और अब तो जैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ में एडजस्ट करना सीख लेते हो ना, तो आपको बार बार एडजस्ट करने के लिए कहा ही जाता है। और मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा है। आप लोग बताइए कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। और मतलब जैसे कि मैंने आप लोग को एक कहानी सुनाई, और इस कहानी को सुन के आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि हाँ, एक गाने के पीछे ये स्टोरी थी। हम लोग ने सोचा कि प्यार की कोई दास्तान छुपी हुई थी। ना ना ना यार, ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे सोच से विपरीत हमारे आसपास होता रहता है, हमें पता ही नहीं चलता। और आप लोग बताइए कि आप लोग के मन में कोई सवाल है आपके प्यार को लेके, या आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जिसके प्यार ने उसको ऐसे ही साथ निभाने का वादा किया और वो उसको छोड़ के भाग गया, या उसकी किस्मत ने उसको मतलब एक ट्रेजिक एंड दे दिया। फिलहाल मैं तो ये जानती हूँ कि लाइफ में ट्रेजिक एंड आना हो तो सिर्फ और सिर्फ एक प्यार को मुकम्मल होने के बाद ही आना चाहिए। प्यार मुकम्मल ना हो उससे पहले ट्रेजिक एंड तो नहीं आना चाहिए। तो भाई जो भी अपील्स आ रही हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उस अपील को भी ध्यान से सुनते रहिए और देखिए जो चीज़ें हैं वो सपोर्ट करने में हम लोग कर ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, बाकी ईश्वर से हम निवेदन करेंगे कि ये जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सही हो जाएं जल्दी से जल्दी, लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, इंसान अपना अच्छा बुरा समझ सके, लड़ाई युद्ध ये सारी चीज़ें, मतलब मैं तो यही कहूँगी कि

प्रयास अगर करके देखें तो दुनिया में हर चीज़ सही हो सकती है, और इस प्रयास के लिए हम सभी को प्रयास करना पड़ेगा। और कल अंताक्षरी है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि कल अंताक्षरी में कुछ हम लोग नया करते हैं। नया मतलब कि कुछ इतिहास के पन्नों की धूल हटाते हैं और इतिहास से अंताक्षरी के कुछ साक्ष्य लेके आते हैं। गुड इवनिंग नागेश्वर, कैसे हैं? और चलिए इस प्यारे से गाने को सुन लेते हैं। मूवी थी एक विलन, और इस विलन में विलन जो था रितेश था, जिसको देख के लग ही रहा था कि विलन हो सकता है। श्रद्धा कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, दोनों की केमिस्ट्री मस्त थी, मूवी अच्छी थी, कुल मिला के लोगों को सेटिस्फाई किया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि यार एक बार तो रितेश को एक फिल्म में मार देते हैं विलन बना के, फिर दूसरी फिल्म में भी विलन बना के ले आते हैं, ये बात मुझे नहीं पसंद आई। फिलहाल चलिए देखते हैं कि नागेश्वर जी लिख रहे हैं, मेरे मन में एक सवाल है, प्यार हो जाता है तो पता कैसे चलता है? देखिए, प्यार होने के बाद आपको भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, हरदम किसी की याद सताती रहेगी, तो ये सारी चीज़ होंगी। एक सपोर्ट तो हम भी कर सकते हैं, सोना ना खरीदें। हाँ, सोना कौन खरीदने जा रहा है, इतना महंगा हो गया, और बिल्कुल हम लोग क्यों ही खरीदेंगे? ये सारी चीज़ें खरीद के हम अपनी जो करेंसी है उसको दूसरे कंट्री में नहीं जाने देंगे। फिलहाल चलिए सुनते हैं एक बढ़िया सा गाना और बंजारा तो आप लोगों ने सुन ही लिया है। फिलहाल मेरी तरफ से एनर्जेटिक गाना एक होना चाहिए, और एनर्जेटिक गाने की जब बात करते हैं तो कुछ गाने जो होते हैं ना, वो हाई बीट होने के साथ साथ हमारी भी एनर्जी को एकदम फुल टू हाई कर देते हैं। तो चलिए सुनते हैं ये हाई बीट वाला हाई गाना जो आपको और मुझको दोनों को कर देगा खुश।

भाई कौन कौन जिसका सर टकरा रहा है और टकराने के बाद डांस करने का कर रहा है, क्योंकि भाई जब दिमाग पे टेंशन बढ़ती है ना तो पैर चला लेने चाहिए और जिससे दिमाग का जो स्ट्रेस है ना वो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि भाई दुनिया स्ट्रेस में चल रही है और हम यहाँ पे चुल कर रहे हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं लकी हैं ऑफकोर्स, क्योंकि पनघट पे मधुबाला नाच रही है।

ऐसे ही ताल के साथ मिला के एनर्जी बढ़ाते रहिए और अपने धड़कनों के साथ अपने पसंद के गाने सुनने के लिए भी तैयार हो जाइए। और भाई मैं चाहती हूँ कि आज सबकी फरमाइश है हाई बीट्स वाली होनी चाहिए। हाँ मुझे पता है कि आपका मन हो सकता है कि कुछ और सुनने के लिए हो, लेकिन क्यों ना आज कुछ ऐसा सुन लिया जाए जिसको सुनने के बाद हर किसी का दिल कहे कि यार क्या सुनाया क्या सुनाया क्या सुनाया, वाह। तो भाई ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, जिससे कि आपके मन का स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाए। थैंक्स फॉर द हार्ट्स एंड द लव एंड द डांसिंग इमोजीज। आपको देख के लग रहा है कि आप थोड़ा खुश हैं, तो चलिए जिसको जिसको दूल्हा बनना है वो फटाफट से बन जाएगा। बस भगवान से दुआएं करते रहिए कि भाई दोबारा लॉकडाउन लगने के पहले आपके हाथ पीले हो जाएं। फिलहाल हाथ पीले होने के पहले मैं आपको बता देती हूँ एक और गाना जिसको सुन के मेरा मन हमेशा से डोल सा जाता है, और उस गाने को सुनाते हुए आरजी बीना लेती हैं आपसे इजाजत। मिलेंगे कल फिर से आप लोगों के साथ हाई एनर्जी अंताक्षरी वाली शाम के साथ, और ये गाना सुन के आप बताइएगा कि आपका भी मन कहीं बर्फीली जगह घूमने का करता है कि नहीं। तो चलिए गर्मी में ठंडी फीलिंग देने वाला ये गाना आप लोग के लिए।

क्यों आने लगा, क्योंकि आप सुन रहे हैं 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, स्टेट ट्यून आपके साथ ही, आपकी अपनी आरजे पीना, आपके शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे पीना वाला के साथ।

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। कैसे हैं आप सब, क्या है हालचाल और क्या है आज की शाम में खास खास खास बहुत खास बात, जरूर बताइएगा मुझे चैट बॉक्स में। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। क्योंकि शो आपका, जज्बात आपके, गीत आपके, ये आर जो सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा के लिए आपकी है ना दोस्तों। सो अभी हमने इंजॉय किया है गाना मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, और यही हम सब सोचते हैं ना जब हम कुछ करते हैं, और ये समाज, ये चार लोग जब अपना मुंह खोलते हैं, उस पे टिप्पणियां करते हैं, जब उनकी टिप्पणियां हम सुनते हैं तो हम यही सोचते हैं ना दोस्तों कि क्या है, मैं ही करता हूँ तभी सब बोलते हैं, सब करते हैं तब मैं तो नहीं बोलता हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसा ही होता है कि जब सब करते हैं तो हम भी बोलते हैं, तो बोलने के लिए भगवान ने जुबान दी है और हम बोलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे दोस्तों। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो गीत आपके नाम से की महफिल में स्वागत है आप सभी का। आशु मिश्रा जी लखनऊ से, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा, विजय पाल यादव जी ललोवा लखीमपुर खीरी से, दीपक जी हथियागढ़ गोंडा से, दीपांशी तिवारी, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, मीन्स हमारे जग्गू दादा द ग्रेट सिंह साहब राजस्थान से, सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, धर्मेंद्र मोहन जी आवास विकास गोंडा से, नागेश्वर धाकड़ आपका भी स्वागत है, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। राजेश मीना जी, मुमताज अंसारी जी, निब्बर जी स्टे ट्यून्ड। सो दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, आई मीन हमारी पहली फरमाइश की तरफ। और पहली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, और उनको सुनना है गाना मस्कारा। हाँ, वैसे मुझे मस्कारा बहुत पसंद है दोस्तों, क्योंकि मेरे जो पलके हैं ना वो ब्राउन कलर की हैं, तो मैं जब बाहर धूप में निकलती हूँ तो ऐसे लगता है कि मेरी आंखों में पलके हैं ही नहीं, तो मुझे मस्कारे की बहुत जरूरत पड़ती है। ऑल द मैं तब भी बंदरिया ही लगती हूँ। सो फिलहाल इंजॉय कर लेते हैं ये वाला गाना और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को इंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। Now, आपकी अपनी आज सिंपल इज नॉट सो सिंपल।

मोहब्बत की बातें ना सबको समझ में नहीं आती हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने आशु मिश्रा जी? हाँ हाँ हाँ, सो हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारी आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर, जो कि है लखनऊ से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, है ना। बढ़ेंगे बढ़ेंगे, चलेंगे चलेंगे, अरे फुर्सत के लम्हे अभी बहुत सारे हैं, क्योंकि ये महफिल तो बहुत देर तक अभी रहेगी, है ना। 9:30 बजे तक बस एक दूसरे के पसंदीदा नगमों को एंजॉय करेंगे, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि रोज़ हम नगमों के साथ में जज्बात को भी एंजॉय करें, है ना। सो एक दूसरे की जज्बात को हम साझा कर सकते हैं चैट बॉक्स में, इतना भी मुश्किल नहीं है दोस्तों। और अगर दिल के अरमा निकल जाते हैं चैट बॉक्स में तो दिल तो ऑब्वियसली हल्का हो ही जाएगा। और वैसे भी मैं आप लोग के पास में आती हूँ, तो अगर दुखी मन से आती हूँ तो तब भी अपना मन हल्का कर लेती हूँ, खुशी मन से आती हूँ तो ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ। कुल मिला के अगर मैं अपना मन हल्का कर सकती हूँ तो व्हाई नॉट, हाँ हाँ हाँ, सो व्हाई नॉट यू। सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा की। और अजय मिश्रा को अब बहुत दिनों बाद समझ में आया है कि ये दुनिया हसीनों का मेला है, तो इनकी समझदारी के लिए हम बहुत सारी तालियां बजाएंगे और इनके लिए एंजॉय करेंगे ये वाला गाना, दुनिया हसीनों का मेला। और मेले में ये दिल अकेला, आपका दिल तो अकेला नहीं है, आपके आसपास बहुत हसीनाएं रहती हैं। आई नो वेरी वेल।

एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए। अरे एक दोस्त चाहिए, बताइए तो दोस्ती के लिए, मैं आपको 1000 दोस्त पहुंचा दूंगी आपके पास में। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक दोस्तों की कतार लगी रहेगी। बस आप किसी को समोसा खिला देना, किसी को चाउमीन खिला देना, किसी को क्या और क्या होता है पिज्ज़ा खिला देना, किसी को चाय ही पिला देना, और कोई तो होगा कि सुट्टे पे ही काम चला लेगा। ऐसे ही करते रहिएगा दिन भर में, ऐसे ही प्रतिक्रियाएं करते रहिए। एक दोस्त नहीं आपको 1000 दोस्त मिलेंगे। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा जी, ज्ञान की बात बताई है मैंने, सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश बिना किसी देरी के। और हमारे पास में अगली फरमाइश है विजय पाल यादव जी की ललहुआ लखीमपुर खीरी से, और उनको सुनना है गाना तेरे होंठों के दो फूल प्यारे प्यारे। आहा, पहले होठों के दोनों फूल प्यारे प्यारे लगते हैं, फिर जो सर है ना वो दर्द, सर में दर्द होने लगता है, उसी होठों के दो फूल प्यारे प्यारे से जब आपके लिए, उनके मुखारबिंद से जब आपके लिए प्यारे प्यारे शब्द भी निकलते हैं ना, तो आपको और अच्छा आता है, और फिर आओ आपको और मज़ा आता है। और फिर उसके बाद में आप क्या करते हैं, उसी सरदर्द से दूर होने के लिए, उसी होठों के दो फूल प्यारे प्यारे बंद करने के लिए आप चाहें तो आप फेविकोल ग्लू लेके आएंगे और उसको चिपका भी देंगे। आप चाहेंगे कि ये जो होठों के दो फूल प्यारे प्यारे हैं वो खुले ही ना क्यों, सही कहा ना मैंने। फिलहाल आज ऐसा मेरे साथ हो रहा है क्योंकि ना जाने क्यों नॉन स्टॉप आज मेरा मुंह नहीं बंद हो रहा है, तो मैं अपनी बकबक को करती हूँ स्टॉप और इंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। विजय पाल यादव जी की फरमाइश है ललहुआ लखीमपुर खीरी से, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे। ओ माय गॉड, ये गाना अगर मुझे गाना होता ना तो मैं 1000 बार मिस्टेक करती दोस्तों।

आंखों के दो फूल प्यारे प्यारे मेरे रातों के चमकते सितारे हमने एंजॉय किया है लता जी की और मुकेश जी की आवाज में। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा विजय पाल यादव जी की फरमाइश पर जो की है ललहुआ लखीमपुर खीरी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों दीपक जी की हथियागढ़ गोंडा से। दीपक जी को हथियागढ़ गोंडा से सुनना है गाना माहिया तेरी कसम। सो एंजॉय करते हैं घायल का ये गाना हमारे दीपक जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

सो दोस्तों, ये गाना हमने एंजॉय किया है हमारे दीपक जी की फरमाइश पर, जो कि है हाथिया गड़गोंडा से बढ़ेंगे चलेंगे चलेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम एडवोकेट भूपेंद्र कुमार सिंह जी, आवाज विकास गोंडा से आपका स्वागत है। और कमल नयन जी, स्टे ट्यून्ड। इसी के साथ में दोस्तों, किसी ने कुछ अर्ज किया है तो इरशाद इरशाद जरूर करिएगा, और बिल्कुल करिएगा, क्योंकि यहाँ मेरी तारीफ हुई है। हाँ हाँ, सो तारीफ के पुल किसको अच्छे नहीं लगते। मुझे तो लोगों को राई के पहाड़ नहीं अच्छे लगते हैं, मुझे तो तारीफ के पहाड़ भी अच्छे लगेंगे। क्यों, चंद मिनट की, चंद सेकंड की खुशी अगर आ रही है कहीं से तो बटोरने में क्या ही जा रहा है ना दोस्तों। सो द ग्रेट सेन साहब का कहना है कि दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, जैसे दिल को धक धक जिंदा रखती है। आ जाते हैं शाम ढले हम दोस्त यहाँ, हम ऐसों को आपकी आवाज जिंदा रखती है। जैसे ही चुप होते हैं आप, मर जाते हैं हम। अच्छा जी, जैसे ही चुप होते हैं आप, मर जाते हैं हम, कुछ लोगों को आपकी बकबक जिंदा रखती है। आए हाय, बहुत बहुत शुक्रिया द ग्रेट सीन साहब। सो एंजॉय कर लेते हैं ऐसे ही बहुत कमाल की फरमाइश। दीपांशी तिवारी को सुनना है गाना ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो ना जाए। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही दुख भरा, बहुत ही दर्द भरा गाना, लेकिन हम सबके दिलों में बसने वाला गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, मुझे तो ये गाना बहुत पसंद है सच में।

सो दोस्तों, हमने एंजॉय किया है ये सदाबहार नगमा, ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो ना जाए, और इसकी फरमाइश हमारे पास में आई थी दीपांशी तिवारी जी की तरफ से। दोस्तों, ये गाना ऐसे नहीं लगता है कि एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही मीठी सी वार्निंग दे रही हो और उसके साथ में बेतहाशा मोहब्बत भी, ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो ना जाए। वैसे मोहब्बत की तो सबसे खूबसूरत बात आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल को यही लगती है कि इसमें कितनी भी सावधानी बरत लो, कितने भी प्रिकॉशन ले लो, ये मोहब्बत हो ही जाती है। और अक्सर हम जिससे सबसे ज्यादा दूर भागने की कोशिश करते हैं, जिसके हम क्लोज आना ही नहीं चाहते हैं, दिल आपको घुमा फिरा के उसी के करीब लाता है और रोक देता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं, दिल से हार जाते हैं। क्यों? सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। लेकिन उसके पहले, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी से मिलते मिलते कब दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, आपको खुद ही नहीं पता चला? हाँ, जरूर मुझे चैट बॉक्स में बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना। जग्गू दादा को मींस जुगल किशोर वर्मा जी को सुनना है गाना सलमा पे दिल आ गया। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

सलमा पे दिल आ गया हमने एंजॉय किया ये गाना। और जग्गू दादा का कहना है कि अरे मैडम जी ये वाला गाना नहीं था। अच्छा जी, अगर ऐसा वाला गाना नहीं था, ये वाला गाना नहीं था, तो कोई बात नहीं, अब आपके लिए तो हमने एंजॉय कर लिया और डेडिकेट कर देती है आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल आपको ये वाला गाना। अब तो खुश है ना जग्गू दादा आप। सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है द ग्रेट सेन साहब की, उनको सुनना है गाना। आजा मैं हवाओं में बैठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। तो पहले हवा लेके आओ, फिर हवा पे बिठा के लेके चलना, तब आपकी दोस्ती कबूल की जाएगी। स्टे ट्यून्ड।

सो हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा द ग्रेट सीन साहब की फरमाइश पर बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, लेकिन इसके पहले आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल कुछ पेश करना चाहेगी जो हमारे एक लिसनर की तरफ से है जिनका नाम है नागेश्वर धाकड़। और नागेश्वर धाकड़ का कहना है कि दरवाजे पर दस्तक देने वाला हर कोई अपना नहीं होता, ढल जाती है शाम लेकिन अरमान कम नहीं होता। कितना भी मार कर देख लो किसी की, ओहो कितना भी मर कर देख लो, शायद आपने गलती से मार लिख दिया होगा, कितना भी मर कर देख लो किसी की मोहब्बत में, जिसकी फितरत हो बदलने की वो कभी अपना नहीं होता। आपने दुनिया की बहुत ही सच्ची और बहुत ही कड़वी लाइन लिखी है, लेकिन सब तो एक जैसे नहीं होते हैं ना। हर राह में ठोकर लगे ये जरूरी तो नहीं, हर इंसान पत्थर दिल हो ये मजबूरी तो नहीं। किसी की फितरत अगर बदलने की है तो कोई निभाने की भी जिद रखता है। मोहब्बत में हर कहानी अधूरी रहे ये नागेश्वर धाकड़ जी जरूरी तो नहीं। सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की, और उनको सुनना है गाना हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी ना पूछा कौन हो तुम। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

आंखों ने आंखों में देख के ये पहचाना कौन हो तुम, और हमने तुमको दिल ये दे दिया ये भी ना पूछा कौन हो तुम। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक जी की आवाज में, गुनाह मूवी का, सिर्फ और सिर्फ मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से। सुरेंद्र यादव जी को गौरा चौकी से सुनना है गाना ले तो आए हो हमें सपनों की गांव में। सो एंजॉय करते हैं रिवाइव वर्जन ऑफ दिस ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र यादव की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। प्रमोद श्रीवास्तव जी गोंडा से आपका स्वागत है, और आपके फरमाइशी गीत का भी इंतजार है। स्टे ट्यून्ड।

आए हो हमें सपनों के गांव में। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर जो कि है गौरा चौकी से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से। धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना दगा बाजरे। सो एंजॉय करते हैं दबंग 2 का ये वाला गाना सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। वैसे आजकल सबके नैना दगाबाज होते हैं ना। पहले तो लोग नैनों से झूठ नहीं बोल पाते थे, अब तो लोग नैनों से भी झूठ बोल लेते हैं ना। वाह।

0: सो तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा दबंग 2 का, सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर, जो की है आवाज विकास गोंडा से। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है राजेश मीना की, और राजेश मीना को सुनना है गाना आपके प्यार में हम सवरने लगे और टूट के बाजू में बिखरने लगे। Stay tuned. ऐसे ऐसे गाने क्यों प्ले
1: करवाते हो? मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी।
2: मैं बर्बाद होना चाहता हूँ।
0: So, चलिए इस गाने के थ्रू इस बर्बादी को देखते हैं। Stay tuned. I love this song.

दोस्तों एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की, और नागेश्वर धाकड़ को सुनना है आज मंगलवार की प्लेलिस्ट से डिवोशनल गाना बजरंग बली वाला गाना। सो एंजॉय करते हैं हनुमान जी का ये भजन डिवोशनल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर।

खुश करना आसान होता है। सो संकट मोचन हनुमान जी के लिए हमने एंजॉय किया ये डिवोशनल गाना नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इसके पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि इस फरमाइशी गीत की उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो एंजॉय करते हैं एडवोकेट भूपेंद्र कुमार सिंह की फरमाइश, और उनको सुनना था देशभक्ति वाला गाना, मीन्स पैट्रियोटिक सॉन्ग। सो एंजॉय करते हैं भूपेंद्र कुमार सिंह की फरमाइश पर राजी मूवी का गाना ए वतन। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं सीधे 9 बजे।

0: पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। NEET UG परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष CBI टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। NEET UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित NEET UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को NEET UG परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीति स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने SP वेलुमणि को ऑल अन्ना DMK पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक S कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉ शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसको कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
2: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
3: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करें। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
4: आईसीसीआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसएसआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
5: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
1: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिमबोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान सिहा और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटन्स ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए के mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो परमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों, हमने एंजॉय किया बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले मेरे एक लिसनर ने क्या खूब कहा है कि तू बैठ सामने मैं इश्क का इजहार करता हूँ, तू बैठ सामने मैं इश्क का इजहार करता हूँ, तू मांगे चांद मैं तारे भी तेरे नाम करता हूँ। कभी नाराज मत होना मुझसे, कभी नाराज मत होना मुझसे, मैं तेरी चाहत की जंजीरों में खुद को गिरफ्तार करता हूँ। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है विशाल बेदर्दी की, और विशाल बेदर्दी को सुनना है गाना प्रेम की नैया है राम के भरोसे, और अपनी भी नैया को प्यार पार तू लगा दे। तो एंजॉय करते हैं जब प्रेम की गजब कहानी का ये वाला गाना सिर्फ और सिर्फ विशाल बेदर्दी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

काम के भरोसे अपनी भिनैया को पार तो लगाई दे, हमने एंजॉय किया है ये वाला गाना। विशाल बेदर्दी की फरमाइश बनाओ, लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और बिना किसी देरी के बढ़ेंगे फटाफट से हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है कमल नयन की, और कमल नयन को सुनना है गाना तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। तो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना तेरे नाम का टाइटल ट्रैक, उदित नारायण की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में, हमारे बहुत ही खूबसूरत से कमल नयन जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम, हमने एंजॉय किया उदित नारायण की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी हमारे कमल नैन जैसे कमल नैन की, और अगली फरमाइश हमारे पास में है सिर्फ और सिर्फ अनिल शास्त्री की गोरखपुर से। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम आवाज विकास गोंडा से, रवि जी आपका स्वागत है। और अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल शास्त्री की गोरखपुर से, उनको सुनना है गाना तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। सो एंजॉय करते हैं लता जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड। जहां वफा ना मिले वहां नजर अपने आप खफा हो जाती है दोस्तों।

0: सो दोस्तों, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई और खता बख्श दो गर खता हो गई। हमने एंजॉय किया लता जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। गजल अनिल शास्त्री जी की फरमाइश पर जो की है गोरखपुर से, बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है नीरू सोनी की और उनको सुनना है गहरा हुआ। सो एंजॉय करते हैं धुरंधर का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा नीरू सोनी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।
1: तू अगर मेरी ये हवाएं,
0: काश ये कहने वाला हमें भी कोई मिले ना दोस्तों।
1: सारी राहें तेरी तू अगर,
0: बस लोग कहते हैं शायद, कुछ करते भी हैं, कुछ होते हैं करने वाले। स्टे ट्यून्ड।

सो गहरा हुआ धुरंधर का अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना हमने एंजॉय किया है दोस्तों। नीरू सोनी की फरमाइश पर बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है राकेश वर्मा की, उनको सुनना है गाना उदित कुमार सानू की आवाज में, तुम्हारी नजरों में हमने देखा। सो एंजॉय करते हैं राकेश वर्मा की फरमाइश पर ये वाला गाना जो कि है गोंडा से, स्टे ट्यून्ड।

तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। हमने एंजॉय किया है आशा जी और कुमार सानू की आवाज में ये बहुत ही रोमांटिक सा नगमा। राकेश वर्मा की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, जो की होगी हमारी आज की आखिरी फरमाइश। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में अगली और आखिरी फरमाइश है सुरेश कुमार जी की चौक से, और उनको सुनना है बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। सो एंजॉय करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना, और इसी के साथ में आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहेगी आपसे अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। So guys, have a very, very, very great night. Take care of yourself and your family as well. Someone special का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर, वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बे इंतहा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, मिलते हैं।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
5: और जेंट्स के लिए,
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
11: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
12: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
13: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
12: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान 89.6 FM। शाम का सलाम कबूल करें आप, और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जी हाँ, और यादें ही तो रहती हैं साहब। और हमारे साथ भाई बहुत से लोग जुड़ चुके हैं, क्या बात है। और पहला संदेश हमको प्राप्त हुआ है आज नागेश्वर धाकड़ जी का। गुड इवनिंग आर्य मनोसर जी, आपको भी शुभ संध्या। और द ग्रेट सेन साहब मेरे पास है, सविता शास्त्री जी उपस्थित हमारे साथ जी। प्रणाम करते हैं आपको, चरण स्पर्श। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी जी। मनीष शर्मा जी हमको दिखाई दे रहे हैं भाई, क्या बात है। हमारे साथ अनिल शास्त्री जी हैं, प्रणाम है चरण स्पर्श दादा आपको। और द ग्रेट सेन साहब हैं, द गुड इवनिंग डियर आर्य मनोसर, आपको भी प्रणाम है द ग्रेट सेन साहब। मनीष शर्मा जी अपना सपना, मनी मनी गुड इवनिंग मनुष्य वेलकम जी। हाँ, नज़र नज़र ने नज़र को नज़र मिलाते नज़र से देखा, नज़र नज़र की नज़र मिली तो नज़र चुराते नज़र को देखा, क्या बात है भाई। और मनीष शर्मा जी को गीत बहुत पसंद आया है, इसलिए बहुत धन्यवाद आपको। और इसके पश्चात जी हाँ, हम रात का समय साहब, अब शाम ढलने को है, और मैं बोलता हूँ कि रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है। रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात कुछ फूल खिलाने के लिए आती है, रात बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है, रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती है फकत चाहने वालों के लिए। तो चाहने वालों की इस महफिल में आप सभी का अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है जी हाँ। और चलिए, अब जब बात भूलने की बात हो गई थी, तो क्यों ना एक बहुत ही प्यारी सी गज़ल मुझको याद आ रही है भूलने पर, और आपको वो गज़ल सुनाते हैं। उसके बाद आपसे बात करेंगे कि आज हमारा मुद्दा क्या रहेगा। जी हाँ, कल हमने बात की थी कैफी आदमी साहब के बारे में, आज हम आपको उनकी वो गज़लें सुनाएंगे जो भिन्न भिन्न गज़लकारों ने गाई, और क्या सी थीम, कौन सी थीम लेकर वो किस गज़ल पर गए, और ऐसा क्यों लिखा उन्होंने अपनी उस गज़ल में। कैफी आदमी साहब की गज़लों की आज चर्चा करेंगे। फ़िलहाल ये एक गज़ल जो बहुत अच्छी है, स्वर आप पहचान लेंगे, बहुत ही मीठी आवाज़ है, और भूली बिसरी एक कहानी। चलिए, खैर वो भूले बिसरे लोग हैं, और हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज यहाँ से। इसके बाद आपसे मिलते हैं, फिर सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप

जी हाँ, बात कर रहे हैं कैफी आदमी साहब के लिखी हुई गजलों के बारे में। कहा जाता है कि वो कुछ माओ की विचारधारा से, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित कवि रहे। कल मैंने उनका एक गीत आपको सुनाया था, हो कि मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, दर्द चुपके से दवा जान के खाया होगा। और वो लिखते हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। उन्होंने ही लिखा, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं। उनकी ये उनका लिखा हुआ एक बहुत ही प्यारी गजल है, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वो कहते हैं कि कोई कहता था समंदर हूं मैं, कोई कहता था समंदर हूं मैं, और मेरी जेब में कतरा भी नहीं। लोग कहते थे आप तो समंदर हैं, और उनकी जेब में एक कतरा तक नहीं। उन्होंने लिखा कि आज सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, हर कदम पर उधर मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए, रह गई जिंदगी दर्द बनकर, दर्द दिल में छुपाए छुपाए, दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, याद इतना भी कोई ना आए। जी हाँ, और जब किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार होता है जो आपकी महफिल की शान होता है, तो आप कहते हैं कि चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है, आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, आज की रात बड़ी देर के बाद आई है। जी हाँ, तो इस्तकबाल कुछ इस प्रकार से किया जाता है कुछ खास लोगों का, कि आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, आज की रात बड़ी देर के बाद आई है। और धर्मेंद्र मोहन जी भाई बहुत प्यारे होता है, नमस्कार, और कल लेट हो गए थे, छोटे भाई की हैंड राइटिंग नहीं पढ़ा आपने, क्या देर आने की। बिल्कुल मैंने कल पढ़ा था धर्मेंद्र मोहन जी, आप शायद आपने ध्यान न दिया हो, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप कुछ लिखें और हम आपकी हैंड राइटिंग न पढ़ें, क्योंकि आप तो धर्मेंद्र भी हैं और साथ साथ मोहन भी हैं। अब सोचिए, मोहन से बचकर कौन जा सकता है, और धर्मेंद्र से तो एक ज़माने में पूरी दुनिया डरती थी, जो फिल्मी जगत के विलन होते थे, और वो उसी प्रकार के डायलॉग भी बोलते थे। बहरहाल, उनके बेटे सन्नी देओल ने भी उन्हीं की परंपरा अपनाई। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गजलों की, तो उनकी गजलों में कहीं कहीं, पंक्तियों में कहीं कहीं हमको मार्क्सवाद देखने को मिल जाता है, कहीं कहीं हम देखते हैं कि वो आम इंसान का कर्म उठा लाते हैं, और कभी कभी तो मोहब्बत पर इतना प्यारा लिखते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि जो इंसान इतनी कड़वाहटों के साथ लिख रहा हो, वो इतना प्यारा कैसे लिख सकता है। जी हाँ, बात करेंगे उनकी गजलों के बारे में। फिलहाल एक प्यारी सी गजल पंकज उदास की आवाज़ में आप सुन लीजिए, इसके बाद चलते हैं कैफी आदमी साहब की गजलों की ओर। सुनते रहिए और रेडियो गणस्लेट 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। लेकिन फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी श्रोताओं के लिए।

जी हाँ, बात कर रहे हैं कैफी आजमी साहब के गजलों की, उनके नगमों की, और जिंदगी के कई सारे मौजूआत को छूती हुई उनकी गजलें हर इंसान के दिल पर दस्तक देती हैं। उन्होंने कहा भी कि दूसरों को मिटाने की धुन में, दूसरों को मिटाने की धुन में आदमी खुद को यूं मिटाता है जैसे चुभने के लिए कांटा पहले डाली से टूट जाता है। अगर पैरों में कांटे को चुभना होगा तो उसको डाली से अलग होना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो चुभ कैसे पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आप अगर दूसरों के मस्तक पर चंदन लगाते चलें तो आपकी अंगुलियां अपने आप सुगंधित हो जाएंगी। रहीमदास ने लिखा कि बाटन वाले को लगे जो मेहंदी के रंग, मेहंदी आप बांटते रहिए तो आपके हाथ में मेहंदी अपने आप रंग आ जाएगा उसका। तो दूसरों का अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके

आह वो नाम है जिस नाम को आपने प्यासा में देखा। गीता दत्त भी हैं, वहीदा रहमान भी हैं भाई, कागज के फूल फिल्म का नाम है। और एक बात अगर आप इस नगमे को सुनकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इंसान, एक बहुत अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी कि इस दुनिया में सबसे अच्छा क्या है, तो उत्तर मिला वक्त। दूसरा प्रश्न, इस दुनिया में सबसे बुरा क्या है, उत्तर आया वक्त। फिर आया इन दोनों के बीच अंतर किस चीज का है, तो आया वक्त, उत्तर वक्त। जी हाँ, ना हम अच्छे ना आप अच्छे, ना हम खराब ना आप खराब, वक्त अच्छा वक्त बुरा, और वक्त बदलने में थोड़ा बहुत वक्त लग जाता है। तो साहब, वक्त अगर आपकी आंखों को नमी देता है तो यही वक्त आपके होठों को मुस्कान भी देता है। आइए क्यों ना, जब बात वक्त की हो चली है, तो कैफी आदमी साहब की एक प्यारी सी गजल, एक प्यारा सा नगमा आपको सुनाते हैं। हो सकता है आपने इस नगमे को पहले भी सुना हो, लेकिन फिलहाल सुनिए नगमा और बताइए कि वास्तव में वक्त पर उनकी ये सोच आपको कैसी लगी। सुनते रहिए और बताते रहिए।

0: जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि इसी के साथ आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा। और भाई हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए थे, और भाई प्रबल मिश्रा जी हमारे साथ हैं, रफ्तार जी थी जिनको हमने अभी देखा, बयाल भाई धर्मेंद्र मोहन जी, जी हाँ बिल्कुल, उसको रफ्तार जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रबल मिश्रा जी हैं भाई, गुड इवनिंग एवरीवन सर, राधे राधे आपको भी, राधे राधे। दीपांशी त्रेरी जी हैं, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? जी हाँ, मैं ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा हूँ। और दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है वक्त, जिसने वक्त को पकड़ा वो बुलंदियों को छुआ, जिसने वक्त को ठुकराया वो मंजिलों से डगमगाए। क्या बात कही है सप्ता जी ने, और धर्मेंद्र मोहन जी क्या बात है। और इसके पश्चात भाई, और इसी के साथ आप लेते हैं अनुमति, और कल का दिन होगा बुधवार, आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल अपने खजाने को रखिएगा तैयार, क्योंकि कल होगा कालीन प्रोग्राम, कल आप होंगे श्रोता और हम सभी होंगे वक्ता। ये आप बोलेंगे कि सर जी आज हम बोल रहे हैं, आप सुनिए। जी हाँ, और अपने खजाने को तैयार रखिएगा, अगर आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी श्रोताओं का।
1: आपका अंतर्मन, तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, छोटा सा ख्वाब। अमन एक मध्यम वर्गीय परिवार का बड़ा ही होनहार लड़का था। उसके गांव में कॉलेज नहीं था, इसलिए स्कूल पूरा करने के बाद वो आगे पढ़ने के लिए शहर आ गया था। वो जिस मकान में रह रहा था वो मकान उसके किसी दूर के रिश्तेदार का था, जिसका किराया भी उसे नहीं देना पड़ता था। मकान में बस एक ही कमरा था, इसलिए उस मकान में अमन के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। अमन जहां रह रहा था उसके आसपास सभी साधारण परिवार के लोग थे, या ये कह लीजिए कि आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर वर्ग के लोग वहां रहते थे। क्योंकि वो घर में अकेला रहता था, इसलिए खाना बनाने, कपड़े धोने से लेकर घर की साफ सफाई और सारे काम उसे खुद ही करने होते थे। जब वो कुछ दिन वहां रहता रहा, उसके बाद एक दिन पास के ही एक गरीब परिवार की लड़की अपने छोटे भाई के साथ उसके पास आई और आते ही उससे पूछ लिया, तुम मेरे भाई को ट्यूशन पढ़ा सकते हो क्या? अमन ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, नहीं। वो लड़की तपाक से बोली, क्यों? तो अमन ने जवाब दिया, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। लड़की को शायद पता था कि अमन खुद ही खाना बनाता है, इसलिए उसने समय की समस्या का समाधान सुझाते हुए कहा, अपने भाई को पढ़ाने के बदले में मैं तुम्हारा खाना बना दिया करूंगी, इससे तुम्हारे पास जो समय बचेगा उससे तुम पढ़ा दिया करना। अमन ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो लालच को और बढ़ाते हुए बोली, मैं तुम्हारे बर्तन भी साफ कर दिया करूंगी। अब तो अमन को भी लालच आ ही गया, उसने कहा, अगर कपड़े भी धो दोगी तो पढ़ा दूंगा। वो झट से मान गई। इस तरह उसका रोज ही घर में आना जाना होने लगा। वो लड़की काम करती रहती और अमन उसके भाई को पढ़ा रहा होता। अमन की उस लड़की से ज्यादा बातें नहीं होती थीं। उसका भाई 8वीं कक्षा में था, पढ़ने में खूब होशियार, इस वजह से उसे पढ़ाने में अमन को ज्यादा माथापच्ची भी नहीं करनी होती थी। कभी कभी वो लड़की अमन के घर की सफाई भी कर दिया करती थी। वो हर काम इतने मन से करती थी जैसे ये उसका अपना ही घर हो। अमन को उससे कभी भी कुछ भी नहीं कहना पड़ता था, वो तो उसकी तरफ ज्यादा देखता तक नहीं था। उस लड़की का नाम था आशा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और मेरी आज की कहानी है छोटा सा ख्वाब। अब तक आपने सुना, अमन पढ़ाई करने के लिए शहर गया था। वहां पर कुछ दिन रहने के बाद उसके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की उसके पास आई और बोली कि मैं तुम्हारे घर के सारे काम कर दिया करूंगी, तुम मेरे छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ा दिया करो। अमन तैयार हो गया। अब आगे कुछ दिन और ऐसे ही बीत गए। अमन जब कभी उसकी तरफ देखता तो अमन को लगता जैसे वो अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी सी हो। शायद परिस्थितियों ने उसे समय से थोड़ा पहले ही बड़ा कर दिया था। वो समझदार भी थी और मासूम भी। और वक्त बीतने पर कभी कभी अमन उसके घर भी जाने लगा, खासतौर पर किसी त्योहार या उत्सव पर। जब कभी अमन की नजरें आशा से मिलती तो फिर मिली ही रह जाती। अमन कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस बीच अमन ने कुछ बातें भी उस लड़की के बारे में जान ली थी। वो कपड़ों में बटन टाकने का काम करती थी, टेलरों से जाके कपड़े ले आती थी सिले सिलाए, और घर पर उनके बताए अनुसार जिस कपड़े में जो बटन हुक जो भी लगाना होता वो लगाती। एक दिन अमन ने उससे पूछा, ये काम तुम क्यों करती हो? आशा बोली, इसके पैसे मिलते हैं। अमन बोला, क्या करोगी पैसों का? आशा बोली, इकट्ठे करती हूं। अमन बोला, अच्छा कितने हो गए? तो आशा ने बताया कि यही कोई 6-7 हजार। तो अमन बोला, मुझे 1000 रुपए उधार चाहिए, जल्दी ही लौटा दूंगा। तो आशा ने पूछा, किस लिए चाहिए? अमन ने थोड़ी सी मायूसी के साथ कहा, कारण पूछोगी तो रहने दो। तो आशा बोली, अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, तुम मांगो तो मैं तो सारे दे दूं। उसकी ये आवाज अमन को आज बिल्कुल अलग सी जान पड़ी, मगर अमन उस वक्त कुछ भी समझ नहीं पाया। उसे पैसे मिल गए थे और वो उन्हीं में खोकर रह गया। दरअसल अमन ने एक दोस्त से कुछ दिन पहले कुछ पैसे उधार लिए थे और वो एक दो दिन से तगादा कर रहा था। अब वो उसके पैसे आज ही लौटा देगा। उसी को देने के लिए उसने आशा से 1000 रुपए मांगे थे। फिर कुछ दिन बाद उसके घर से पैसे आ ही जाएंगे तो वो आशा को लौटा देता। एक दिन अमन को अपनी जेब में से गुलाब की कुछ टूटी हुई पंखुड़ियां मिली, मगर उस समय वो ये सोचकर रह गया कि कॉलेज के किसी दोस्त ने चुपके से डाल दी होंगी। उस समय उसे प्यार व्यार की इतनी कोई समझ तो थी नहीं जो वो कुछ ज्यादा समझ पाता। फिर एक दिन उसके कॉलेज की एक दोस्त कुछ नोट्स लेने के लिए उसके घर आई हुई थी। उसी समय आशा भी वहां पर पहुंच गई, लेकिन उस लड़की को वहां देखकर उसे न जाने क्या हुआ, वो बाहर से ही लौट गई। और दूसरे दिन दोपहर में आधम की, आते ही उसने कहा, मैं कल से तुम्हारे घर काम नहीं करूंगी। अमन हैरान होकर बोला, क्यों? काफी देर तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर न जाने क्या सोचकर धोने के लिए उसके बिखरे कपड़े समेटने लगी। अमन बोला, कहीं जा रही हो क्या? आशा बोली, नहीं, बस आज से तुम्हारा काम नहीं करूंगी और तुम कल से मेरे भाई को भी मत पढ़ाना, ठीक है? अमन सक पका गया। उसे लगा कि शायद पैसों की वजह से, तो वो बोला, अरे तुम्हारे 1000 रुपए कल ही दे दूंगा, कल घर से पैसे आ रहे हैं। तो वो बोली, पैसे नहीं चाहिए मुझे।
तो फिर? अमन ने अपनी आंखें उसके चेहरे पर टिका रखी थी। जब एक बार उसने फिर से अमन से नजरें मिलाई तो अमन को लगा जैसे उसकी आंखों में हजारों प्रश्न हैं, मगर वो सभी उसकी समझ से बाहर थे।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और मेरी आज की कहानी है छोटा सा ख्वाब। अब तक आपने सुना, अमर अपने गांव से शहर पढ़ने के लिए आया था। कुछ ही दिन बाद उसके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की उसके पास आई और बोली कि मैं तुम्हारे घर के सारे काम कर दिया करूंगी, तुम्हारे लिए खाना भी बना दिया करूंगी, बस तुम मेरे छोटे भाई को पढ़ा दिया करो। अमन तैयार हो गया। वो रोज आती, अपना काम करती, अमन उसके भाई को पढ़ाता और वो चली जाती। उनके बीच कोई खास बातें नहीं होती थी। फिर एक दिन अमन की एक दोस्त उससे कुछ नोट्स लेने आई हुई थी। उसी वक्त आशा भी वहां पहुंच गई, लेकिन उस लड़की को वहां देखकर उसे न जाने क्या हुआ, वो बाहर से ही लौट गई और अगले दिन आकर बोली कि कल से ना वो उसका काम करेगी और ना ही उसे उसके भाई को पढ़ाने की जरूरत है। कुछ ही देर में न जाने क्या सोचा और धोने वाले कपड़े बटोर कर अपने घर ले गई। अमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब आगे दूसरे दिन से ना तो वो खुद उसके यहां आई और ना ही उसका भाई ही वहां पढ़ने आया। अमन ने जैसे तैसे खाना बनाया और खाकर कॉलेज चला गया, पर कॉलेज में मन नहीं लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि जब पैसे वाली बात नहीं है तो फिर ये लड़की ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। उसने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया, पर कुछ भी समझ नहीं पाया। इसलिए दोपहर को वो जैसे ही कॉलेज से वापस आया तो सीधा उसके घर चला गया। वो जानना चाहता था कि आखिर क्या बात है कि आशा उसके काम क्यों नहीं करना चाहती, जबकि अपनी ओर से तो उसने कभी भी उसके साथ कुछ भी गलत व्यवहार नहीं किया था। घर में अकेली लड़की को देखकर उससे बेकार की बातें करना तो दूर, वो पढ़ने पढ़ाने में इतना मशगूल रहता था कि उसने शायद पहली बार आशा को ठीक से देखा भी तो उस दिन, जिस दिन वो उससे कुछ लड़ने के मूड में थी। वो उसके घर पहुंचा तो उसे पता चला कि वो बीमार है। वो एक छप्पर में चारपाई पर अकेली लेटी थी। घर में उसकी मम्मी थी जो काम में लगी हुई थी। अमन जब उसके पास पहुंचा तो उसने करवट लेकर अपना मुंह फेर लिया। अमन ने पूछा, दवाई ली क्या? नहीं, उसने बिना अमन की तरफ देखे एक छोटा सा जवाब दिया। क्यों नहीं ली? अमन बोला, मेरी मर्जी, तुझे इससे क्या? आशा बोली, ठीक है, पर मुझसे नाराज क्यों हो, ये तो बता दो, मेरी गलती क्या है? मैंने तो कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। अमन ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। तो वो बोली, तुम सब समझते हो, और उसकी तरफ देखा तक नहीं। अब तो अमन सच में कंफ्यूज हो रहा था। बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी कसम, सुबह से परेशान हूं, प्लीज बता दो ना। न जाने किस अधिकार से अमन ने उस लड़की की कसम भी खा ली, तो उसकी आवाज जैसे रोनी सी हो गई। वो बोली, नहीं बताऊंगी, जाओ यहां से। अब अमन को जरा सी घबराहट हुई। आज से पहले उसने कभी किसी लड़की को छुआ तक नहीं था, इसलिए उसे उसको छूकर देखने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, पर पता नहीं क्यों, आखिर डरते डरते उसने लड़की के हाथ को जब छू कर देखा तो वो उछल कर रह गया। लड़की का हाथ बहुत ही ज्यादा गर्म था। उसकी मम्मी को पास बुलाकर उसके बुखार के बारे में उसे बताया। फिर वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और उसे एडमिट कर लिया। कुछ जांच वगैरह होनी थी, क्योंकि शहर में
डेंगू के केसेस आ रहे थे। अमन को अब उस लड़की को लेकर कुछ चिंता सी होने लगी थी। उसकी माँ उसके पापा को बुलाने घर चली गई तो अमन उसके पास अकेला रह गया। न जाने वो कौन सा रिश्ता था, न जाने वो कौन सी डोर, जो अमन को वहां से दूर जाने ही नहीं दे रही थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और मेरी आज की कहानी है छोटा सा ख्वाब। अब तक आपने सुना अमन शहर में पढ़ने के लिए आया था। कुछ ही दिनों बाद वो पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के छोटे भाई को पढ़ाने लगा और बदले में वो लड़की उसके घर के सारे काम कर देती थी। फिर एक दिन न जाने क्या हुआ कि अमन की एक दोस्त उसके घर कुछ नोट्स लेने आई थी। उसे देखकर आशा कुछ नाराजी हो गई और चली गई और बोला कि आज के बाद वो उसके घर काम करने नहीं आएगी और अपने भाई को भी नहीं भेजेगी। और अगले दिन से वो सच में नहीं आई। जब अमन उसके घर पता करने गया तो पता चला उसकी तबीयत खराब है। छूकर देखा तो बहुत तेज बुखार था। उसने उसकी माँ के साथ उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अब आगे बुखार जरा कम हो गया था। वो लड़की गुमसुम सी लेटी थी। वो दीवार को एक टक घूर रही थी। अमन ने उसके चेहरे को सहलाया तो लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसे रोते देख अमन की आंखें भी भीग गईं। अमन ने भरे गले से पूछा, बताओगी नहीं? लड़की ने आंखों में आंसू ही लिए मुस्कुरा कर कहा, अब बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया है कि तुम्हें मेरी परवाह है ना? अमन के होठों से अपने आप ही एक लफ्ज निकला, बहुत। बस अब मैं अगर मर भी जाऊं तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं होगा, आशा ने अमन का हाथ कसकर दबाते हुए कहा। उसके इस वाक्य का कोई भी जवाब अमन की लबों पर तो नहीं निकला, मगर उसकी आंखें शायद उस लड़की के जवाब को संभाल ना सकीं और बेचारी बरस पड़ी। वो लड़की उठकर बैठ गई और अमन से बोली, रोता क्यों है पागल? मैंने जिस दिन पहली बार तेरे लिए रोटी बनाई थी ना, उसी दिन से मुझे तू अच्छा लगने लगा था, पर तू है ऐसा पागल कि मेरे प्यार को समझने में इतना वक्त ले लिया। फिर उसने अपने साथ साथ उसके भी आंसू पोंछ दिए। थोड़ी देर बाद उसके घर वाले आ गए। रात हो गई थी। उसकी हालत में कोई खास सुधार भी नहीं हुआ था। देर रात तक उसकी बीमारी की रिपोर्ट भी आ गई। बताया गया कि उसे डेंगू है। ये बात सुनकर अमन का सीना जैसे किसी अनजाने डर से जोरों से धड़कने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, ऐसा क्या हो जाए कि वो लड़की तुरंत ठीक हो जाए। पर डॉक्टरों की बात मानने के अलावा और वहाँ पे रहकर जो हो सके उसके लायक वो करने के अलावा वो और कर भी क्या सकता था। बस अपना जी जान लगा के वहीं पे डट गया। जैसे उसने ठान लिया था कि वो आशा को ठीक करके यहाँ से अपने साथ लेकर ही जाएगा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और मेरी आज की कहानी है छोटा सा ख्वाब। अब तक आपने सुना, अमन गांव से शहर में आकर पढ़ता था और पड़ोस की एक लड़की उसके घर के सारे काम करती थी, जिसके बदले में अमन उसके छोटे भाई को पढ़ाता था। एक दिन किसी लड़की के आने से वो कुछ नाराज हुई और अगले दिन उसने अमन के यहाँ आना बंद कर दिया। अमन को बेचैनी हुई, उसके घर पता करने गया तो पता चला कि उसकी तबीयत खराब है। उसे एडमिट कराया तो डेंगू निकला। अमन बहुत बेचैन हो गया था, वो दिन रात वहीं डटा हुआ था। अब आगे, डॉक्टरों ने दूसरे दिन बताया कि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, उसे और खून देना होगा। उसने अपना भी खून दिया और अपने संपर्क से अपने बहुत सारे दोस्तों को बुलाया। जितनी भी जरूरत पड़ी उसने हर चीज का इंतजाम किया। दूसरे दिन की रात कुछ ठीक सी दिखी, बातें भी करने लगी थी आशा। जब सब सो गए, अमन उसके पास बैठा हुआ जाग रहा था। आशा ने अमन से कहा, पागल, बीमार मैं हूं तुम नहीं, फिर तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों बना रखी है? अमन बोला, तुम ठीक हो जाओ, मैं तो नहाते ही ठीक हो जाऊंगा। फिर आशा ने थोड़ा उदास होकर पूछा, एक बात बताओ। अमन बोला, क्या? उसने कहा, मैंने एक दिन तुम्हारी जेब में गुलाब डाला था, तुम्हें मिला था क्या? अमन बोला, हाँ सिर्फ पंखुड़ियां मिली थी। तो वो बोली, हाँ पर तुम कुछ समझे नहीं थे? अमन बोला, नहीं। तो वो बोली, क्यों? अमन बोला, सोचा शायद कॉलेज के किसी दोस्त का मजाक है। और वो रोटियां? आशा ने कहा, कौन सी? अमन ने पूछा, दिल के आकार वाली? आशा बोली, अब समझ में आ रहा है। अमन थोड़ा सा झेप गया। लड़की ने उसके कंधों को हल्का सा धक्का दिया और बोली, बुद्धू हो क्या? तो अमन ने जवाब दिया, हाँ पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अभी तक कभी कुछ सूझा ही नहीं। आखिर अपने घर का इकलौता चिराग हूं, मुझे अपने घर के लिए बहुत कुछ करना है। अमन ने जरा गंभीर होकर बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया। अमन के भोलेपन को देखकर आशा हंसने लगी। बीमार होने के बावजूद काफी देर तक हंसती रही, एक निश्चल सी मासूम हंसी। फिर उसने पूछा, कल सोए थे कि नहीं? अमन बोला, नहीं। तो वो बोली, अब सो जाओ, अब मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। अमन को सचमुच नींद आ रही थी पर वो सो नहीं पाया, वहीं बैठा रहा। आशा सो गई पर घंटे भर बाद ही वापस जग गई। अमन बैठा बैठा ऊंग रहा था। आशा ने उसे टोका, सुनो। अमन नींद में ही बोला, हाँ। तो वो बोली, ये बताओ, ये बीमारी छूने से किसी को लग सकती है क्या? तो अमन बोला, नहीं, ये सिर्फ मच्छर के काटने से लगती है। तो आशा बोली, मेरे पास आओ। अमन जब उसके करीब गया तो वो अमन के गले लग गई और बोली, अगर कहीं मर गई तो फिर मेरी ये आरजू कहीं बाकी ना रह जाए। अमन अपने आंसुओं को रोक नहीं सका, बोला, ऐसा मत कहो प्लीज। उसके बाद वो सुकून से लेट गई और सो गई। अगले दिन की सुबह बहुत अच्छी थी, उसने बीमारी से रिकवर कर लिया था।
अमन को ऐसा लग रहा था जैसे इतनी खुशी उसे जिंदगी में पहले कभी नहीं हुई। इस बेनाम रिश्ते का अंजाम क्या होगा ये तो उन्हें नहीं पता था, लेकिन हाँ कुछ ऐसा सुकून दिल में था जैसे सब कुछ मिल गया हो।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और मेरी आज की कहानी थी छोटा सा ख्वाब। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का

ये आवाज है एक ऐसी गायिका की जो दरअसल फिल्मों में गाना ही नहीं चाहती थी, पर जब आई तो इन्होंने इस क्षेत्र में वो जगह बना ली जो किसी और गायिका के लिए पाना तकरीबन नामुमकिन है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत और मैं हूँ आपकी आरजे अनोखी, जो आज के अंक में कुछ ऐसी यादें आपके साथ साझा करने वाली है जो कि आपको सुन के भी बहुत मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले ये प्यारा सा नगमा हमारी आज की गायिका के आवाज में।

जी हाँ, आवाज से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं अनुराधा पौडवाल की, जिनका जन्म 27 अक्टूबर 1954 में हुआ। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। बचपन से ही संगीत इनके रगों में बह रहा था, पर इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि ये आगे जाकर एक प्लेबैक सिंगर बनेंगी।

अनुराधा पौडवाल के पिता इनकी शादी के लिए जरा चिंतित थे, लेकिन जब अरुण पौडवाल से इनकी मुलाकातें बढ़ी तो उन्होंने शादी के लिए भी हाँ कर दी। इन दोनों के बीच लगभग 10 साल का फर्क था। इनके पति अरुण पौडवाल ने इन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया प्लेबैक सिंगिंग के लिए।

ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि अनुराधा पौडवाल कैसे प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में आईं। अरुण जी एक बार इन्हें लता जी की रिकॉर्डिंग में ले गए। अनुराधा पौडवाल ने लता मंगेशकर की रिकॉर्डिंग बड़े ध्यान से सुनी और फिर वही सॉन्ग आकाशवाणी के युवा वाणी प्रोग्राम में इन्होंने प्रस्तुत किया। तब लता जी के छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर, महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और भी कुछ बड़े चुनिंदा म्यूजिक डायरेक्टर्स ने रेडियो स्टेशन पर फोन करके कहा कि ये लड़की कौन थी जो गाना गा के गई है, और इन्हें बताया गया, अरे वो तो अलका नंदकर्णी है। दरअसल अनुराधा पौडवाल का शादी से पहले नाम अलका नंदकर्णी था।

एसडी बर्मन अभिमान फिल्म का संगीत दे रहे थे, जिसमें उनके सहायक के रूप में अरुण पौडवाल थे। और तब दादा बर्मन ने अनुराधा पौडवाल से कहा कि एक श्लोक है जो तुम्हें गाना होगा, और तब जया बच्चन पर फिल्माया गया वो श्लोक इनकी आवाज में रिकॉर्ड हुआ। तो आइए अभिमान मूवी से लता मंगेशकर की आवाज को ट्रिब्यूट देते ये सॉन्ग हम अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में सुनते हैं।

अनुराधा ने कभी शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण नहीं लिया, ये कहते हुए कि उन्होंने कई बार कोशिश की पर बात नहीं बनी। तो फिर क्या हुआ? तो फिर उन्होंने लता जी को सुनते सुनते और घंटों अभ्यास करते करते अपने लिए सुर बनाए। एक समय में लगभग हर फिल्म में अनुराधा का गाना होता था, लेकिन अभी ये लंबे समय से गायन से दूर हैं। फिलहाल और भी जानकारी हम इनके बारे में आपसे साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हीं की आवाज में खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: आपको पता है आखिरी बार अनुराधा जी ने कब गाना गाया था? अरे कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। आखिरी बार इन्होंने 2006 में आई फिल्म जाने होगा क्या में गाया था।
1: Check it out, baby. Make it hot, baby.

अनुराधा जी अपनी सभी सफलताओं का श्रेय लता जी को देती हैं। उनका कहना है कि मैंने कई गुरुओं के सानिध्य में संगीत सीखा, लेकिन लता जी की आवाज में मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत थी जिसने एक संस्था के रूप में मेरा मार्गदर्शन किया। उन्होंने अन्य संगीतकारों जैसे राजेश रोशन, जयदेव, कल्याण जी, आनंद जी के साथ भी अच्छी जोड़ी बनाई। वो आइए एक और सॉन्ग सुन लेते हैं इन्हीं की आवाज़ में।